0: हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में फिल्म दाग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, ये किरण और मुस्कान का जो हसीन संगम है, ये सिर्फ चेहरे की चमक ही नहीं बल्कि हर दिल में उम्मीद और ताजगी जगाने का नाम है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दोस्ती से ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म खानदान से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। और दोस्तों, आपसे मुलाकात का हम भी बहाना ढूंढते हैं कि जल्दी से जल्दी आपसे मुलाकात हो, पर मिलन के साथ जुदाई भी तो है। और अब हमें भोर सुहानी कार्यक्रम से जाना होगा और अर्चना को दीजिए इजाज़त। और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

नमस्कार, सुप्रभात। FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:55 और ठीक 44 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज का चिंतन एल्बर्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है, कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। गलती किए बिना कुछ नया नहीं सीखा जा सकता। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 277। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी आज, प्रस्तुति कांचन प्रकाश, संगीत की। सात बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। पर त्रिवेणी 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम सुबह केंद्रित होगा अभिनेता पी जयराज पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10:00 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा। सेहतनामा में आज सुनिएगा हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान। 11:00 रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल। 1:00 सुनिएगा सुरीला सफर। 2:00 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे प्रोग्राम।

दोपहर 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा सृजन का स्रोत जिज्ञासा और सखी विशेष के अंतर्गत महिला उद्यमी ऋचा कर जीवामे की संस्थापक मुहावरों की दुनिया घोड़े बेचकर सोना हल्की फुल्की बातें चले मेला देखने प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक संवादक मंजरी वर्मा और ममता सिंह शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे इसमें सुनिएगा अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले शाम 5 बजे छाया गीत 5:30 पर तराने नए पुराने शाम 6:35 पर संध्या रंजन 6:45 पर संगीत सरिता आपको फिर से बता दें सुनिएगा श्रृंखला वर्षा चौमासा कलाकार गायिका शुभा मुद्गल इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा शाम 7 बजे से सात 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस हवा महल में रात 8 बजे सुनिए नाटिका फिर मिलूंगा लेखन मेवाराम गुप्त का निर्देशन पुरुषोत्तम दारभेकर का 8:15 पर चित्रलोक 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए 9:30 पर सुनिए आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता सुनील शेट्टी पर प्रस्तुतकर्ता

सागर तट पर वानरों का विशाल समूह संपाती नामक गिद्ध से सीता के लंका की अशोक वाटिका में होने का पता पा चुका है। वृद्ध संपाती ने उन्हें यह भी बता दिया है कि जो सामने 400 कोस के विस्तार में फैले समुद्र को लांग सकेगा वही श्रीराम का कार्य संपन्न करने में सफल होगा। अपनी बात समाप्त कर जब गिद्ध चला गया तो वानरों को अपनी अक्षमता की प्रतीति हुई। ऋक्षराज जामवंत वृद्ध हो चुके हैं, उनके शरीर में पहले वाला बल नहीं है। अंगद को सागर पार चले जाने का आत्मविश्वास तो है परंतु लौट आने में संदेह है। किंतु वो तो वानर सेना के नायक हैं, उन्हें कैसे जाने दिया जा सकता है? जामवंत ने तब पवन पुत्र हनुमान के बल तथा सक्षमता का स्मरण दिलाया। बल में वे पवन के समान हैं और उसी प्रकार बुद्धिमान, विवेकशील तथा ज्ञान विज्ञान के भंडार। ऐसा कौन सा काम है जो वे नहीं कर सकते? ये सुनते ही हनुमान ने पर्वत सा आकार बना लिया। सोने जैसा वर्ण और शरीर का तेज उनकी सक्षमता का आभास देते हैं। उन्हें स्वयं अब इस बात का भान हुआ कि सामने लहराते सागर को वे खेल खेल में लांग सकते हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना भाग 277।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: प्रस्तुत है श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा
1: श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं वर्षा चौमासा, ये श्रृंखला। श्रृंखला की आज की कड़ी में अब मैं शुभा जी से पूछने जा रही हूँ कि वे क्या सुना रही हैं, किस बारे में बात कर रही हैं। वैसे हम उनसे दादरा सुन चुके हैं, बंदिश की ठुमरी कल हमने सुनी है, और वर्षा चौमासा श्रृंखला में हम उसे इस तरह से सजा रहे हैं कि जिसके गीत में रचना में वर्षा का उल्लेख हो, बादर का, दादुर का, मोर पपीहे की बोली का, और उस सुंदरता को ढूंढने की, तलाशने की भी एक कोशिश जारी है। तो शुभा जी, मैं श्रोता परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: और अब मैं अपने बोलने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, आपको सुनते हैं।
2: आज क्यों ना हम थोड़ा सा लोक संगीत की ओर देखें। उत्तर भारत के लोक संगीत में वर्षा ऋतु से संबंधित कई गीत प्रकार मिलते हैं। बारामासा मिलता है, छमासा मिलता है, चौमासा मिलता है, कजरी मिलती है
1: जी,
2: जिसे कजली भी कहते हैं
1: जी,
2: सावन भी कहते हैं, मलार भी कहते हैं, बिरना भी कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वर्षा से संबंधित हैं, लेकिन कजरी जो है वो बहुत ही लोकप्रिय रही है
1: जी।
2: अब कम सुनने में आती है, और जो दो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ से कजरी का विशेष रूप से संबंध है, एक बनारस और एक मिर्जापुर। तो बनारसी कजरी और मिर्जापुरी कजरी बहुत ही जानी मानी है। कजरियों का संग्रह संगीतज्ञों के पास तो है ही है। उसके अतिरिक्त ऐसे कुछ लोग हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने कजरी के ऊपर बहुत लिखा है और आज भी मौजूद हैं इन दोनों जगहों में। तो बनारस से ही कुछ दूर एक जगह है रॉबर्ट्सगंज, वहाँ डॉक्टर अर्जुन दास केसरी हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा उनका उनके पास जो संग्रह है कजरी का वो बस सुनने लायक है। कजरी के अखाड़े होते थे, जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत में घराने होते हैं, उस तरह कजरी गाने की जो परंपराएं अलग अलग थी उन्हें अखाड़ा कहा जाता था
1: जी।
2: और इन जगहों पे दंगल होते थे, कजरी के दंगल होते थे, जिसमें रातों रात लोग गाते बजाते थे, और एक कजरी सुनाई उसी के मुकाबले में अपने दूसरी कजरी दूसरे दल ने सुनाई, तो ऐसा माहौल था।
1: और वर्षा हो रही है,
2: वर्षा के माहौल में ही होता था।
1: हाँ,
2: जी
1: हाँ,
2: बिल्कुल।
1: ये मनोरंजन का कितना अनूठा सा एक स्वरूप है, रूप है
2: जी,
1: आज हम इसे भूलते जा रहे हैं।
2: कजरी का जो साहित्य है वो भी अलग अलग लोगों ने बहुत उसमें योगदान दिया है। तो ठेठ गांव की भाषाओं में तो मिलती ही हैं कजरियां, मगधी, मगध प्रांत में मगही कजरियां मिलती हैं, बिहार में मैथिली भी बोली जाती है, उस भाषा में भी कजरी मिलती हैं
1: जो लोक भाषा
2: जी, ब्रज इत्यादि में भी मिलती हैं। और एक उसके साहित्य में, कजरी के साहित्य में बहुत बार देखते हैं कि पंक्ति के अंत में कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जैसे ननदी या
1: ननदिया,
2: सावर गोरिया या बिरना,
1: हाँ,
2: या फिर बलमू।
1: हाँ।
2: तो इन कजरी के हर पंक्ति में या हर दूसरी पंक्ति में ये एक इसी से समाप्ति होती है,
1: मतलब शायद वो जो रचना है वो बालम को कही गई है या ननदिया के साथ बात हो रही है, हो ननदिया हो हाँ। बालम हो ऐसा
2: जी,
1: कुछ
2: जी, ऐसा जी। तो मैं आपके लिए एक कजरी प्रस्तुत करना चाहूंगी जो द्विज बलदेव जी ने लिखी है, और जिसमें बलमो शब्द बार बार आता है
1: जी।
2: तो बोल इस प्रकार है, आई सावन की बहार मोरे बारे बलमो।
1: मोरे बारे,
2: हाँ
1: हाँ,
2: कम उम्र के हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: बाली उम्र के,
2: हाँ बाली
1: अच्छा,
2: उम्र
1: अच्छा,
2: के हैं।
1: हाँ।
2: आई सावन की बहार मोरे बारे बलमो, छाई घटा घनघोर बन में बोलन लागे मोर। ये तो प्रकृति चित्रण है ये। रिमझिम पनिया बरसे जोर मोरे बारे बलमो, धानी चद्दर सियाब, धानी रंग जो है वो सावन में भी पहना जाता है, धानी चद्दर सियाब, और कैसा सारी सब्जी रंगाब, मतलब सब्ज साड़ी जो है, सब
1: हरी
2: हरी वो पहनेंगे, क्योंकि चद्दर

0: उसके ऊपर ओढ़ी जाती है। स्थानी चद्दर सियाब सारी सबुज रंगाब वामे गोटा टकवाब वामे गोटा टकवाब मोरे बारे बलमो।
1: अच्छा
0: ऐसी तैयारी है सावन के लिए। हूं तो जई हो कुंजधाम सुने कजरी ललाम, वहां जाके कुंजधाम में कजरी सुनेंगे, जहां झूले राधा श्याम मोरे बारे बलमो।
1: तो कजरी ललाम कितना सुंदर गठन है। हाँ।
0: और फिर उनकी छाप आती है, बलदेव क्यों उदास पुनि आई हो तोरे पास मानो मोरा विश्वास मोरे बारे बलमो।
1: बहुत सुंदर
0: जी।
1: शोभा जी, ये जो कजरियां गाई जाती हैं या आज जो आप कजरी गाने जा रही हैं वो किसी राग में निबद्ध होती है या ये कुछ मिश्र रूप होता है?
0: नहीं जी, कजरी का की अलग अलग धुन होती हैं जो कि पारंपरिक प्रस्तुति उनकी होती
1: आपने है। कहा है कि लोक संगीत की तरफ मुड़ते हैं तो ये लोक धुनें होती हैं।
0: जी बिल्कुल, और विशेष उनकी एक तर्ज होती है अलग अलग। लेकिन कजरी या होरी या झूला इत्यादि, इनको शास्त्रीय संगीत गाने बजाने वाले लोगों ने भी इनकी ओर अपना ध्यान किया है। और तब क्या होता है कि उस धुन को या उस धुन को किंचित परिवर्तित करके उसको एक शास्त्रीय चोला पहना के भी प्रस्तुत किया जाता है
1: जी।
0: यहाँ मैंने ये कोशिश की है कि खमाज राग में इसको प्रस्तुत करूं, और है तो कजरी लेकिन उसको एक शास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा।

0: मन कर रहा है कि और भी कजरी सुनूं, और भी सुनूं, लेकिन अब कल के लिए इसे रख देते हैं, आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम संगीत सरिता FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महाकाल वंदन।

धरा पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के स्वर्ण शिखर की आभा से समस्त वातावरण आलोकित हो रहा है। रावण को सोने की लंका तक दान में दे देने वाले परमदानी भोलेनाथ के चरणों में अर्पित ये भक्ति रचना आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल के स्वर में।

इस भक्ति रचना के साथ ही आज का महाकाल वंदन अब यहीं संपन्न होता है। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। बॉलीवुड बीट्स, नए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह 9:30 पर। अपनी पसंद के गीतों का आनंद लीजिएगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। सुबह 11:00 सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग, यादों की महफिल आप सुन सकेंगे दिन में 12:05 पर। दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर, सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 सुनिए महिला श्रोताओं के लिए विशेष कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4:00 पिटारा में आज सुनिए हेलो फरमाइश। युववाणी, युवा श्रोताओं की पसंद का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे केंद्र की सांध्यकालीन सभा के आरंभ में शाम 5:00। शाम 6:00 समय होता है भक्ति संगीत के कार्यक्रम भजन संध्या का। छह बजकर 30 मिनट पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:21 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे मालवी बोली का विशेष कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। सुनिए रात 8:00 संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर सुर्खियों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से और 8:30 पर फिल्म संगीत आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से। उर्दू कार्यक्रम कहकशां सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रात 9:30 पर। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे रात 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात 11:10 से सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM गोल्ड के कार्यक्रम। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब समाचार, प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मूंग खरीदी में अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री कल अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे और भोपाल में आज से राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस बल और पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। भोपाल में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कल नवीन भर्ती में चयनित पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और पदोन्नत अधिकारियों कर्मचारियों को बैज लगाए। मुख्यमंत्री ने खंडवा में नई पुलिस बटालियन गठित करने और प्रदेश में 3 राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल गठित करने की घोषणा की।
1: हमने बीते समय घोषणा की थी कि खंडवा में एक बटालियन बनेगी, तो जरूर बनना चाहिए। खंडवा के साथ साथ और 2 बटालियन की सोचा है, जिसको राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में 3 बटालियन बनाएंगे। अभी 1 की घोषणा कर रहा, 2 का स्थान अभी कोशिश करेंगे, लेकिन ये तीनों बटालियन बनाने की घोषणा कर। हम ये बेगा, भारिया, सहरिया, इनकी कंपनियों का गठन भी कर लिए बटालियन के अंदर से, ताकि हमारी ये अति पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी वर्ग से हमारा ये एक समूह, इसमें बड़ी संख्या में लोग आए।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप कोष जारी किया। इसके अंतर्गत 6,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। इस पहल से कृषि विद्यार्थियों को अब हर महीने DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के आर्थिक मदद मिल सकेगी।
2: पिछले साल जब हमने विद्यार्थियों का एग्री स्टूडेंट्स का सम्मेलन किया था, तो ये बात आई थी कि स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप है वो पहले यूनिवर्सिटी में जाती है, यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज में जाती है, और फिर स्टूडेंट्स के पास जाते जाते बहुत समय लग जाता है, और कई बार तो इतना देर से पहुंचती है कि परीक्षा ही हो जाती है। इसलिए समय पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले, इसका शुभारंभ हुआ है DBT के माध्यम से, सिंगल क्लिक से स्कॉलरशिप 6,080 विद्यार्थियों के खाते में पहुंची है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और परिषद की सहमति से मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद राज्य वन प्राणी की 32वीं बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंत्रालय से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से राशि का अंतरण भी करेंगे। वहीं भोपाल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव VC के माध्यम से शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मंत्रालय में प्रदेश में मूंग खरीदी कार्य की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी कार्य में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दोषी पाए जाने वालों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि केंद्र से प्रदेश के लिए करीब 4,54,000 टन मूंग खरीदी का लक्ष्य मिला है और करीब 3,47,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिनमें से 3,42,000 किसानों का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने कल निर्देश दिए कि सभी जिलों में आवश्यक तैयारियां बारिश को ले मद्देनजर करके रखी जाएं तथा 10 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य से 15% कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने जिला और राज्य स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने, जलाशयों की निगरानी और राहत शिविरों की तैयारी तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में समय पर चेतावनी देने के निर्देश दिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल यानी 12 अगस्त को अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे। वे प्रदेश में निवेश के अवसरों, औद्योगिक नीतियों और निवेशक सुविधाओं की जानकारी देकर उद्योग समूह को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योग समूह के प्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इस दौरान वस्त्र, ऊर्जा, अधोसंरचना, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के

लिए भी गुजरात के उद्योग जगत को आमंत्रित करेंगे। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन तंत्र मजबूत किया जा रहा है। वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि, जलभराव, बाढ़, जर्जर भवन गिरने और वज्रपात जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य संभाग और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने कल बताया कि कंट्रोल रूम संबंधित विभागों के समन्वय से प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 3 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय शुरू करने की स्वीकृति दी है, जिनमें विदिशा जिले का शासकीय कन्या महाविद्यालय बासौदा, शाजापुर जिले का जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर और आगरमालवा जिले का शासकीय महाविद्यालय सोयत कलां शामिल है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि संस्कृत के अध्ययन का विस्तार विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा, रंगोली और मानव श्रृंखला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में खंडवा में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं झाबुआ में आम नागरिकों और विद्यार्थियों की सहभागिता से तिरंगा रैली, रंगोली और मानव श्रृंखला आयोजित की गई। राणापुर जनपद की ग्राम पंचायत ढोलियावड़ में विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं डिंडौरी में जिला मुख्यालय से विशाल तिरंगा यात्रा निकालेगी, जबकि धार में नालछा विकासखंड के ग्राम जीरापुर स्थित ऐतिहासिक 64 योगिनी मंदिर परिसर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में भारतीय साड़ी, हथकरघा और हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए साड़ी ड्रेपिंग एवं हैंडलूम प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 13 प्रतिभागियों ने बंगाली, महाराष्ट्रीयन, नवारी, बनारसी, चंदेरी, महेश्वरी सहित विभिन्न पारंपरिक साड़ियों की प्रस्तुतियां दी। भोपाल में आज से 16 अगस्त तक अपर लेक स्थित बोट क्लब में राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय रैंकिंग की इस प्रतियोगिता में 12 राज्यों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलर्स हिस्सा लेंगे। याटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तकनीकी मार्गदर्शन में होने वाली इस प्रतियोगिता में 12 ज्यूरी सदस्य भी शामिल होंगे। आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर देना है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं से साइबर जालसाजों से सावधान रहने और बिजली बिल का भुगतान केवल अधिकृत माध्यमों से करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निजी मोबाइल नंबर से बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर भेजे जाने वाले SMS, व्हाट्सएप संदेश और फोन कॉल फर्जी हो सकते हैं। उपभोक्ता अनजान नंबर पर बिल की राशि ट्रांसफर न करें और अपना पिन या बैंकिंग जानकारी साझा न करें तथा साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना दें। अब रुख करते हैं मौसम का। मध्य प्रदेश में लंबे समय से कम बारिश के बाद अब मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर नदियां और नाले उफान पर हैं, कई जगह आपदा की स्थिति बन गई है। राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल एवं होमगार्ड्स की टीमों ने बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान चलाए हैं। होमगार्ड सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन की महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार को क्षेत्रीय टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर तत्परता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। दिनभर चले इन अभियानों के दौरान जवानों द्वारा 98 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत पहुंचाई गई। वहीं मौसम विभाग ने आज राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर कला और जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। IIM इंदौर के 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के 2026-31 बैच की शुरुआत इंडक्शन कार्यक्रम के साथ हुई, जिसमें 156 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। आगरमालवा में भारी बारिश के चलते कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा ने सभी स्कूलों में आज यानी मंगलवार का अवकाश घोषित किया है। खंडवा में सिंगाजी क्षेत्र की कावेरी डीमर और उनकी छोटी बहन दीपिका डीमर ने भोपाल के लोअर लेक में आयोजित नेशनल कैनोइंग प्रतियोगिता में 6 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। मंदसौर की समय सीमा की बैठक में कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के शिविरों की पूर्व तैयारी कर 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। सतना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन 12 अगस्त तक संजीवनी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। और झाबुआ में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मूंग खरीदी में अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित होगी कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री कल अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे और भोपाल में आज से राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

नमस्कार, सुप्रभात। बारिश की इन सुहानी सुबहों में जब ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो मन की सारी थकान मिट जाती है। रात की हल्की फुहारों के बाद धुला धुला सा आसमान और परिंदों की मीठी चहचहाहट सुकून का एहसास कराती है। दोस्तों, सुबह की चहल पहल अब शुरू हो चुकी है। कोई अलसुबह मंदिर की ओर निकल पड़ा है तो किसी के घर की रसोई से चाय पोहे की महक आ रही है। स्कूल बस का इंतज़ार करते बच्चे और काम पर जाने की हलचल बता रही है कि एक नए दिन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। हर सुबह हमें कुछ नया करने का अवसर देती है और नए अवसर की नई सुबह में आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन के साथ मैं हूं आपकी दोस्त रश्मि बजाज भराड़िया। आज 11 अगस्त 2026 की ताजगी भरी सुबह में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात उज्जैन में हम आपके लिए लेकर आए हैं उज्जैन के विकास से जुड़ी कुछ खबरें और साथ ही आज के दिन क्या विशेष है इसकी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं ये ताजगी भरा सफर इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

श्रोताओं, कृषि और किसानों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में एक सकारात्मक पहल की जा रही है। जिले में कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त तय की गई है। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी आत्मा योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए किसानों की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि अन्नदाताओं की मेहनत को इस तरह सम्मान मिल रहा है। इस प्रक्रिया में किसान द्वारा अपनाई गई आधुनिक कृषि तकनीक, कुल उपज और उत्पादकता के आधार पर उनका आकलन होगा और फिर उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे। जो भी किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे तय समय सीमा में अपना आवेदन जरूर जमा करें। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संबंधित विकास खंड कार्यालय के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अथवा जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस खबर के साथ ही आइए सुनते हैं फिल्मबाजी से ये गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने।

श्रोताओं, FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण और ये है कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज। और सुप्रभात उज्जैन में अब समय है उज्जैन के समाचार पत्रों से आई खबरों का। उज्जैन के समाचार पत्रों से पहली खबर ये है कि शहर में रविवार देर रात शुरू हुई बारिश का सिलसिला सोमवार की दोपहर तक लगातार जारी रहा। पिछले 24 घंटों में लगभग 1.79 इंच बारिश दर्ज की गई। इस तरह अब कुल बारिश का आंकड़ा लगभग 23.16 इंच पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगली खबर श्रावण मास के दूसरी सवारी से आ रही है। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी पूरी आस्था और उल्लास के साथ निकाली गई। पालकी

में भगवान चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मनमहेश स्वरूप में बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने निकले। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से सवारी मार्ग पर उज्जैन नगर निगम द्वारा देशभक्ति और एकता का प्रभावी संदेश दिया गया। लगभग 7,80,000 श्रद्धालुओं ने सवारी के दर्शन किए। इस दौरान 9 भजन मंडलियां स्वतंत्रता दिवस की थीम पर शामिल हुई तो वहीं 25 कलाकार महाकाल बैंड के साथ प्रस्तुतियां देते हुए शामिल हुए। लगभग 1200 पुलिस कर्मियों ने सवारी की व्यवस्था की कमान संभाली। सवारी मार्ग पर सवारी के तुरंत बाद सफाई मित्रों ने तुरंत सफाई कर एक अच्छी मिसाल पेश की। ये अवसर राष्ट्रभक्ति और आस्था का अनूठा संगम रहा। श्रोताओं, श्रावण माह में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सोमवार को भस्म आरती से लेकर शयन आरती तक लगभग 5,86,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। श्रावण के दूसरे सोमवार को सुबह 2:30 पर मंदिर के पट खोले गए। और अगली खबर है आगामी सिंहस्थ के संबंध में। आगामी सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 29 किलोमीटर लंबे पक्के घाट निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। नए नियमों के तहत अब इन किसानों को लगभग 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासन ने प्रभावित 15 गांवों के किसानों की बैंक डिटेल जुटाना शुरू कर दिया है। प्रक्रिया पूरी होते ही अगले सप्ताह से किसानों के बैंक खातों में ये राशि आना शुरू हो जाएगी। अगली खबर रेल यात्रियों के लिए है। यात्रियों की सुविधा के लिए उज्जैन स्टेशन पर व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। आज 11 अगस्त से 4 ट्रेनों के निर्धारित प्लेटफॉर्म बदले जा रहे हैं। अब गाड़ी संख्या 20911 इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। इसी तरह मुंबई सेंट्रल इंदौर एक्सप्रेस, जिसकी गाड़ी संख्या है 12961, नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12416 और गाड़ी संख्या 20156 नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएंगी। यात्री अपनी यात्रा से पूर्व इसकी सूचना अवश्य प्राप्त कर लें। सिंहस्थ 2028 से पूर्व शहर के 11 मंदिरों को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1,124 करोड़ रुपए तय की गई है। इनमें से 5 मंदिरों के लिए वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, अन्य मंदिरों की टेंडर प्रक्रिया अभी जारी है। उज्जैन के समाचार पत्रों से आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म फकीरा से ये गीत।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: श्रोताओं, किसानों के हितों की रक्षा और उनकी फसलों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक और ज़रूरी जानकारी सामने आई है। खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तारीख अब बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी गई है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान अपनी धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, तिल और उड़द जैसी फसलों का आसानी से बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक तय प्रीमियम राशि जमा करनी होगी। खेती में अक्सर मौसम की अनिश्चितता का डर बना रहता है, ऐसे में यह बीमा योजना बहुत बड़ी राहत देती है। फसल में किसी भी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में इस योजना के माध्यम से उचित क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए किसान अपने नज़दीकी किसान खिदमत घर जाकर अंतिम तिथि से पहले अपना PMFBY रजिस्ट्रेशन पूरा अवश्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज जो किसान भाइयों को साथ ले जाना है वो हैं आधार कार्ड, बैंक पासबुक, लैंड रिकॉर्ड्स आदि। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं फिल्म नया दौर से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले ने।

श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारा शहर एक बार फिर स्वच्छता के नए आयाम छूने की तैयारी में है। नगर निगम अब नई सिटी प्रोफाइल तैयार करने में पूरी लगन से जुट गया है। इसके लिए शहर की मौजूदा स्थिति का सीधा फील्ड स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है। हाल ही में हुई जोनवार समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं कि केवल पिछले आंकड़ों को आधार न माना जाए, बल्कि वर्तमान स्थिति के अनुसार हर जानकारी को अपडेट किया जाए। इसके तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कचरा पृथक्करण, परिवहन, प्रोसेसिंग, साफ सफाई व्यवस्था और सार्वजनिक शौचालयों जैसे तमाम संसाधनों का डाटा सीधे फील्ड से मिलाया जाएगा। ये कदम शहर की साफ सफाई को और अधिक पारदर्शी बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अब कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म बॉबी से और आवाज़ है मुकेश की।

श्रोताओं, स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार शहर के आंकड़ों और फील्ड की स्थिति का मिलान किया जा रहा है। निगम रिकॉर्ड के अनुसार शहर में लगभग 54 वार्ड, लगभग 14 पर्यटक स्थल और 51 सुलभ शौचालय हैं। अब इन सभी आंकड़ों को मैदानी हकीकत से परखा जाएगा। जिन आंकड़ों में बदलाव हुआ है उन्हें तुरंत अपडेट किया जाएगा। इस नए डेटा के आधार पर वार्ड वार कमियों और ज़रूरतों को चिन्हित करके स्वच्छता व्यवस्था में सुधार की कार्य योजना तैयार होगी। ये सारी मेहनत आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनभागीदारी और प्रशासन के इस साझा प्रयास से हमारा शहर स्वच्छता में नई ऊंचाइयां अवश्य हासिल करेगा, ऐसी आशा है। और इस खबर के साथ ही आइए सुनते हैं फिल्म श्री 420 से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश ने।

उसे पूरे सम्मान के साथ पुनः उतार कर और व्यवस्थित अगले वर्ष तक के लिए या अगले राष्ट्रीय त्यौहार तक के लिए संभाल कर रखें। और इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर। फिल्म का नाम है योद्धा और आवाज़ बी प्राक की है।

श्रोताओं, सुप्रभात। उज्जैन के इस अंक में आज बस इतना ही। उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा और आपकी सुबह को एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर गया होगा। फिर किसी अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं अब समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
5: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव

0: फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का. स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ. उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है. इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है.
1: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे. राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी. सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं.
2: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं. इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं. भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है. अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है. इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है. समाचार कक्ष से अमीषा.
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है. उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही. श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी. उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है.
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए. उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया. पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है. रांची के उपायुक्त नाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है. प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची.
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं.
4: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है. गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है. मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है.
1: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं. कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है. कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है. भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था. भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है. हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा

0: चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
3: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृहमंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bandh today if a lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the money bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The Finance Minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
6: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मालवा की धड़कन आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं अपना चहेता शो उज्जैनी आरजे, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे रश्मि बजाज। नई सुबह का नया सवेरा नई उम्मीदें लाया है, नई सुबह का नया सवेरा नई उम्मीदें लाया है, महकती हवाओं ने देखो प्यार का गीत सुनाया है। दोस्तों, क्या कमाल की सुबह है आज। खिड़की से आती ताजगी भरी हवा और शिप्रा किनारे की इस मीठी ठंडक ने तो दिल को झूमने पर मजबूर कर दिया है। रिमझिम फुहारों से धुआं धुआं सा ये मौसम बड़ा सुहावना और खुशनुमा लग रहा है। अच्छा बताइए, आपकी इस हसीन सुबह की शुरुआत कैसे हुई? क्या गर्मा गर्म पोहे, जलेबी और अदरक वाली कड़क चाय के साथ, या आप योगा मैट पर आसन लगा रहे हैं? कहीं कोई काम पर निकलने की जल्दी में है तो कोई अखबार पढ़ने में ऐसे मगन है जैसे कल एग्ज़ाम है। खैर, जो भी हो, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट हमेशा रखिए और मेरे साथ इस शानदार सफ़र का इंजॉय कीजिए।

लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का कतरा कतरा कल इनकलाब लाएगा। दोस्तों, आज जब हम आज़ादी की खुली हवा में

मुजफ्फरपुर में उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका। हालांकि दुर्भाग्य से उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था, लेकिन उस छोटी सी उम्र में भी खुदीराम के भीतर देशभक्ति की जो ज्वाला दहक रही थी, उसने पूरे देश में एक नई क्रांति को जन्म दे दिया।

0: दोस्तों, मुजफ्फरपुर की उस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेजों के हाथ लगने से बेहतर खुद को गोली मारकर शहादत चुनना सही समझा। वहीं खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए। जब अदालत में उस युवा को फांसी की सजा सुनाई गई तो उनके चेहरे पर खौफ की कोई लकीर नहीं थी, बल्कि वो मुस्कुरा रहे थे। जज को भी अचरज हुआ। 11 अगस्त 1908 का वह दिन, जब महज 18 साल 8 महीने का वह नौजवान हाथ में भगवद गीता लिए वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए शान से फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। कहते हैं उस दिन बंगाल फूट फूट कर रोया था। नौजवानों ने धोती के किनारों पर खुदीराम लिखवाकर पहनना शुरू कर दिया था। खुदीराम बोस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि आज़ादी का वो जज्बा बन गए जिसने लाखों युवाओं की रगों में इनकलाब का खून दौड़ा दिया। उनका ये बलिदान हमारे दिलों में आज भी है और हमेशा धड़कता रहेगा।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात न करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: ए भाई, जरा देख के चल।

श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण और ये कार्यक्रम है उज्जैनी आरजे और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे रश्मि बजाज।

दोस्तों, ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। आइए आज अपने अंतर्मन की असली पहचान को गले लगाते हैं, और वो पहचान है हमारा स्वाभिमान, हमारा आत्मसम्मान। ज़रा सोचिए, क्या है ये आत्मसम्मान? अक्सर हम इसे सेल्फ एस्टीम समझ बैठते हैं, जो दूसरों की तारीफों पर टिका होता है। लेकिन सच्चा आत्मसम्मान किसी की वाहवाही का मोहताज नहीं होता। ये हमारे अपने उसूलों, हमारे चरित्र और हमारे मूल्यों से जन्म लेता है। ये समय है खुद से जुड़ने का। आइए शुरुआत एक छोटे से कदम से करें, अपने मूल्यों को पहचानें, खुद से पूछें कि आप असल में क्या हैं और किन उसूलों के साथ जीना चाहते हैं। जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपके सामने सिर झुकाती है। तो खुद को वो सम्मान जरूर दीजिए जिसके आप हकदार हैं।

दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम कितनी बार सिर्फ दूसरों की नाराज़गी से बचने के लिए हाँ कह देते हैं, भले ही अंदर से हमारा मन गवाही ना दे रहा हो। सच्चा आत्मसम्मान इसी बात में है कि आप अपनी अहमियत दूसरों के सर्टिफिकेट से ना आंकें। आपकी कीमत आपके अपने उसूलों से तय होती है। बस एक संकल्प, स्पष्ट सीमाएं या बाउंड्रीज तय करना। अगली बार जब कोई आपसे कुछ ऐसा करने को कहे जिसके लिए आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, तो तुरंत हाँ कहने के बजाय ये कहना सीखें कि मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। ये छोटा सा वाक्य आपको खुद के लिए समय देता है और बेवजह के दबाव से बचाता है। याद रखिए, अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये खुद के प्रति आपका सबसे बड़ा फर्ज है। तो आज से बिना सोचे समझे हाँ कहने की आदत को थोड़ा बदलिए। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

दोस्तों, कभी कभी हम किसी काम के लिए ना तो कह देते हैं, लेकिन फिर खुद को सही साबित करने के लिए लंबी चौड़ी सफाई देने लगते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इनकार करने पर आपको अपनी मजबूरी साबित करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। आत्मसम्मान हमें यही सिखाता है कि आप गरिमा और शालीनता के साथ अपने फैसले लें। हमारा तीसरा मंत्र बहुत ही असरदार है, अपने इनकार को संक्षिप्त रखें। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आदर के साथ कहा गया एक ना अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। आपको हर किसी को लंबी सफाई देने या उनके सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप दृढ़ता से लेकिन प्यार से इनकार करना सीख जाते हैं, तो लोग भी आपकी सीमाओं का सम्मान करने लगते हैं। खुद पर ये भरोसा जगाइए कि आपके फैसले आपके अपने हैं और उन्हें किसी स्पष्टीकरण की दरकार नहीं है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से कार्यक्रम उज्जैनी आरजे, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रश्मि बजाज।

दोस्तों, हम अक्सर दुनिया भर से तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप खुद से कैसे बातें करते हैं? जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे भीतर की आवाज़ हमें ही कोसने लगती है, मुझसे तो कुछ सही होता ही नहीं। आत्मसम्मान हमें इस आत्म आलोचना के भंवर से निकाल कर गलतियों से सीखने की ताकत देता है। अगली सीख हमारी यही है, खुद से की जाने वाली बातों की दिशा बदलें। जब भी आपके मन में खुद के लिए कोई नकारात्मक ख्याल आए तो उसे वहीं रोकें, उसे प्यार और यथार्थ से बदलें। खुद से कहें कि हाँ, गलती हुई है, लेकिन मैं इससे सीखकर आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। जैसे आप अपने किसी उदास दोस्त को ढांढस बंधाते हैं ना, वैसे ही खुद को भी सहलाइए, क्योंकि आपके भीतर का इंसान आपके प्यार और सहानुभूति का सबसे पहला और सबसे बड़ा हकदार है। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए।

दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार हमारा सामना ऐसे लोगों या हालात से होता है जो हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? क्या आप उनसे बहस में उलझ जाते हैं? सच्चा आत्मसम्मान ये नहीं है कि आप हर लड़ाई जीतें, बल्कि ये समझना है कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है ही नहीं। अगला संदेश बहुत गहरा है। अपमानजनक जगहों से दूर हट जाना। आपको वहां रुककर खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहां आपकी कद्र ना हो। उन बहसों, उन महफिलों या उन दिखावे के रिश्तों से खामोशी से किनारा कर लीजिए जो आपकी मानसिक शांति को भंग करते हैं। आपका सुकून दुनिया की हर बहस जीतने से कहीं ज़्यादा कीमती है। वहां से मुड़ जाना आपकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत और खुद के प्रति आपके गहरे सम्मान का प्रतीक है। हाँ, लेकिन आत्मसम्मान और अहम के बीच एक बहुत बारीक सी रेखा होती है। आत्मसम्मान अहम न बन जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।

दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपने किसी दोस्त से मिलने का वादा किया है तो क्या आप उसे तोड़ते हैं? शायद नहीं, लेकिन जब बात खुद से किए वादों की आती है तो हम कितनी आसानी से उन्हें कल पर टाल देते हैं, नहीं? आज नहीं, कल से कसरत करूँगा, या आज थोड़ा कम सो लेता हूँ, ये खुद के साथ की गई सबसे बड़ी बेईमानी है। अगला संकल्प, खुद से किए वादे निभाना। जब आप अपनी सेहत, अपने आराम या अपने लक्ष्यों के लिए तय की गई बातों पर अमल करते हैं तो आपके भीतर खुद के प्रति एक अटूट विश्वास पैदा होता है। आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। याद रखिए, आत्मसम्मान अचानक से नहीं आता, ये रोज़मर्रा की उन छोटी छोटी आदतों से बनता है जहां आप खुद को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए आज जो वादा खुद से करें उसे हर हाल में पूरा करें। यकीन मानिए, आप अपने लिए बहुत अहम हैं।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छान कर उबाल कर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: दोस्तों, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी की किताब के पन्नों की तुलना दूसरों की चमकदार जिल्द से करने लगते हैं। वो मुझसे कितना आगे है या उसके पास वो सब है जो मेरे पास नहीं, ये तुलना हमारी सारी खुशियाँ छीन लेती है। आज का आखिरी सबसे खूबसूरत संदेश, तुलना करना बंद करें। आपकी यात्रा आपकी अपनी है, दूसरों से अपनी अहमियत नापना सेल्फ एस्टीम हो सकता है जो लोगों की राय के साथ बदलता रहता है, लेकिन आत्मसम्मान पूरी तरह आपके अपने नियंत्रण में होता है जो बहुत स्थिर और टिकाऊ है। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए। अगर आपको अपनी तुलना करनी ही है तो अपने बीते हुए कल से कीजिए। देखिए कि आप कल से आज कितने बेहतर इंसान बने हैं। खुद से प्यार कीजिए, खुद का सम्मान कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को गले लगाते हैं तभी ये दुनिया आपको गले लगाती है।

ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, खुद के उसूलों पर चलने का है अपना ही तौर। दोस्तों, आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं है, ये तो अपनी आत्मा को दिया गया वो खूबसूरत तोहफा है जो हमें दुनिया की भीड़ में भी खुद से मजबूती से जोड़े रखता है। जब हम खुद की कद्र करना सीख जाते हैं तो बाहरी आलोचनाएं हमें भीतर से तोड़ नहीं सकती। इसलिए आज जब आप आईना देखें तो खुद से नज़रें मिलाकर मुस्कुराते हुए कहें, तुम अनमोल हो। दूसरों को प्यार बांटने से पहले अपना प्यार खुद को देना न भूलें। अपनी शर्तों पर जिएं, क्योंकि आपका सम्मान आपकी अपनी मुट्ठी में है। दूसरों को भी प्यार दें, पर उससे पहले खुद से प्यार करें।

तो दोस्तों, आज के उज्जैनी आरजे में बस इतना ही। अपनी खुशियों की चाबी हमेशा अपने पास रखिए। विद दीज पॉजिटिव वाइब्स, योर आरजे रश्मि बजाज इज साइनिंग आउट नाउ फ्रॉम उज्जैनी आरजे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उज्जैनी आरजी FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब समय है नए गीतों के कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स का।

नमस्कार। भावनाओं के आसमान में संगीत के परिंदों के साथ उड़ान भरने का वक्त आ गया है। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड बीट्स और आपके साथ इस सुहाने सफर पर हूं मैं, आपकी दोस्त रश्मि बजाज। जिंदगी के अनगिनत रंगों और रोजमर्रा के शोर शराबे के बीच ये शो एक ऐसा सुकून भरा कोना है जहां सिर्फ आपके पसंदीदा सुर गूंजते हैं। आज का हमारा म्यूजिकल गुलदस्ता भी कुछ ऐसे ही नायाब और चुनिंदा नगमों से सजा है जो आपके दिल की हर धड़कन को एक नई आवाज देंगे। तो आइए रेडियो की तरंगों पर सवार होकर आज की सुरीली दास्तान की शुरुआत करते हैं। रूहानी सुकून और खुद की तलाश का वो मुकाम जहां इंसान दुनियादारी से दूर बस उस परवरदिगार के नूर में खो जाना चाहता है। एआर रहमान की जादुई कंपोजिशन जो एक इबादत की तरह कानों में घुलती है और इरशाद कामिल की वो सूफी लेखनी जो सीधे रूह को झूले। खुद एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की बेमिसाल आवाज़ों में फिल्म रॉक स्टार से सुनी एक ऐसा गीत जो मन के सारे अंधेरे दूर कर देता है।

दोस्तों, जब मोहब्बत नई नई होती है तो दिल और दिमाग के बीच की गुफ्तगू बड़ी ही मासूम और मीठी हो जाती है। वीजू शाह का वो बेहद सुरीला 90 के दशक का संगीत और आनंद बख्शी के लिखे वो सीधे सादे जज्बात, हरिहरन की मखमली गायकी और साधना सरगम की खनकती हुई मीठी आवाज़ में फिल्म तेरे मेरे सपने का वो सदाबहार नगमा जो आपको उन पुराने सुनहरे दिनों की याद दिला देगा।

दोस्तों, कभी कभी प्यार का कनेक्शन कुछ इस तरह से जुड़ता है कि सीधा दिल की घंटी ही बजने लगती है। मीट ब्रदर्स का वो एकदम चुलबुला और डांसिंग बीट्स वाला म्यूजिक और कुमार के लिखे वो शरारत भरे बोल, जोनिता गांधी, नकाश अजीज और खुद मीट ब्रदर्स की फुल ऑन एनर्जी वाली आवाज। फिल्म ड्रीम गर्ल से आ गया है वो मजेदार ट्रैक जिस पर थिरकने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे।

दोस्तों, पहला प्यार जब दिल पर दस्तक देता है तो वो कोई आम प्यार नहीं होता। उसमें एक अलग ही गहरा और मासूम सा एहसास होता है। विशाल शेखर की वो ताज़ा और सुकून देने वाली धुन, अन्विता दत्त के लिखे वो एकदम नए और प्यारे अल्फाज, शेखर रावजियानी, सलीम मर्चेंट और निधि

मनमोहन की आवाज़ों की वो जादुई जुगलबंदी जिसने इस गाने को हर आशिक का एंथम बना दिया। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से सुनिए मोहब्बत की ये नई परिभाषा।

0: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: दोस्तों, इश्क की हवा जब चलती है तो अपने साथ सारी गम उड़ा ले जाती है, और बस एक मीठा सा

खुमार छोड़ जाती है। अनिरुद्ध रविचंद्रन का वो एकदम मॉडर्न और हवाओं में उड़ने पर मजबूर कर देने वाला संगीत, कुमार के लिखे वो खूबसूरत और नशीले बोल, अरिजीत सिंह की उस जादुई कशिश और शिल्पा राव की बेमिसाल गायकी में फिल्म जवान का ये चार्टबस्टर गाना जो हर दिल की धड़कन बन चुका है।

दोस्तों, जिंदगी के सफर में कुछ पल ऐसे आते हैं जब लगता है कि ये दुनिया पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं थी, और ये सब कमाल होता है किसी खास इंसान के आ जाने के बाद। अमाल मलिक का वो बेहद सादा और रूहानी संगीत, मनोज यादव के लिखे वो सच्चे एहसास, अरमान मलिक की वो दर्द और मिठास से भरी आवाज, और पलक मुच्छाल का प्यारा सा साथ। फिल्म सनम रे से प्यार की इस खूबसूरत सी शुरुआत को आवाज देता ये गीत, आइए सुनते हैं।

तो दोस्तों आज की इस प्यारी सी म्यूजिकल महफिल में बस इतना ही। अब आपकी दोस्त रश्मि बजाज को दीजिए कार्यक्रम बॉलीवुड बीट से इजाजत। जिंदगी की बीट्स को एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स, और अब समय है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन के इस सुहाने सफर में आपके अपनों की यादों और जज्बातों को सुरों में पिरोने का वक्त आ गया है। आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद खास और पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज। कहते हैं ना, खतों में लिपटी हुई कुछ दुआएं आती हैं, खतों में लिपटी हुई कुछ दुआएं आती हैं, अल्फाजों में अपनों की वफाएं आती हैं। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, वहां आपके ये प्यार भरे खत हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। आपके लिखे हर एक गीत में कभी किसी की मीठी सी याद छिपी होती है, तो कभी किसी अपने से दूर होने का दर्द। आज का ये पूरा सफर आपके इन्हीं खूबसूरत जज्बातों के नाम है। तो आइए आपके भेजे गए इन प्यारे प्यार भरे खतों को खोलते हैं और आपके दिलों की धड़कन को खूबसूरत तरानों के साथ मिलाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म रंग से, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। नदीम श्रवण का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। इस गीत को सुनना चाहा है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े और आरती जोंधड़े ने, पाशना सिटी उज्जैन से शरद मनोरमा, रूपकिशोर, श्वेता बजाज, रीत और रूपाली काबरा ने, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवांगन ने, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय, अनिष्का और राधिका गजभिये ने, बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, कपिल, सविता और स्वाति माखीजा ने, ब्रिजधाम कॉलोनी उज्जैन से अर्चना, संजीव और आशु ने।

0: श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन और अपार ढिंगिया ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी ने, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन से लोकेंद्र वर्मा, रेखा, अनिकेत, अर्पिता और इशिका वर्मा ने, मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल ने। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म दाग से किशोर कुमार का गाया ये गीत, जिसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।
1: आज क्या है

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म क्या यही प्यार है से। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने। संगीत साजिद वाजिद का है और गीत के बोल राशिद ने लिखे हैं। इस गीत को सुनना चाहा है लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक, मोहम्मद साकिब और मोहम्मद हसनैन पवार ने। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े ने। ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे ने। दौलतबाग मुरादाबाद से जावर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बास ने। कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म सागर से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। संगीत आरडी बर्मन का है और गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है दतरंगी भाटपारा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल हीरामणि पारसमणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा ने। छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल राजेश ने। प्रमिलागंज आलोर जिला रतलाम से बलवंत कुमार, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार, रेखा, राखी, तपस्या और करिश्मा कामले ने। इसी गीत को सुना चाहा है छत्तीसगढ़ के दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने।

दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म दोस्ती से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है बेरड़ी जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से राजेश सोनी और कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी और चंचल ढूम ने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे ने, पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया ने, बीड़ शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पराग और प्रदीप पगारिया ने, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल ने, रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से खुशी ब्रोनो, गणेश कार्तिक, संजना और ललिता नारायण खर्चे ने, साथ ही स्वाति प्रयाग और मालती चौधरी ने।

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रणीता और टुकटुक गवाणकर ने, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता प्रिंस एकांश गवाणकर ने, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश श्वेता सुमित और ध्वनि गवाणकर ने, निवासा खुपटरी से बंडू लाहौर पोपलघट माया शिवांश चंद्रकला और देवीदास पोपलघट ने, श्रीरामपुर भोकर से हरिभाऊ श्रावण बिड़वे और अनिता बिड़वे ने, नागचून रोड जिला खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार खुशनसीब अब्दुल हक जियदुल हक और मोहम्मद उमर डाबर ने। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म राज से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का है।

श्रोताओं, अगला गीत है फिल्म जांबाज से, जिसे गाया है किशोर कुमार, सपना और सपना ने। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर ने। नई सड़क शाजापुर से MM राजावत, राज मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रीचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और समस्त राजावत परिवार ने। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर, जैतिग और मीका बिरक ने।

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है ग्राम बहरामपुर टेमा खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत, अभिषेक, सीमा, डॉक्टर अमित, सचिन, समर, राज, आर्यन, आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा ने। वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा, मोहम्मद अल्तमश, मोहम्मद शादाब खत्री और रमेश गौड़ ने। पुणे महाराष्ट्र से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका और चंद्रप्रभा वाड़ोदे ने। जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज ने। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म अवतार से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। आनंद बख्शी के शब्दों को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सनी। संगीत आरडी बर्मन का है और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। इस गीत को सुनना चाहा है दुर्गा चौक जुनापानी सनावद मध्य प्रदेश से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम, हीरालाल, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन बड़ोले ने, और तेज सिंह जवर ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीत निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता ने। कृष्णानगर टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे ने। उज्जैन से स्वाति, श्रुति, शशांक और सुदिष्ट झा ने।

श्रोताओं, अगला गीत है फिल्म दबंग से, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। जलीस शेरवानी के बोल हैं और संगीत साजिद वाजिद का है। इस गीत को सुनना चाहा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया ने। कोटवा, नारायणपुर, बलिया से ओम प्रकाश, ऊषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिटा से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल ने। शेरपुर कला से अवधेश, प्रीति और नवनीत राय ने। साथ ही रमेश चंद्र फिल्टर, बेबी बेन और समस्त फिल्टर बंधु राज रॉयल्स कॉलोनी उज्जैन से ही इस गीत को सुनना चाहा है सौमित्र विहान और कृष्णा त्रिपाठी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म खिलाड़ी से, जिसे गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने। अनवर सागर के बोलों को संगीत दिया है जतिन ललित ने। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम हिंगड़ी, तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से जगदीश धाकर, रैमा रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकर ने। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठरी और रमेश मिगलानी ने। लखविंदर सिंह संधू, महावीर और गुरचरण ने। ग्राम लाहौरी, जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल विशाल चीला और गायत्री धनजे ने। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी महिमा और नीतू वैद ने। छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार, माया, रिंकू, सन्नी और कोमल यादव ने।

श्रोताओं, वक्त का परिंदा कब उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। आपके खतों और उनमें आई फरमाइशों के साथ बिता ये सुहाना पल बहुत जल्दी बीत गया। आपकी फरमाइश का ये कारवां आज यहीं ठहरता है, लेकिन अपनों से जुड़ने का ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे, फासले चाहे कितने भी हों, दिलों के तार जुड़े रहते हैं। एहसास आपके स्नेह के आपके खतों में हर पल हमारे साथ रहते हैं। यूं ही अपने जज्बातों को कागज़ पर उतारते रहिए और हमें भेजते रहिए, क्योंकि आपके शब्द ही हमारी इस महफिल की असली रौनक है। हमारा पता है आकाशवाणी उज्जैन, द्वारा केंद्र निदेशक, विद्यापति नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन। पिन कोड है 456010। फिर मुलाकात होगी आपसे यहीं इसी मंच पर, जिसका नाम है आकाशवाणी उज्जैन, कुछ नए खतों और आपकी नई फरमाइशों के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। अब अपनी रेडियो मित्र रश्मि बजाज को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम रंग तरंग।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं उषा अमोनकर के गाए इस भजन के साथ।

उषा अमोनकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। आइए अब सुनते हैं हालिम साबिर का कलाम। इसे आवाज दी है भूपिंद्र ने, संगीत मधु मुखर्जी का है।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: और आइए अब सुनते हैं शुभा मुदगल की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत।

शुभा मुद्गल की आवाज में अभी आपने ये गैर फिल्मी गीत सुना। और आइए आप सुनते हैं गुरु रंधावा और निकिता गांधी की आवाजें। गीतकार और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वाणी जयराम की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं दानिश बरेलवी का ये कलाम।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अरिजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार का लिखा ये औकार फिल्मी गीत। इसे संगीत में ढाला है अमाल मलिक ने।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम रंग तरंग की अगली पेशकश असीस कौर की आवाज है। जानी का लिखा ये औघार फिल्मी गीत है और बी प्राक का संगीत है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: सिद्धांत महादेव के संगीत निर्देशन में हम आपको मोती सुल्तानपुरी का लिखा एक और फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं, आवाज जावेद अली की।

0: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार, सदन चलना चाहिए।
0: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। आज तड़के पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से जा टकराई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस

0: के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज अभिनेता सुनील शेट्टी और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम में हमने उन्हीं की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: बस तुम रहते हो।
1: नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा ही गीत सुना। मुख्य स्वर अभिजीत का था और फिल्म का नाम था धड़कन। आइए सुनते हैं पंकज उदास, साधना सरगम और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम मोहरा, गीतकार इंदिवर, संगीतकार विजू शाह।

कुमार सानू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म टक्कर का गीत। गीतकार थी माया गोविंद और संगीतकार थे अनु मलिक। और ये आवाजें हैं मीका सिंह और साथियों की। फिल्म का नाम है दे दनादन। इशाद कामिल के बोल, प्रीतम की धुन।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया का संगीत, समीर के बोल, फिल्म का नाम है फिर हेरा फेरी और गायक स्वर हिमेश रेशमिया का।

ये आवाज थी हिमेश रेशमिया की। और आइए अब सुनते हैं अनुमलिक के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल, आवाज रूप कुमार राठौड़ की। फिल्म का नाम है बॉर्डर।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत नीति मोहन और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है किक।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

साजिद वाजिद की संगीत निर्देशन में समीर अंजान का लिखा गीत सुनिए, आवाजें नीरज श्रीधर और साथियों की, फिल्म का नाम हाउसफुल 2।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सेम भट्ट की आवाजों में। फिल्म का नाम है मर्डर टू। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और धुन बनाई है मिथुन ने।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के कार्यक्रम सुरीला सफर का। क्यों, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा है हमने और यही हो भी रहा है। हमारे श्रोता रेडियो की उस ओर बैठे हैं हमसे बात करने के लिए, हमसे संवाद करने के लिए, क्योंकि कहते हैं जिंदगी में कोई भी रिश्ता तभी कायम रह सकता है जब जहां वहां कुछ संवाद हो, है ना? हाँ ठीक है, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि संवाद से ज्यादा आपसी समझ होनी बहुत जरूरी है, लेकिन संवाद के बिना जीवन बिल्कुल नीरस लगता है। क्यों? जैसे कि सुरीला सफर में हम आपके लिए आते हैं और बहुत सारी बातें आपसे करते हैं। सोचिए अगर हम इधर बात न करें तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना? और उधर से आप अपने संवाद, अपनी बातें, अपने विचार हम तक न पहुंचाएं तो ये कार्यक्रम कितना अधूरा होगा। इसलिए जीवन में संवादों का महत्व बहुत जरूरी है। तो आज हम ऐसे ही कुछ गीत आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें किसी भी गीत में आरंभ में या बीच में कहीं भी छोटे छोटे संवाद हमें सुनने को मिल सकते हैं। और इन गीतों को सुनते सुनते जब बीच में हमें कोई छोटा सा संवाद सुनने को मिलता है ना, तो पता है क्या होता है, एक पल के लिए हम उस संवाद को सुनने लग जाते हैं कि अरे ये अभिनेता या ये अभिनेत्री क्या कह रही है, ये गायक या ये गायिका क्या बोल रही है बीच में। होता है ना ऐसा? बिल्कुल होता है। तो वो संवाद हमें बहुत कुछ कह जाते हैं गीतों के जरिए कि इस गीत में ये संवाद किस लिए रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। और यकीनन जब आज हम सुरीला सफर पर निकल चुके हैं तो संवाद करते रहेंगे, है ना? आपस में बातचीत हम करते रहेंगे। हमारी इबारत भी आपने पढ़ ली है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम अपनी इबारत को आपके सामने रख देते हैं। आज हमने लिखा है कि रिश्तों में संवाद बनाकर रखिए, संवाद हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। आज के गीत केवल पुराने गीत समझ कर मत सुनिएगा, इनमें छिपी बातचीत को सुनिएगा। किसी में प्रेम मिलेगा, किसी में बिछड़ने का दर्द, किसी में शिकायत, किसी में उम्मीद, किसी में रिश्तों की मिठास और किसी में जिंदगी की सच्चाई। और शायद किसी संवाद को सुनते सुनते आपको भी अपने जीवन का कोई संवाद याद हो आए जो आपने किसी खास व्यक्ति से किया था, है ना? कोई व्यक्ति याद हुआ है जिसे बहुत कुछ कहना था लेकिन आपने कहा नहीं। तो आज के इस कार्यक्रम की तरफ से एक छोटी सी बात यही है कि रिश्तों को हमेशा मजबूत बनाकर रखिए, उनके बीच संवाद कभी बंद मत होने दीजिए, क्योंकि जहां संवाद जीवित रहता है वहां रिश्ते जीवित रहते हैं, और जहां रिश्ते जीवित रहते हैं वहीं जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत गीत बन जाती है। तो इसी एहसास के साथ सुनिए आज का ये कार्यक्रम। और हां, इन गानों में आने वाला संवाद शायद आपको भी अपने जीवन की कोई कहानी याद दिला दे। तो समझ आया कुछ कि आज कैसे होंगे गीत? भाई हमारे श्रोता तो समझ चुके हैं कि आज के गीतों में आरंभ में या बीच में, यानी पूरे गीत में कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा कोई ना कोई संवाद जरूर होगा, है ना? तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला

0: सफर। बताइएगा इस गाने में जो संवाद बोले जा रहे हैं वो फिल्मी पर्दे पर किस अभिनेता और अभिनेत्री ने किए हैं?
1: अरे देख रहे हैं।
2: तो देखने दो।
1: जल भी रहे हैं।
2: अरे तो चलने दो।
1: खुली सड़क है बाबा।
2: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हो जाए
2: हो जाए।

जी तो अभी आपने सुना फिल्म खेल खेल में का ये गाना युगलस्वर किशोर कुमार और आशा भोंसले की थी। गुलशन बावरा की रचना थी राहुल देव बर्मन की धुन। जी तो इस गाने के आरंभ में जो संवाद कर रहे थे आपने बिल्कुल सही कहा, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। और वैसे देखा जाए तो किशोर कुमार और आशा भोंसले ये संवाद कर रहे थे गाने के तौर पर। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप रिश्तों की गहराइयों और इसे जीवंत करने वाले संवाद को लेकर आई हैं। आज का संवाद सच में सुंदर होना चाहिए। रिश्ते भावनाओं की वो नाजुक डोर है जिन्हें सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल के संवाद से संजोया जाता है। संवाद किसी भी रिश्ते की वो जीवनदायिनी सांस है। शब्द रिश्तों के वो मोती हैं जिन्हें यदि सही समय और सही आदर के साथ पिरोया जाए तो वो जिंदगी को एक बेहद खूबसूरत माला बना देते हैं। संवाद ही वो खुशबू है जो रिश्ते के गुलशन को हमेशा महकाए रखती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में हम ऐसे पुराने गीतों से रूबरू होंगे जिनमें जिंदगी से जुड़े दिलचस्प संवाद हैं। आपकी इस मेहनत को दिल से सैल्यूट। और आप सभी सुनने वालों को भी हम सैल्यूट करते हैं कि लगातार आप इस सफर में हमारे साथ बने रहेंगे, इसलिए है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से समझ में आ गया है कि धुनों को सुनते सुनते शायद आपको भी कोई भूला हुआ चेहरा याद आ जाए, कोई ऐसा जिसे आप कुछ जरूरी बात बताना चाहते थे पर तब वक्त ने साथ नहीं दिया, इसलिए आज ही अपने अपनों से दिल की बात कहिए, दूरियों को मिटा दीजिए। शब्दों का ये पुल ही जिंदगी को महकाता है। जहां बात होती है वहीं प्यार सांस लेता है और जहां प्यार है वहां हर पल एक सुरीला नगमा बन जाता है। एक श्रोता लिखते हैं,

0: संवाद रिश्तों की वो डोर जो दिखाई नहीं देती मगर बांधे रखती है। रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं, बात करते रहने से जीवित रहते हैं। कभी दो मीठे बोल मन की दूरी मिटा देते हैं तो कभी एक छोटी सी शिकायत रिश्ते में छिपी मोहब्बत को सामने ले आती है। संवाद बंद होते ही रिश्तों में खामोशी उतरने लगती है और खामोशी धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखिए, उनमें बात बनाकर रखिए, क्योंकि जहां संवाद जीवित रहता है वहां रिश्ते भी सांस लेते रहते हैं। आज सुरीला सफर में ऐसे गाने हो सकते हैं जिनमें प्रेम, शिकायत, पुकार, सवाल जवाब, मिलन, विरह और अनकही बातों का संवाद होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी संवाद समस्या ये है कि हम किसी की बात को समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि उसे उस बात का जवाब देने के लिए सुनते हैं। संवाद यानी बराबर बोलना और संवाद यानी बराबर सुनना भी। जिस बातचीत से वाद विवाद की स्थिति न पैदा हो वही सही अर्थों में संवाद कहलाता है। आपसी रिश्तों की नाजुक डोर को संभालने के लिए आपस में संवाद होते रहना बहुत जरूरी है। आजकल आपसी रिश्तों में जो खटास या अबोलापन आ गया है उसका मुख्य कारण संवाद का न होना ही है। संवाद करते रहने से दो अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्ति भी आपस में अच्छे मित्र बन सकते हैं। बहुत सुंदर विचार आप सभी के। जी तो हमारे श्रोता ने कहा कि आप हमेशा दो ही सवाल क्यों करती हैं, आप भी हमसे ज्यादा संवाद कीजिए ना इस कार्यक्रम में। तो चलिए आज हम दो की जगह बहुत सारे सवाल आपसे कर लेते हैं। तो क्या पूछें बताइए आप, कैसा कैसा सवाल चाहते हैं आप लोग कि हम आपसे क्या सवाल करें? भाई हम तो जब आज कार्यक्रम संवाद पर लेकर आए हैं कि इन गानों के बीच में चाहे छोटा सा संवाद सुनने को मिलेगा लेकिन हमारा ध्यान जरूर खींचता है वो संवाद अपनी ओर। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में या आपके लिए संवाद का असली अर्थ क्या है, सिर्फ बात करना या एक दूसरे को समझना? बताइएगा कि आप जब किसी से संवाद करते हैं घर परिवार, रिश्ते नाते, कहीं भी, तो क्या अर्थ होता है उसका? किसी को समझने के लिए संवाद करते हैं या सिर्फ आपका उद्देश्य एक बात किए रखना कि हाँ हमारी बातें होती रहनी चाहिए, ऐसा कोई विचार आपके दिलो दिमाग में रहता है? क्या रहता है किसी संवाद जब आप किसी से संवाद करते हैं तो? इसका जवाब कम से कम शब्दों में आपको देना है। ज्यादा शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोताओं को हमें शामिल करना होता है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर की रचना, आवाज किशोर कुमार की, फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम। बताइएगा कौन अभिनेता किस अभिनेत्री से ये बात कह रहे हैं?
1: नफरत कर

0: आखिर तो आप फूल हैं, फौलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।
1: याद आई अभिनेता।

तो आप बताइएगा कि पर्दे पर कौन से अभिनेता ये गीत गा रहे थे और किस अभिनेत्री को ये बात कह रहे थे। आपके लिए बहुत सरल सवाल पूछ रही हूँ आज मैं, है ना। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप संवाद विषय के साथ हम सभी के साथ संवाद करने वाली हैं, अच्छी बात है। संवाद सिर्फ बोलकर ही नहीं लिखकर भी किया जा सकता है, जो हम सभी इस पेज पर अभी कर रहे हैं। संवाद मतलब संवाद यानी समतोल बातचीत, जो बात मुंह के तराजू से तौली जाती है, अच्छा, और तोल मोल से बोलने पर या संवाद करने पर कोई बिखराव की स्थिति भी नहीं होती, जिसके कारण आपसी रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। संवाद रूपी डोर हमें दिखाई नहीं देती, मगर एक दूसरे से बांध जरूर देती है, फिर वो घर परिवार हो या मित्र मंडली। जिंदगी सेहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है, प्यार भरे संवाद में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी आवाज अच्छा हमेशा दिल को छू जाती है, आज के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। अरे वाह, क्या बात है, हमें भी इंतजार रहता है कि हमारे सभी श्रोता हमारे साथ सुरीला सफर के इस यात्रा पर निकल जाए, तो आप भी निकल पड़े हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम संवाद से सजने वाली है। संवाद जीवन का वो सबसे सुंदर जरिया है आपसी संबंधों को बनाए रखने का, पर आज के इस युग में संवाद की जगह केवल व्हाट्सएप ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखी है। पर फिर भी फोन पर अथवा सामने वाले बातचीत करते हैं, उसका अपना एक अलग ही आनंद होता है और उसमें हमें प्रेम आत्मीयता और अपनापन का एहसास होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि संबंधों की सबलता में संवाद सदैव सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। सामयिक हो या सर्वकालिक संपर्क सूत्र ही सामाजिकता का सुदृढ़ स्तंभ है। सकारात्मक और सृजनशील संवाद समय सापेक्ष है मगर सुखांत होते हैं। सीमित संसाधनों में भी सर्वमान्य सिद्धांत संवाद ही है। अति आशा की अपेक्षा संवादों में विवाद की जड़ है। समस्या समाधान का एकमात्र विकल्प संवाद है, विवाद नहीं। संबंधों को संबोधित करती हुई सुरीला सफर का ये कार्यक्रम हमें आज बेहद अच्छा लगेगा, ऐसा आपने मेरी तारीफ में फिर दो पंक्तियां लिखी हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली हूं। और वही इक्षोता लिखते हैं कि मेरा प्रणाम है, आज की इबारत रिश्तों को संवाद के जरिए जोड़ने वाली है, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रयास के लिए। वही इक्षोता लिखते हैं कि आज के सफर में बातचीत या कहें संवाद के माध्यम से हम सब एक दूसरे को जान या समझ पाएंगे। वो भूली बिसरी यादें, वो सामने की जिंदगी की बातें, प्यार भरी शिकायत या मायूसी या फिर आने वाली सुखद कल्पनाओं की जिसे साकार रूप में देखना है, ये सभी बातें जीवन को साकार करते संवाद ही हैं, जो हर रूप में ढलकर बातों को सजीव करते हैं। और यही बातचीत जीवन का मजबूत स्तंभ है। एक दूसरे से परिवार में, आसपास, समाज में, दीन दुनिया में सकारात्मक संवाद हम सभी को जोड़कर रखता है और हमें ये संवाद बनाए रखना चाहिए। जी तो अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने पिछले सवाल का जवाब दिया है कि नहीं, अभी हमें देखने पर पता चलेगा कि क्या आपने सोचा है कि संवाद हम किसी से बात करने को लेते हैं या किसी को समझना भी संवाद का एक तरीका होता है। तो बताइएगा आप अपने जीवन में जब संवाद करते हैं और सामने वाले से जब संवाद सुनते हैं तो क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरह का संवाद हम एक दूसरे से किया करें। बताइएगा अपने दोस्तों से, घर वालों से, बच्चों से किस तरह के संवाद आपके होते हैं। एक माता पिता किस तरह का संवाद अपने बच्चों से करता है और करना चाहिए, इस पर भी हम बात कर सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत सुनते हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम यादों की बारात।

जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप?

जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में बातचीत या कहीं संवाद के माध्यम से हम सब एक दूसरे को जाने समझ पाएंगे। वो भूली बिसरी यादें, वो सामने की जिंदगी की बातें, प्यार भरी शिकायत या मायूस भरी या फिर आने वाले सुखद कल्पनाओं की जिसे हम साकार रूप देना चाहते थे, ऐसी बहुत सी बातें हम संवादों के जरिए कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद केवल बातचीत करने का या आपसी बोलचाल ही नहीं है, ये दिल को दिल से जोड़े रखता है। संवाद हमेशा बनाए रखना चाहिए। प्रेम विरह शिकायतों से जीवन के सत्य जो है जीवंत बने रहते हैं। ध्यान रहे कि संवाद जारी रखने वाली स्थिति में भी जो मौन की गहराई और शब्दों की पवित्रता के माध्यम से रिश्तों की डोर जुड़ी रहती है, संवाद प्रेम को प्रकट करता है और रिश्तों में दूरी नहीं आने देता। विरह में संवाद की तड़प होती है, यादों के जरिए संवाद जारी रहता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से रोज ही सावन आया, घटा छाई, सुहाना मौसम, हरियाली, बस इन्हीं पर संवाद हो रहा था। आज आप आए और आपने भाई बहन के संवाद सुनने का इंतजार है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने इस कार्यक्रम को आपके साथ अंत तक सुनना है और आज की इबारत बहुत दिलचस्प लिखी है। इसमें गानों का संग्रह बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें सुनकर और महसूस करके अधिक आनंद आएगा। हमारे रिश्तों में मधुर मिठास घोलने वाले गानों को सुनने से आसपास के वातावरण में संगीत गूंजने लगता है और जो भी हम कहना चाहते हैं वो सब गीतों के माध्यम से हम कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बहुत उत्साहित हूँ रिश्तों में संवाद बनाए रखने के लिए, इस महत्व को समझाने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्ते मजबूत रखने के लिए संवाद होना बेहद जरूरी है। आपसी मनमुटाव को सुलझाने के लिए संवाद ही एकमात्र उपाय है। संवाद न होने पर छोटी समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। संवाद वाले गीत बहुत से हैं पर मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही है श्रोताओं, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही तो है। हम दिन रात अपनी जिंदगी का गीत गाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते निभा तो रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है, परिवार, भागदौड़, लेकिन जिंदगी के बीच में कभी कभी कोई संवाद आ जाता है। किसी अपने की कही भी कोई एक बात, माँ की कोई सीख हमें मिल जाती है, पिता की कोई डांट मिल जाती है, जीवन साथी का कोई सवाल मिल जाता है, बच्चे की कोई मासूम बात।

सुनने को मिल जाती है और हम अचानक रुक जाते हैं। सोचते हैं, क्या मैं सच में यही जिंदगी जी रहा हूँ जो मैं जीना चाहता था? तो इसीलिए फिल्मी जो गाने हैं, इनके बीच में आने वाला संवाद भी केवल ये मनोरंजन नहीं है, ये हमें ठहरने का एक अवसर देता है। हाँ, कि क्या कहा जा रहा है इस गीत में जो नायक और नायिका एक दूसरे से कह रहे हैं। तो यही इसलिए आज हमने इन गीतों को चुना, ताकि हम एक पल के लिए ठहरें, कुछ सुने, कुछ समझें, कुछ सोचें कि रिश्तों में संवाद कितना जरूरी है। और इसलिए इन गीतों के बीच आने वाले संवाद एक बहुत बड़ी सीख हमें दे जाते हैं कि रिश्तों में केवल प्यार होना काफी नहीं है, प्यार को शब्द देना भी बहुत जरूरी हो जाता है ना? बताइए किस फिल्म का गाना है और पर्दे पर कौन अभिनेता और कौन नायिका है। इस गीत में भी आपको संवाद सुनने को मिलेंगे, है ना? और बताइएगा कौन ये संवाद कह रहा है किसे?

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

जी, हमारे श्रोताओं ने कहा कि ये फिल्म आंधी का गीत है और इसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन आपस में संवाद कर रहे थे। बिल्कुल सही लिखा आपने। और हम आपको बता दें, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी, गीतकार जो गीतकार थे गुलजार साहब थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती की आवाज हमेशा दिल को छू जाती है, आज के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डायलॉग वाले गीत से सजी हुई सुरीला सफर की संगीतमयी सफर में हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि संवाद जरूरी नहीं मुंह से बोले, मगर आपको किसी से कुछ कहना है तो सबसे पहले आंखें चेहरे के भाव बोलने से ज्यादा बहुत कुछ कह देते हैं। और आपने सही कहा, रिश्तों को जीवित रखने के लिए संवाद जरूरी है। मुझे भी कुछ कहना है, पहले आप शायद ये गीत शामिल हो सकता है। वैसे हाँ, आपको बता दें हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जिनमें संवाद है, लेकिन हमारे कार्यक्रम का एक समय जो है निश्चित है, तो हमने उसी अर्थ में हमने जो गाने चुने हैं, आपके गानों से हमारे गाने कितना मेल खा रहे हैं ये आप देखिएगा। लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कई अन्य गानों का जिक्र भी किया है जिनमें संवाद हमें सुनने को मिलते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो फेसबुक खोलने से पहले अच्छा मुझे याद किया आपने और पोस्ट देखकर खुश हो गई, क्योंकि आज भगवान जी से शायद कुछ और मांगते वो भी मिल जाता। गीतों में जो बात होगी, तकरार होगी, वो तो होगी, पर आप जो कुछ बातें करेंगी, दो प्रश्न करेंगी, उनके बहुत सारे उत्तर भी देने होंगे। अरे तो आज आपने इतना हल्का क्यों मांगा, बहुत कुछ मांगना था आपको, है ना। ये कार्यक्रम तो रोज होता है और इस कार्यक्रम के जरिए तो आप हर वक्त हर किसी उद्घोषक से किसी न किसी रूप में जुड़े ही होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो गानों में थोड़ा सा अलग हमें सोच मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर क्या हो रहा है कि इन दिनों झूलों और सावन पर कार्यक्रम ज्यादा केंद्रित हमें सुनाई दे रहा है, आपने कुछ थोड़ा इसको बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से बिल्कुल साफ है कि आज के गीतों का केंद्र संवाद है, यानी ऐसे पुराने गीत जिनमें दो लोगों के बीच बातचीत, सवाल जवाब, मन की बात, शिकायत, प्यार या कोई अनकहा एहसास है। हमें कुछ गीत समझ आए, आपने भी कुछ गीतों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बीच में चल रही मीठी बातचीत है तो रूठना मनाना भी है इन गानों में, बल्कि प्यार है, गहरा करने का बहाना भी है। एक तरफ से शिकायत है, दूसरी तरफ मनोहर

है और इस तरह से जो गीत पिरोए गए हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि खूब लड़ लो झगड़ लो लेकिन बातचीत बंद नहीं करा करो क्योंकि बातचीत से ही समस्या का निदान होता है। एक श्रोता ने कहा है कि सफर में आप काफी समय बाद आई हैं। ऐसी बात तो नहीं है, हम तो सफर में आते ही रहते हैं और आप हर दिन एक ना एक सफर तो तय करती हैं ना अपनी जिंदगी का। एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी प्रकार के हल निकल सकते हैं, मनमुटाव दूर हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रिश्तों को संवाद से जोड़कर जरूर रखिए। और एक श्रोता ने कहा है कि हमारे प्रांत बिहार में लोग संवाद करते हैं जिसे हम बोलचाल की भाषा में बतरस या बतकुचन कहते हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है सुबह के दिनचर्या से, महंगाई से, बच्चों और घर की समस्याओं, शारीरिक तकलीफ से, उसके बाद पॉलिटिक्स पर बात चली जाती है और वहीं संवाद फिर बदकुचन पर चली जाती है। इसलिए अगर किसी को बुरा लग गया तो वो मुंह बनाकर उठकर

0: नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया।

लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया।

0: नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया से।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ये स्वर थी लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की। फिल्म का नाम था सिलसिला। दोस्तों, कहते हैं कि कितने ही रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोगों के बीच प्रेम नहीं था। ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। प्रेम तो बहुत था लेकिन वहाँ संवाद नहीं था। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन बात नहीं करते थे, मन में शिकायतें थी लेकिन कहते नहीं थे, दर्द था लेकिन बताते नहीं थे, समझाते भी नहीं थे। इसलिए पुराने फिल्मी गीतों में जब अचानक किसी कलाकार की आवाज़ आती थी तो दर्शक केवल गीत नहीं सुनता था बल्कि उस किरदार के साथ उस पल को जीने लगता है ना। कई बार फिल्मों में होता है, आज भी होता है, जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो उस किरदार को जीने लग जाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो हमें लगता है कि ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि ये तो मेरी भी कहानी हो सकती है। और अक्सर हम उस कहानी को अपनी कहानी समझकर या अपनी जिंदगी से जोड़कर सुनना पसंद भी करते हैं। क्यों, आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा में बहुत सारे गीतकारों ने ऐसे बहुत सारे गीत लिखे हैं जिनको अभिनेता अभिनेत्री द्वारा संवाद करते करते गाया गया। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संवाद रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। संवाद होना बहुत जरूरी होता है।

0: है आज के गाने भी उतने ही अच्छे लगेंगे। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा, एक श्रोता ने, जब हमने आपसे पूछा था संवाद के बारे में सवाल, आप लिखते हैं कि मुझे अपने पापा से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि आजकल वो थोड़ा भूलने लगे हैं, तो जब हम उनसे संवाद करते हैं उन्हें याद आ जाता है, नाम याद आने लगते हैं, पुरानी बातें वो याद करने लगते हैं, फिर वो किस्से सुनाने लगते हैं और डॉक्टर ने भी उनसे बहुत बात करने को कहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों की बारात फिल्म का गीत आपने तारिक और जिनत अमान के बीच का संवाद था वो सुनवाया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, जब बात संवाद पर आ ही गई है तो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात सिलसिला फिल्म का गाना सुनवा दीजिए। अरे हमने तो आपको सुनवा भी दिया है। कहाँ हैं आप, सुन लिया ना आपने, जवाब दीजिएगा हमें हाँ या ना में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं अकेले ही ये प्रोग्राम सुन रही हूँ, वो भी आपकी संवाद अदायगी के साथ। मैं तो बचपन से रेडियो सुन रही हूँ जब भी समय मिलता है, मगर कुछ समय से मेरी बेटी भी सुनने लगी है, उसे आपकी आवाज़ पसंद है, मुझे भी, तो कहती है जब आप आए तो मुझे बताना, आज वो कॉलेज नहीं गई और मैं उसे बताऊंगी तो उसे गुस्सा आएगा। अरे इतना प्यार, इतना स्नेह है ना सर माथे पर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद एक अद्भुत शैली है, अपने आप से बात करना भी एक प्रकार का संवाद ही तो है। मैं जब 20 साल का था तब भीतर एक बात मेरे मन में आई, उद्भव हुई कि गुलाब जामुन में सुख नहीं है, फिर अंदर ही संवाद हुआ कि सुख सबको मिल रहा है तो किधर से आ रहा है। इस तरह साबित करने का मौका कुछ महीने बाद संवाद करने का मिला। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हद से ज्यादा संवाद भी रिश्ते बिगाड़ देते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद सदा मधुर और मीठे हों तब तो अच्छे हैं, वरना चुप ही सही है। वैसे जहां प्रेम और दिल मिले होते हैं वहां अधिक संवाद की आवश्यकता होती भी नहीं है, वहां मौन में भी दिल की बातें दिल से हो ही जाती हैं। एक श्रोता ने कहा, संवाद हमेशा प्यार से होना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बड़ों का सम्मान, बच्चों से प्यार। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं मेरे मैरिज से पहले एक बार मैं और मेरी होने वाली वाइफ घूमने गए थे। एक गार्डन में बैठकर मैंने मेरे और मेरे परिवार के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया। मुझे अचानक ख्याल आया कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मैंने कहा, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? तो उन्होंने बताया कि आप ही बोले जा रहे हो, मुझे तो बोलने का आपने मौका दिया ही नहीं, तो क्या बोलूं। फिर हम दोनों बहुत हंसे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो जिंदगी में संवाद बहुत है, संवाद वही होना चाहिए जिसमें सुगंध और प्यार हो, तभी मजा आता है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं संवाद गीतों की एक अलग से लिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें अभी तक लगभग 30 गीतों के नाम शामिल हो चुके हैं, क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में हम दर्शन करने गए हैं धर्म पत्नी के साथ, और वहां से आपके सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं, और आप पवित्र गुफा से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, बाबा अमरनाथ की सभी को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शिव हरि का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाजें, फिल्म का नाम चांदनी।
1: चांदनी

जी तो सुरीला सफर कार्यक्रम में बस आज यही तक। इतना ही कहेंगे कि सहमति असहमति के बीच भी हमें हर इंसान से, हर व्यक्ति से संवाद करना बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बस इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सर फिल्म का ये गीत है

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में कुमार शानू का गाया फिल्म सर का ये गीत था। चांदनी फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे ने गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, शिवहरी का संगीत है।

0: सुरेश वाडकर के गायब फिल्म चांदनी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि भोपाल से विदिशा के बीच फोर लेन सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस परियोजना पर 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे। वहीं सीहोर के इछावर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर के लिए 20 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क आवंटित करने का फैसला लिया गया है। अन्य फैसलों को लेकर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि
2: देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में विशेष रूप से इस बात को बताया कि जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस का संदेश का सीधा प्रसारण होगा। दो तरह से होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके संदेश का वाचन होता ही है, साथ ही जिला स्तर पर उस जिले की उपलब्धियां जो है, पिछले दिनों हुए विकास के काम है, वो भी जिले में लोगों को पता चले किस तरह से हमारी सरकार आगे बढ़ी है, सोशल वेलफेयर की स्कीम से किस तरह सरकार आगे गई है, उस सब के भी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
1: कैबिनेट ने रानी दुर्गावती पुरस्कार और रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का फैसला भी लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज लोकभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से सौजन्य भेंट की। डॉ. यादव ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कामों की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर भी राज्यपाल से चर्चा की। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर जानकारी का आदान प्रदान हुआ। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा को बताया कि देश में अब तक 10 करोड़ 33 लाख से ज्यादा किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। सरकार के मुताबिक किसान आईडी से किसानों को कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और ऋण वितरण जैसी योजनाओं को जोड़ने में मदद मिल रही है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 अगस्त को अहमदाबाद में प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में आयोजित मेगा निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री उद्योग जगत को मध्य प्रदेश की निवेश नीतियों और सुविधाओं की जानकारी देंगे। इस दौरान कई बड़े औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी होंगी। मुख्यमंत्री गुजरात के उद्योग जगत को आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करेंगे। प्रदेश के 3 शासकीय महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय शुरू किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने की को मंजूरी दी है। ये सुविधा विदिशा जिले के बासौदा, शाजापुर जिले के शुजालपुर और आगरमालवा जिले के सोयत कलां के शासकीय महाविद्यालयों में मिलेगी। इससे इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने नजदीकी कॉलेज में संस्कृत पढ़ने का अवसर मिलेगा। बात मौसम की, प्रदेश में मानसून टर्फ

0: प्रेशर एरिया के असर से तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के बाकी कई जिलों में भी अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में करीब 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि कई जिलों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने हैं। बात करेंगे खेल की। भोपाल में आज से राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। अपर लेक स्थित बोट क्लब के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित यह प्रतियोगिता 16 अगस्त तक चलेगी। प्रतियोगिता में 12 राज्यों और अलग अलग क्लबों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ी सेलिंग में अपने रफ्तार, संतुलन और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई अटेंडेंस के बाद अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आगरमालवा जिले के ग्रामीण अंचलों में 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी और शिवपुरी जिले में 2 दिन से लगातार बारिश का क्रम बना हुआ है। जिले के विभिन्न इलाकों में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
3: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार, सदन चलना चाहिए।
2: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
4: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
2: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद

0: परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
1: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
2: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों

0: का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और अलिनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
1: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21

0: झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर व मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम उड़न खटोला, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहेब।

0: लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था उड़न खटोला।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान,
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र की रचना सुनिए। गायिका है आशा भोंसले और फिल्म का नाम है जागते रहूं।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सुंदरा सोनिए सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: और लीजिए अब सुनिए फिल्म वचन का गीत आवाज आशा भोंसले की। इस गीत को संगीत दिया है रवि ने।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा हुजूर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है यास्मीन, आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार जानिसार अख्तर और संगीतकार सी रामचंद्र।

0: और आइए अब सुनते हैं फिल्म बारिश का दो गाना, आवाजें आशा भोसले और चितलकर की। शब्द राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन चितलकर यानी सी रामचंद्र की है।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, हाँ बोलो।

0: हाय हाय हाय हाय रे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और लीजिए अब सुनिए A.R. कुरैशी का संगीत, शिवान रिजवी का गीत, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम आलम आरा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म न्यू दिल्ली का गीत, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: से ही नजर आए।
1: अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्यों क्या कैसे कहाँ
2: बस ऐसे ही जैसे
1: अब ये जो शब्द है आप चौंक गई ना अचानक।
2: बिल्कुल एकदम चौंक।
1: लेकिन आपने पूछा मन में सवाल आया होगा कि अचानक ये क्यों पूछ रही है।
2: बिल्कुल इसीलिए बोल रही है ऐसा वैसा जैसा कह के।
1: तो बस होता क्या है कि ये जो सवाल है ना जो मन में सवाल पैदा होते हैं यही जिज्ञासा पैदा करते हैं। अगर हमारे मन में सवाल खत्म हो जाए तो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। जहां से सृजन की यात्रा शुरू होती है तो अगर आपके मन में कौतूहल हो रहा है जिज्ञासा हो रही है तो समझ लीजिए कि आप कहीं जानकारियों का खजाना अपने भीतर पैदा करेंगे। बिल्कुल।
2: और आपका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा ममता जी क्योंकि हमारे अंदर एकदम से लगा कि क्या पूछ लिया। तो थोड़ा मजा भी आता है जब ऐसी दो सखियां मिलकर ऐसी मस्ती करती है।
1: बिल्कुल। अच्छा और ये कहा जाता है ना जिज्ञासा जितनी ज्यादा होगी जितनी गहरी होगी सृजन की यात्रा भी उतनी ज्यादा होगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आज का हमारा विषय भी यही है सृजन का स्रोत और जिज्ञासा।
1: बिल्कुल।
2: और सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे महिला उद्यमी ऋचा कर जीवामे की संस्थापक है इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में घोड़े बेचकर सोना तो इसके बारे में बात किया जाएगा। और हल्की फुल्की बातें में चले मेला देखने यानी कि हमारे जो साथी हैं वो घोड़े बेचकर सोना के बारे में अपने अपने अनुभव लिखें और कुछ बातें भी लिखें और मेला देखने कब गए क्या खरीदा क्या देखा वहां की कुछ ऐसी किस्से याद हो तो वो छोटी छोटी सी उसमें लिखे चार चार लाइनों में पांच पांच लाइनों में तो मजा आएगा।
1: वैसे तो विषय में ही शब्द छुपे पड़े हैं घोड़े बेचकर सोना घोड़ा है। जब मेला देखने जाते थे तो हाथी घोड़े मिट्टी के हाथी घोड़े होते थे ना और वो ढेर सारे खरीद के ले आते थे और उसमें शक्कर की मिठाइयां जो होती थी उसमें हाथी घोड़ा और वो अलग अलग आकृतियां बनी होती थी तो उसमें चुना जाता था कि हाथी लेंगे या घोड़ा लेंगे या हंस और चिड़िया बनी रहती थी।
2: बिल्कुल।
1: और वो दिवाली पर खासतौर से दिवाली प्रसाद के रूप
2: खिलौने मिट्टी के
1: चढ़ाए जाते
2: थे खिलौने आते थे
1: और मेले में वो मिट्टी के खिलौने की खोज जरूर होती थी जब हम छोटे थे कि वो चक्री होती थी और जात छोटे छोटे चिमटे बेलन
2: और रसोई का जो छोटे छोटे सामान होता था वो लकड़ी के भी बिकते थे और
1: मिट्टी के भी
2: मिट्टी के भी बिकते थे
1: और बाद में चीनी मिट्टी के
2: और बड़े सुंदर रंग भी होते थे गुलाबी सफेद पे गुलाबी हरा ऐसे लाइन करके बड़ा।
1: आप कौन सा रंग खरीदती थी
2: जो वहाँ पे मिल जाते थे गुलाबी हरा इसलिए क्योंकि वही खरीदी
1: जाहिर सी बात है जो रंग बोला है वही पसंदीदा रंग होता है उसी को हम जाके चुनते थे और कई बार रंग उस रंग का न मिलने के कारण मेले में भटकते भी थे और ऐसा भी होता था कि मेले में जा रहे हैं तो सिर्फ खिलौने ही नहीं मिलेंगे हर चीज मिल जाती थी।
2: बिल्कुल।
1: अब तो जो मेला है वो मोबाइल पर और स्क्रीन पर होता है
2: लेकिन उन मेलों की यादें बहुत अच्छी हैं ताजी हो जाएंगी सबकी आज जब बातें करेंगे है ना।
1: और मेले में और भी तो कुछ होता था वो तो हिंडोला जो झूला होता था
2: तरह तरह के झूले होते थे तो उसका भी एक अलग मजा आता था
1: और मेले में एक डर भी होता था अपने बड़ों का हाथ छूट जाने का माता पिता
2: जाने का फिर जब अनाउंसमेंट होता था तो फिर ढूंढाई मचती थी कि कौन का ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं लेकिन फिर भी मेला जाना तो
1: एक मिनट के लिए भी अगर हाथ छूट जाए तो बस डर का ज्वार मन में आ जाता था कि अरे माँ कहाँ गई अभी हम कहीं खो ना जाए गुम ना जाए भीड़ में। तो मेले का एक अलग अनुभव होता है सबके भीतर एक मेला होता है उन मेले का अनुभव होता है तो उन अनुभवों को हमारे श्रोता साझा करें और कोई एक छोटी सी घटना याद हो तो लिखें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरा है मुहावरे बहुत सारे हैं दिन भर चले अढ़ाई कोस या फिर ऐसे बहुत सारे मुहावरे
2: जो नावे आंगन टेढ़ा बहुत सारे हैं तो
1: और बड़े बुजुर्ग हमें याद है कि दादी नानी मुहावरों में लोकोक्तियों में बात किया करते थे लेकिन अब ये समय जैसे खत्म हो रहा है तो इन्हें जिंदा रखने के लिए

0: मंजरी जी, देखिए अपने पास विविध भारती की फेसबुक पेज पर श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं और एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि मैं बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली सुन रही हूँ। क्या बात है, अभी यहाँ सुबह का टाइम 11:33 है, हल्की सी ठंड है, दिन में थोड़ा गर्म हो जाएगा।
1: क्या बात है, आप इतनी दूर से सुन रही, तो मेरा हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार
0: और शुक्रिया
1: शुक्रिया
0: कि सुन रही है। और बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर तक विविध भारती की आवाज गूंजती है।
1: सही बात है,
0: और जिज्ञासाएं भी बहुत सारी पैदा होती हैं जब हम कहीं दूर होते हैं, तो और जिज्ञासा का घर होता है।
1: जैसे और जिज्ञासा में उन्होंने देखिए, हम लोग सोच ही सकते थे कि बर्लिन में क्या क्या मौसम है, कैसा मौसम है, तो उन्होंने बता ही दिया, तो हमारी जिज्ञासा जो थी उठी थी वो शांत हो गई।
0: बिल्कुल सही बात है। और अब तो जिज्ञासा शांत करने का बहुत बड़ा अपने पास औजार है, वो है गूगल मास्टर। जैसे मन में कोई कौतूहल होता है, तुरंत गूगल पर जाकर लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक समय था जब आपके भीतर कोई जिज्ञासा है तो उसको शांत करने के लिए बड़ों की शरण में जाना पड़ता था, टीचर्स की शरण में जाना पड़ता था।
1: और साथ साथ हम लोग किताबों में भी पढ़ा करते थे, ढूंढ के पढ़ते थे कि इसमें क्या है, किसके बारे में क्या लिखा गया है, तो किताबों को पढ़ने का एक अलग ही
0: और किताबें पलटते हुए हम जब एक दो पन्ने पलटते तो उसमें और भी चार जानकारियां मिल जाती थी।
1: बिल्कुल। और जब हम अपने आसपास की चीजों और वस्तुओं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों और लोगों को देखते हैं ना ममता जी, तो कभी कभी लगता है कि उनका आकार कैसा है, रंग रूप, बोली भाषा और छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं कि ये क्या है, कैसी है, कैसे बनी है, कब बनी है, किसने बनाया और कहाँ से आई, क्यों, जैसे सवाल मन में उठते हैं तब जिज्ञासा का जन्म होता है। जिज्ञासा होने से ही सृजन के स्रोत का जन्म होता है, जैसे आपने शुरू में पूछा ही था कि क्यों कब, तो वही चीज है।
0: और ये जो सृजन का जन्म होता है तो जिज्ञासा से, तो इस जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है, खास तौर से बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। और एक जिज्ञासा मेरे मन में भी उठी है कि इस समय 3:15 होने को है, तो क्या किया जाए,
1: अंतराल लिया जाए। देते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बात जिज्ञासा की चल रही थी। मंजरी जी, जब जिज्ञासा की बात हम कहते हैं तो छोटे बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और कई बार माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते उन्हें शांत नहीं करते बल्कि इग्नोर कर देते हैं और टाल देते हैं, कई बार डांट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं की गई तो फिर आगे चलकर वो पूछना ही बंद कर देंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे बच्चे पूछते भी ना कि मम्मी देखिए आसमान में चांद क्यों निकला है, रात में क्यों निकलता है, तारी क्यों

0: हिल मिला रहे हैं, इस तरह के बच्चे बातें पूछते हैं, और सूरज इतना गर्म क्यों होता है? तो अगर आप उन बच्चों को सही से जवाब देंगे तो वो उनको बहुत समय तक याद रहेंगे, और उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो भी उस समय उनको उत्तर जब मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहना चाहिए जिज्ञासा हर किसी में होनी चाहिए किसी भी विषय को जानने की, और अगर वो प्रश्न करते हैं किसी सामने वाले से तो उसको भी सही जवाब देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सृजन का स्रोत जिज्ञासा, ये सत्य है कि कुछ नया रचने जानने या आविष्कार करने की प्रेरणा हमेशा मन की उत्कंठा या सवाल पूछने की आदत से ही पैदा होती है। जब तक मन में ये क्या है, ये काम कैसे करता है जैसे भाव नहीं उठते, तब तक किसी नए विचार या कला का जन्म संभव नहीं है। जिज्ञासा और सृजन का संबंध मन में उठने वाला एक छोटा सा प्रश्न नए रास्ते खोलता है। जिज्ञासा इंसान को उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करती है।
0: बिल्कुल, और ममता जी इसी तरह एक साथी हमारे लिखते हैं कि जिज्ञासा ही सृजन की पहली सीढ़ी है। जब मन में किसी बात को जानने और कुछ नया खोजने की चाह जागती है तभी नए विचार जन्म लेते हैं। जब मन में सवाल आते हैं तो दिमाग जवाब ढूंढने लगता है, यहीं से सृजन की शुरुआत होती है। कुछ नया रचा जाता है, फिर वह कविता का रूप हो चाहे विज्ञान के रूप में आता है। जिज्ञासा ही नई कल्पनाओं को जन्म देता है और वही साकार रूप लेकर हमारे सामने आती है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि जिज्ञासा जन्मजात गुण है, हर इंसान के भीतर होता है। यह न केवल ज्ञान के बंद दरवाजों को खोलने वाली पहली चाबी है, बल्कि जीवन को रोमांच, नए अनुभवों और अंतहीन संभावनाओं से भरने का एकमात्र जरिया भी है। और आगे इन्होंने लिखा है कि विविध भारती से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिज्ञासा इसीलिए ही हमें बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, इतनी बढ़िया से उन्होंने तारीफ करी है। और जिज्ञासा सृजन का मूल स्रोत है, लिखते हमारे साथी। और सुरीली धड़कन विविध भारती पर भी जिज्ञासा से भरी सृजन रूपी गंगा बहती रहती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे कुछ ना कुछ नया जानने की, खोजने की और खोज के बाद उसका सृजन करने की इच्छा जागती रहती। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं तभी विज्ञान, कला, साहित्य और आविष्कारों की शुरुआत होती है।
1: अभी गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम बातें करते हैं शिक्षा की, सेहत की, खेलकूद की और महिला उद्यमी की, और कई बार रसोई की भी बातें करते हैं। गांव से शहर तक, शहर से महानगर तक, महानगर से विदेशों तक भी हमारी आवाज गूंजती है।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें होती है ना, तो जो हमारी महिलाएं जो निराशा के उसमें चली जाती है, तो वो ये सुन करके बहुत उत्साहित होती है कि उन्हें हमारी बातों से उन्हें कुछ ना कुछ नया करने की एक सीख मिली है,
0: हौसला अफजाई भी करती है सखी सहेली, है ना। तो अब हम अगले विषय पर पहुंचते हैं और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाते हैं कि देखते हैं कि हमारी सखियों ने और हमारे सखाओं ने क्या लिखा है, क्योंकि सखियों के साथ साथ सखा भी हमारे ये कार्यक्रम सुनते हैं,
1: बहुत रोचक तरीके से सुनते हैं हमारे सखा
0: जी। तो हमारे एक सखा की टिप्पणी आई है जिन्होंने लिखा है कि भाई सखी सहेली कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है और मेले के बारे में अपने जज्बात साझा किए हैं। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि मेले को आज भी मनोरंजन का विशुद्ध साधन माना जाता है। बचपन में पापा की उंगली थामकर न जाने कितने मेले देखे और जरा जरा सी चीजें खरीद कर जो मन को तसल्ली मिलती थी। मेले में देहाती फनकारों के हुनर काबिलियत की पेशकश देखना एक अलग ही आनंद देता था। पहली बार कठपुतली का नृत्य मैंने मेले में ही देखा था। मनोरंजन का ये खेल तमाशा दुनिया के किसी भी मेले में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बचपन छूटने के साथ ही मेला देखने जाने का उत्साह भी पीछे छूट गया, मगर मेरे शहर में पुराने संग्रहालय की चीजों का और पुस्तक मेला समय समय पर लगता रहता है।
1: बिल्कुल, मेले की बात ही कुछ और होती है क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीजें होती हैं, खाने पीने से लेकर के घर गृहस्थी के सामान हैं और बहुत सारी हस्तकला भी जो होती है वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो जिसको जैसी जरूरत होती है वो वहाँ से उसी हिसाब से खरीद के लाता है, चाहे वो रसोई से जुड़ा हुआ सामान और कपड़े भी बहुत होते हैं, चटाइयाँ, दरी हैं, तरह तरह के कपड़े वो भी वहाँ बने बनाए मिलते हैं मेलों में। तो सब लोग बहुत शौक से मेला देखते हैं और खरीदते हैं
0: और मेले में जगहों के बारे भी पूछते हैं। अब हमारे कुछ श्रोता जिज्ञासा की ओर फिर पहुंच गए हैं जो हमने सब्जेक्ट दिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा 7 साल का पोता है, मुझसे बड़े सवाल पूछते रहता है। मुझे पता होता है तो बता देती हूँ, पता नहीं होता तो तुरंत गूगल में सर्च करके बताती हूँ। इससे मेरे पोते की जिज्ञासा तो शांत हो जाती है लेकिन मेरा भी सामान्य ज्ञान बढ़ता रहता है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह एक लिखते हैं कि जिज्ञासा हर प्रकार के सृजन, आविष्कार और ज्ञान की मूल आंतरिक प्रेरणा है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं, तभी किसी नए विचार, विज्ञान या कला का मार्ग खुलता है।
0: और अब एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, इसमें कितनी सारी बातें होती हैं सखी सहेली में, शिक्षा की बातें, खेल की बातें और महिला उद्यमी की बातें करते हैं। अब देखिए ना, आज हमने विषय मेला भी दिया है, तो मेले की कितनी सारी टिप्पणियां श्रोताओं की आई हैं। हमारे कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि हम मेले में जाते थे, गुम हो जाते थे। कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि मेले का इंतजार रहता था साल भर, और गांव में जब मेला लगता था तो बाकायदा ऐलान किया जाता था कि मेला लगने वाला है, तो वहां से खिलौने खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, किताबें, और अब तो किताबों का भी मेला लगता है।
1: और मेले में ममता जी, वहां पर गुड़ के सेव हैं, चक्की है, लड्डू है, लैया के लड्डू, खील के लड्डू, ये सब भी बहुत बिका करते थे। और आइसक्रीम खाने का चाट के ठेले लगते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता था। और मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, श्रृंगार के कितने सारे सामान होते थे, चूड़ी बिंदी। और मुझे याद है कि वो जो बड़े बड़े रिबन हुआ करते थे, वो उस समय भी खरीद के लाते थे।
0: और एक चीज की हिंडोला होता था, और बड़े वाले हिंडोले पर बैठने पर डर बहुत लगता था।
1: जी
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मैं सिर्फ एक

0: बार ही मेला गई थी मेरे दोस्तों के साथ करीब 4 साल पहले दशहरे के मेले में। वहां से मैंने एक लकड़ी की हेयर स्टिक ली थी जो अभी भी मेरे पास है, और वहां मैंने एक छोटे बच्चों का टी शर्ट देखा था जिसके लिए मैंने बहुत जिद की थी पर मुझे मेरे दोस्तों ने नहीं लेने दिया।
1: और देखिए हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेले की बात कर अपनी बचपन की बहुत यादें सामने से गुजरी हुई दिखाई दी। हमारे जमाने में मेला देखने जाना ऐसा होता था कि कहीं कोई दूसरी ही दुनिया में घूमने जा रहा है। मैं अपने चाचा जी के पास रहती थी तो वहां मेला लगता था मेरे घर के सामने ही, रोज ही देखती थी। और दशहरा का मेला तो देखने हम सब भाई बहन चाचा जी के साथ देखने जाते थे। वाकई में मेले से बहुत सारी यादें जुड़ी है। बाइस्कोप होता था, वो घिसी हुई आइसक्रीम होती थी है ना, जो बर्फ का गोला जिसे
0: बर्फ का गोला, और उसमें रंगीन मांगते थे कि ऑरेंज नारंगी कलर का दो, और कोई काले काला खट्टा काला वाला लेते थे और वो पूरे ओठ रंग जाते थे तो उसमें फिर उस समय तो मोबाइल था नहीं कि तस्वीर खींची जाए, पर किसी गांव में किसी के पास कैमरा हुआ करता था बड़ा वाला, तो कैमरा ले आके उसके पास जाते थे कि उस कैमरे से फोटो ले ली जाए, फिर वो फोटो प्रिंट करवा के मिलती थी बहुत मिन्नत करने पर।
1: बिल्कुल, कई कई मेलों में होता भी था ममता जी, पर्दे लगा करके वो चांद तारा है और क्या कहते हैं मोटरसाइकिल रखी है उस पर फोटो खींचने के लिए सुविधा बनी रहती थी। तो हम लोग ने भी बहुत इस तरह से कि ऐसे चांद है उसके ऊपर बैठ के फोटो खींचा रहे जैसे लग रहा हम आसमान की सैर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं कि अरे वाह हम तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इस तरह की फोटो जब देखते हैं वापस एल्बम में तो मेले की यादें ताजा हो जाती है। और मेले में जो एक आता था गुलाबी कलर का पैकेट में बंद होता था बुढ़िया के बाल जिसे कहते हैं, वो भी हम लोग खरीदते थे क्योंकि उससे ओठ और जवान लाल हो जाती थी तो बड़ा मजा आता था। तो मेले में कहना चाहिए कि सब चीजें, और वहां पे डांस वगैरह भी होते थे पशुओं के, तोता को दिखाया जा रहा चढ़ रहा उतर रहा है पर्ची निकाल रहा है,
0: कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता था वो बहुत आनंद आता था, और जो लोक नृत्य दिखाए जाते थे उसकी तो छटा लगी होती थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया और मोबाइल ने हम लोगों को कुछ इस कदर मोह पाश में बांधा है कि देर रात तक हम अपने सुख चैन और आंखों को मोबाइल के हवाले कर देते हैं, फिर लेट नाइट घोड़े बेचकर ऐसे सोते हैं कि सीधे दोपहर ही जागते हैं, और मोबाइल की लत ने हमें घूमना फिरना मेलों ठेलों का मोह भंग कर दिया है। दशहरा मेला हो चाहे नवरात्रि का मेला हो, व्यापार मेला हो, कोई सांस्कृतिक मेला, बच्चों को कहो कि चलो भाई सब चलो, कुछ बाहर की रौनक देख कर आते हैं। इस पर बच्चे कहते हैं भला भीड़ भाड़ में धक्के खाने कौन बाहर जाएगा, हम घर पर ही रहकर ये सब कुछ मोबाइल के जरिए रील में देख लेंगे। मगर मोबाइल और सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग के चलते गांव देहातों में मेलों का क्रेज आज भी बरकरार है। मेले हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल है, और इसे जीवित रखने के लिए समय समय पर मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए।
1: जी, और एक लिखते हैं ममता जी कि मेले तो बहुत गए हैं, बचपन में पानी वाली बॉल अक्सर लाते थे और बहन के लिए मिट्टी के घंटी और चूल्हा हांडी तवा बेलन चकला वगैरह लाते थे, बहुत सुंदर सुंदर होते थे ये डिजाइन। और एक लिखते हैं पहले मेले मंदिर के चौगान में लगते थे जो दर्शनार्थी दर्शन करते और कुछ आनंद लुटाते थे, अब मेले बड़े शहर में लगने लगे हैं, गांव में बंद हो गए हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत हमने मेले के बारे में लिखा है कि मेला देखने आज मैं जाती हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। जब मैं बचपन में मेला देखने जाती थी तो मुझे खिलौने का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता था, मेला देखेंगे ये खिलौना मिलेगा, वो खिलौना खरीदेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, और इस चक्कर में मैं तो जाती खिलौने देखने और खाने। कितनी बार मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता कि ये बहुत ज़्यादा खिलौने की जिद कर रही है, और वहीं पर मेले में इस बात को लेकर मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता। मेरे खिलौने की जिद को लेकर ये मेरा बचपन का सबसे ज्यादा अनुभव रहा है मेला देखने का। वैसे मेरा मेला देखने का मजा अलग ही होता है, वहां जाकर खिलौने खरीदना, अब चूड़ियां खरीदना, खाना बहुत ज्यादा मजा आता है। अब तो मेले में सब कुछ एक साथ मिल जाता है, मतलब खाने के अलग अलग स्टॉल भी होते हैं और चीजें तो अभी मिलती हैं, अभी भी मेले लगते हैं। अभी मुंबई जैसे महानगर में भी मेला लगता है जहां पर पूरे देश की लोग आते हैं और चीजें मिलती हैं, वहां पर बहुत सारी लोक संस्कृति की चीजें होती हैं, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के बर्तन और तरह तरह के अचार भी मेले में मिलते हैं।
1: अचार है, चूरन है, चिप्स, पापड़, कचरी, ये सब भी बहुत मिलता है। और जो बहुत सारी चीजें बर्तने कटर वगैरह जैसे आ गए हैं मार्केट में, तो वो सब भी मिलते हैं। और तरह तरह की जैसे आपने चूड़ियां,
0: लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं है। अब जो मेले में भीड़ होती

0: ये वो बड़ों की भीड़ होती है ज्यादातर, उम्र दराज लोगों की, बच्चों की भीड़ नहीं होती है।
1: बच्चों की भीड़ तो उन मेलों में हुआ करती थी जहाँ झूले वगैरह होते,
0: क्योंकि अब जो हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि मोबाइल में ही सब कुछ है, तो सब बच्चों को अगर कहा जाए कि चलो घूम के आते हैं, दशहरे का मेला देख आते हैं, दुर्गा पूजा देख आते हैं, तो बच्चों की यही बात होती है कि इतनी देर हम पढ़ाई कर लेंगे, और पढ़ाई तो क्या, जब माता पिता घर में नहीं रहते तो पढ़ाई के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट स्क्रीन के सामने भी होता है।
1: और हमारे साथी एक लिखते हैं ममता जी इसी पर कि वैसे तो मैं शुरू से शहर में ही रही हूँ, तो दशहरे में जो मूर्ति बिठाई जाती थी वही मेले जैसा भी लगता था, हम लोग भी वहीं जाते थे। दशहरा के चार दिन यानी सप्तमी से दशमी तक मम्मी घूमने जाने से 20 रुपए देती थी, उससे ही हम लोग झूला भी झूलते थे, चाट वगैरह भी खाते थे और कुछ खरीद भी लेते थे। अभी भी डिज्नीलैंड में जाती हूँ तो मुझे हर एक माल 10 रुपए या 20 रुपए वाला सामान खरीदने में ज्यादा मजा आता है, वहां मैं बड़े सामान कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। और एक लिखते हैं कि मेला हमेशा गर्मी की छुट्टियों में ही लगता है, मैं मेरे दोनों छोटे नातियों को लेकर मेले गई, बड़े बच्चे तो बड़े झूलों में बैठे थे, लेकिन छोटे झूलों में दोनों नातनियों ने को लेकर मैं खड़ी थी, अचानक से धूल भरी आंधी चालू हुई, लगभग सभी झूले रोक दिए गए, शॉर्ट सर्किट भी होने लगा, जल्दी जल्दी सब बाहर निकलने लगे। उस समय बहुत घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि दो छोटे मेरे पास थे और बाकी सारा दूसरा ग्रुप अलग था। फिर कुछ देर सब में सब लोग मिल गए, बाहर आए तब तेज बारिश भी होने लगी थी। कई बार हो जाता है ऐसा, मौसम बदल जाता है अचानक तो पता नहीं चलता है कि हम तो मेला घूमने गए लेकिन इस तरह की समस्याएं हो जाती। तो ऐसे ही कहा जाता है कि अपने बच्चों का बहुत आप ध्यान रखें जब भी कहीं जाएं। तो
0: अब बातचीत को थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं विराम और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना। कई बार यादों का भी मेला होता है, तो यादों का मेला बहुत विशाल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। देखते हैं इस गाने में।

0: पुरुष ही ग्राहक को कपड़ा दिखाते हैं, तो इस समस्या का ध्यान, इस समस्या पर जो ध्यान था ना, वो इन ऋचा जो कर थी उनका गया, और उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने ऋचा कर जो थी वो जिवामे कंपनी की संस्थापक और पूर्व सीईओ है। जिवामे ब्रांड ऑनलाइन लग्जरी अंडरगारमेंट्स की कंपनी है, तो उनका इस पर ध्यान गया और उन्होंने इस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाया।
1: और ऋचा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ऋचा कर का जन्म हुआ था जुलाई 1980 को झारखंड के जमशेदपुर के एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार में। उनके पिता टाटा स्टील में काम करते थे और परिवार में आदर्श मूल्य संस्कार और सामाजिक रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती थी। ऐसे परिवार में ऋचा कर ने आगे चलकर अलग ही व्यवसाय को चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऋचा के सपने इन सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े थे
0: और उन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय ये किसी लड़की के लिए आसान नहीं था। साल 2007 में उन्होंने मुंबई के नरसिंह मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में से वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया और बाद में मास्टर्स डिग्री भी पूरी की। वे शुरू से कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋचा ने आईटी क्षेत्र में कदम रखा और रिटेल कंसल्टेंसी जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रिटेल और मार्केटिंग की गहरी समझ हासिल की जो उनके बिजनेस में काफी काम आई। और ऋचा जब एक संस्थान में काम कर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में आज भी महिलाएं इस तरह के वस्त्रों को लेने में असहज और संकोच महसूस करती हैं। दुकानों में चैन के विकल्प कम और प्राइवेसी भी नहीं लगती, साथ ही में सही साइज नहीं मिलना एक बड़ी आम समस्या हो गई थी। बस यहीं से इस कंपनी को आगे बढ़ाने का उनका ध्यान गया।
1: और 2011 में ऋचा ने अपने पति और सह संस्थापक विवेक कर के साथ मिलकर जिवामे की शुरुआत की। ये भारत का पहला ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड था जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्टाइलिश, आरामदायक और किफायती लॉन्जरी उपलब्ध कराना, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ।
0: जी, और शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपनी बचत और उधार लेकर इस सपने को हकीकत में बदला उन्होंने। और जो इसको इस खरीदारी को मतलब इस आंतरिक वस्तुओं की खरीदारी को उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन पर ला करके बहुत ही सुविधाजनक बनाया और बल्कि इसे एक सशक्त अनुभव में बदल दिया। ग्राहकों का भरोसा जीतने के साथ जिवामे जल्द ही भारत का विक्टोरिया सीक्रेट बन गया। साल 2014 में फॉर्च्यून इंडिया की अंडर 40 की लिस्ट में शामिल किया गया और कंपनी की ऊंची उड़ान को देखते हुए साल 2015 में उद्योगपतियों ने भी इसमें निवेश किया जिससे कंपनी की कीमत कई मिलियन डॉलर हो गई।
1: और जब किसी और कंपनी ने टेक ओवर किया तो ऋचा ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी शामिल है। आज जिवामे की वैल्यूएशन 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है और ये ब्रांड लाखों भारतीय महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और सहजता का प्रतीक बन गया है। ऋचा कर की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने वही सच होते हैं जिनका पीछा करने की हिम्मत हो। चाहे आप किसी छोटे शहर से हो, रूढ़िवादी परिवार से क्यों ना हो, या समाज आपको पीछे खींचे, अगर आपके पास जुनून है, मेहनत है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
0: जी,
1: अब इसके बाद एक गाना सुनते हैं।

0: कैसे भीगे भीगे प्यारे प्यारे हैं नज़ारे। बारिश के मौसम में नज़ारे का आनंद कुछ अलग ही होता है, और इस बारिश के मौसम में नींद भी खूब जम के आती है, और तेज बारिश हो रही हो तो ऐसे लगता है कि जम के सो जाया जाए, है ना,
1: घोड़े बेच कर सो जाए।
0: और आज हमने विषय भी दिया है अपने श्रोताओं को कि मुहावरों की जो दुनिया पहले होती थी बड़ी आबाद रहती थी, मुहावरों में बात करने का एक अलग ही जायका होता है, मिजाज होता है, लेकिन अब ये तरीका बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। लोग अगर मुहावरा बोलना भी चाहें तो सामने वाला समझता ही नहीं। आप आने वाली पीढ़ी के सामने मुहावरे का प्रयोग करके देखिए,
1: वो सिर्फ कोर्स में ही पढ़ के समझते बिल्कुल हैं। हम लोग तो अपने घर में दादी नानी जो थी, मम्मी वगैरह, ये सब हर बात में कहावते मुहावरे बोलती थी। कुछ नहीं काम आ रहा है तो कह रहे हैं नाचना आवे आंगन टेढ़ा।
0: बिल्कुल। अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घोड़े बेचकर सोने वाले मुहावरे से मुझे एक घटना याद आ गई। मेरी भतीजी की शादी थी, बुआ होने के नाते मेरे ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां थी। दो तीन दिन के भागदौड़ के बाद जब बारात की विदाई हो गई तो जहां जगह मिला वहां सो गई। इत्तेफाक से उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, उसे जन्मदिन सेलिब्रेट करना था, पर मैं तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने मुझे इस तरह से कभी सोते नहीं देखा था तो घबराकर रोने लगा। तब उसके पापा ने उसे समझाया और मुझे जगाया। फिर किसी तरह से केक कटवाकर हम सबको बाय बोलकर फिर से घोड़े बेचकर मैं तो सो गई।
1: क्या बात है, कितनी अच्छी सी यादें हैं।
0: वैसे ये घोड़े बेचकर नींद आजकल आ जाए तो ये अच्छी बात है, इससे बड़ा खुश नसीब कोई है नहीं।
1: बिल्कुल, जिसको गहरी नींद आती हो,
0: गहरी नींद और देर तक आती हो।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अब जो जमाना है, जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन और व्यस्तता और सबकी दोहरी तहरी जिम्मेदारियों ने नींद हनन कर ली है। और
1: जहां बगल में मोबाइल रखा रहता है, जरा सी मैसेज आई नहीं पट से देखने लग गए, तो ये चीज बहुत गड़बड़ हो गई नींद हमारी। तो हमारे साथी लिखते हैं, घोड़े बेचकर सोना हिंदी का बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुहावरा है, जिसे रोज मजाक की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत उठाने पर भी नींद से कोई नहीं उठता है तो कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहे थे। लोग बोलते हैं कि बेटी का ब्याह कर लिया, अब तो हमको घोड़े बेचकर सोना है। इसका मतलब निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना या सारी चिंताओं को छोड़कर बेफिक्र हो जाना। मुहावरे का अर्थ और प्रयोग ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह के तनाव या डर के बिना आराम से सोता है, बहुत लापरवाही होने पर भी इसका प्रयोग होता है। इस अर्थ में भी होता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर होकर सो रहा है। कई बार कहते हैं कि भाई तुम इतना सो रहे हो घोड़े बेचकर, क्या तुमने पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली है क्या, इस तरह से भी कहा जाता है। और ममता जी हमारे और साथी लिखते हैं कि घोड़े बेचकर मुहावरे का अर्थ निश्चिंत और बेफिक्री गहरी नींद लेना होता है। पुराने समय में घोड़े के व्यापारी को घोड़े की देखभाल के लिए रात भर जागना पड़ता था। जब घोड़ा बेचा जाता था तब निश्चिंत होकर चैन की नींद ले सकते थे। तो इस तरह की बातें हमारे साथियों ने लिखी हैं। और एक लिखते हैं, मुहावरे की दुनिया घोड़े बेचकर सोना, अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले वो घोड़े बेचकर ही सो रही थी, और इस मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत कर गहरी नींद में सोना। और ये मुहावरा हम सबके जीवन में लगभग, मैं कहूंगी कि रोज ही प्रयोग होता है।

0: और कवि का और कहते हैं कि हम घोड़े बेचकर रविवार के दिन सो जाते हैं, उस घोड़े के उसके कारण से हमारे रोज़मर्रा के कामों में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। ऐसा अनुभव मेरा तो कितनी बार रहा है, कितनी बार घोड़े बेचकर ऐसे सो गए कि मुझे सुबह उठकर काफ़ी भागीदारी मतलब दौड़ भाग लगानी पड़ी काम करने के लिए। और ये कहती हैं कि भाई भागा दौड़ी में दिन भी बीत जाता है इस तरह से।
1: दरअसल घोड़े बेचकर सोने का जो मुहावरा प्रचलित हुआ कि पहले के ज़माने में घोड़ा घर पे होता था, मतलब आंगन द्वार पर घोड़ा बंधा होता था और उसके पीछे बहुत सारी लागत लगती थी, क्योंकि जिसके द्वार पर घोड़ा होता था वो कहा जाता था बहुत समृद्ध इंसान है, और उसके पीछे जो खान पान होता था वो बहुत कुछ लगता था, लागत लगती थी, तो बेचने पर पैसे बहुत मिलते थे, वो इंसान समृद्ध हो जाता था। तो एक बार जब पैसे से समृद्ध हो इंसान को नींद अच्छी आए, तो ये मुहावरा उस समय बना था। और इस मुहावरे का प्रयोग कई बार नकारात्मक भी हो जाता है, इम्तिहान के दिन जब होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है, तो पढ़ते पढ़ते कई बार रात हो जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं और पता चला कि बस एक झपकी ले लेते हैं और उठ के तैयार होके परीक्षा देने जाना है, तो पता चला कि आप सोते ही रह गए। वहां घोड़ा बेचकर सोने वाली बात तो है नहीं, लेकिन नींद ऐसी आई कि आपकी परीक्षा को देर हो गई। कई घटनाएं ऐसी भी घटित हुई कि लोग परीक्षा के पहले सोते ही रह गए और या नींद तब खुली जब परीक्षा का टाइम हो गया, तो भागते भागते आप परीक्षा हॉल तक पहुंच रहे हैं।
0: कई बार ऐसी चीजें हो भी जाती है,
1: ऐसी नींद भी होती है
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि कुछ लोग तो सचमुच नींद में ऐसे सोते हैं कि लगता है अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। एक परिवार के साथ सुबह के टाइम में हम लोग चले गए और मंदिर चलेगा और घर में बहू और उसकी बच्ची थी। मंदिर से लौटते हमें 10 बज गया, जब दरवाजा खुलवाया गया तो बहू को सुना ही नहीं दे रहा था, आधा मोहल्ले के लोग जुट गए और बहू दरवाजा खोल ही नहीं रही थी, बड़ा डर लग रहा था। अंत में दूसरे के घर में जाकर बांस की सीढ़ी लगाकर खिड़की पर डंडे से पीटा गया, तो बहू की बच्चे की रोने की आवाज आई तो बहू बोली कि सो गए थे, सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से उन लोगों ने, उनके परिवार ने बहू को पर कभी मतलब बहू को घर पर कभी नहीं छोड़ा कि ये जब जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो फिर से सो जाए।
1: और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि भाई सो गए फिर क्या, देह पर मक्खी बैठे, मच्छरों ने अटैक किया, क्या अंतर पड़ता है, अब सोए तो सोए लेकिन ध्यान रहे कि ये सोए ही नहीं अपितु घोड़े भी बेचकर सोए हुए हैं, यानी पूरी तरह से गंभीर निद्रा में सो रहे हैं। जबकि निद्रा के संबंध में कहा गया कि ये निद्रा श्वान की भांति होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, और हम लोग इस जग पाठशाला के एक विद्यार्थी ही तो हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुहावरा है और इसके निहितार्थ यही है कि निद्रा तो एक बहाना है, सच तो समस्याओं से बचते रहने का एक उपाय मात्र ही है। दरअसल कई बार इसमें लापरवाही भी छिपी होती है और अब आगे की जो जनरेशन है कई बार इसी तरह की नींद सोती है कि आप जगाते रहो उठना ही नहीं।
0: उनकी भी देखिए, वो लोग देर रात तक सोशल मीडिया मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते रहेंगे, नहीं तो कुछ सर्च ही कर रहे हैं, नहीं तो लेट नाइट पढ़ ही रहे हैं, तो उससे क्या होता है फिर वो सुबह मतलब पता चला वो 3 बजे सो।
1: अब उल्टा हो रहा है मामला, क्योंकि अब लोगों को घोड़े बेचकर सोने की आदत नहीं बल्कि नींद से जूझने की आदत पड़ गई है, और ये नींद से जूझने वाली जो बात है गाने में भी प्रयुक्त हुई है। देखते हैं इस गाने में क्या है। फिल्म है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।

0: अब मंजरी जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे

0: सेलुलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
1: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूं, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
2: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
1: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
2: जी है। जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ सहजोजी के साथ, वहां

0: उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो,
1: ओके
0: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया, और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते
1: वाह वाह
0: थे गाना, क्योंकि
1: वाह
0: हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी,
1: अरे अरे
0: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे, और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया, वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चर की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी, और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म
1: ऑडिशन से मिली थी।
0: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
1: ओहो,
0: हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
1: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
0: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे, मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का, एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया।
1: क्या बात है
0: कि, और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था, एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
1: यू हैव टू सिंग।
0: ओके, আমি লাশময়ী তোমার চোখে কামনার ফুল যে ফোটাই তবু আঁখিতে

0: तुमानोई।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल,
0: हाँ
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया,
0: हाँ
1: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे कि इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने के?
0: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स की फिल्म उन्होंने
1: टुवर्ड्स द
0: किया
1: एंड ऑफ द
0: था।
1: वर्ल्ड।
0: यस, सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड हम लोग ऐसे लोगों के साथ, और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ ले गए, और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स तो वो मतलब बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस।
1: चार पांच धड़कन मिस।
0: हाँ बिल्कुल टोटल। और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा, वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था। पैसे भी अच्छे मिले थे, लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था। तो बर्लिन आले जब होती है ना, बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे। एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट की, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी।
1: बिल्कुल,
0: इंडिया में ऐसे कोट्स मिलते ही नहीं थे। वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
1: क्या एक्सपीरियंस था वो?
0: हाँ, मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने और मिल रहे किसे, कियानो रीव्स।
1: वाह वाह वाह,
0: पर ये
1: यही तो मजा है।

0: बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे, और हम लोगों को रिट्स कार्ल्टन में ठहराया गया था, तो हम तो पागल हो गए थे। मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट
1: ग्रैंड,
0: या बट थैंकफुली लेटर इन लाइफ दिस बिकेम अ नॉर्म इन लाइफ, लाइक मेनी मोर फिल्म्स हैपेंड लाइक दिस, जहां मतलब बहुत ट्रैवल मैंने किया, जूरी में भी रही, और ये धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो
0: दिस इज द बिगिनिंग, या
1: यस बिल्कुल। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल फिल्म्स और उनमें अवार्ड्स लेने और तारीफ पाने का सिलसिला लगातार चलता रहा
0: जी।
1: तो इसके बाद कौन सी फिल्म आई?
0: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की
1: मेनन के साथ,
0: राजा मेनन के साथ ही किया एक, और फिर ब्रिकलेन हैपेंड। फिर कुछ दिन कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी, फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा
1: उस दौरान एक बांग्ला फिल्म भी की,
0: बिबौर, हाँ
1: बिबौर।
0: बांग्ला बिबौर भी की, फिर मुझे ब्रिकलेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके। फिर ब्रिकलेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए।
1: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?
0: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली ये भी था,
1: ये भी था,
0: हाँ, प्यार हो गया ये
1: वाँ।
0: भी था, दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो, रॉयल ओपरा हाउस में, जॉसलिन पुक जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के, तो बहुत मजा आया काम करके। और फिर
1: कितना फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
0: द थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, लाइक प्रोफेशनली चलती है वो, लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है। तो प्रोफेशनल लिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहाँ। तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी। क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूँ जो मैंने और शारिब हाशमी हम दोनों ने मिलकर लिखा, पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे, ये हॉबी हो जाती है। जबकि हम अपने पूरे, मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं, बट नो वन इज फंडिंग अस,
1: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
0: या तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं।
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है।
1: ऑफ कोर्स,
0: बट द थिंग इज वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज वो है ही नहीं।
1: तो लंदन में थिएटर होता रहा,
0: हाँ,
1: अलग अलग प्रोडक्शंस में काम किया।
0: और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेट और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो।
1: क्या बात है,
0: इट वाज फैंटास्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिकलेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ
1: एवरीथिंग। यस, मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई?
0: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना, फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको, बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की, सो ऐसी चीजें मैं करती गई।
1: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
0: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वाज लाइक यू नो, जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स।

0: वगैरह सब क्रैश हो गए. सो वर्क वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर. आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली.
1: अच्छा.
0: तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं रह वहां रही थी पर यहाँ काम कर रही थी काफी सारा. सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी बट आई वॉज डूइंग वर्क हियर. तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए.
1: तो आप वहां से वापस आ गई.
0: वापस आ गई.
1: और
0: एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं. सो द वेदर वॉज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स वेदर आई लाइक इट और नॉट.
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया.
0: जी.
1: अब भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
0: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए हुई.
1: अच्छा.
0: क्योंकि वो भी वहीं का प्रोडक्शन था. या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे ही इज ब्रिटिश.
1: ओके.
0: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
0: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे.
1: ओके.
0: और मार्टिन शीन, कार्ल पेन.
1: अच्छा. हाँ,
0: वो इंटरनेशनल फिल्म.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: या, या,
1: जी जी जी
0: या.
1: बिल्कुल. उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली और उनकी ये पहली फिल्म थी.
1: अच्छा.
0: और
1: एक ट्रेजेडी होने वाली है उसके इर्द गिर्द.
0: हाँ,
1: बुनी गई.
0: हाँ. फिर मैंने अन्ना कारेनिना भी किया उस समय व्हेन आई वाज इन लंदन जो राइट के साथ. मतलब काफी सारा वहां इधर दोनों का काम कर रही थी.
1: बिल्कुल मजेदार है ये. मुझे लगता है कि यहाँ भी एक गाना सुनते हैं फिर आगे की बात करते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो अब बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
0: मुझे नूर जहान के गाने जो हैं. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा.
1: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है. आवाज दे कहाँ है.
0: बिल्कुल.
1: वो भी सुना जा सकता
0: वो
1: है.
0: भी. हाँ हाँ, वो भी सुना जा सकता है.

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की, मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव एन वाई सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें,
0: वो एक फिल्म थी,
1: वो मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी। और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम, सो आई हैड द प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन स्क्रीन,
0: डंपिंग द मेन हीरो, क्या बात है, मजे की बात है।
1: हाँ, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी और बहुत ही अच्छी फिल्म मेकर हैं वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास। और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो। स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है।
0: एक सील ठप्पा, एक टाइप कास्ट वाला मामला,
1: बट ऐसा नहीं होता है, यू नो, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड की मैंने,
0: पार्च्ड मैं बस उसी की तरफ आ रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म आपके करियर की है पार्च्ड, जो महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना चाहिए।
1: यस, और पार्च्ड वॉज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन।
0: अरे वाह,
1: यस,
0: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था।
1: हाँ
0: वाह,
1: मैंने ये लिखा था और मैंने एक दिन, हम लोग मिले थे लीना और असीम और हम सोच रहे थे कुछ करे, तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं, मैंने कहा बनाओ, मैं दे देती हूँ तुमको। सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड, देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का। And then she did her research and she wrote the screenplay, और ऐसे करके बनी वो।
0: वो एक शानदार फिल्म बनी।
1: हाँ, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि the germ of the idea came from me। और
0: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें।
1: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सबकी कास्टिंग हुई एंड वी हैड like a very very interesting time, you know, shooting this together, bonding, and हमने साथ में बनाई इस फिल्म को, you know, we all got together and made the film. Russell Carpenter, जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है, he's a cinematographer of Avatars and Titanic, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों, he shot the film, और ये असीम बजाज की वजह से है, who's our producer. और लीना के पार्टनर भी हैं वो। सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर, वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए।
0: वाह,
1: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया,
0: बड़ा हो गया, और फिल्म बात भी बड़ी करती
1: बड़ी,
0: है।
1: हाँ,
0: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची।
1: यस, यानी लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई।
0: Wow.
1: You know, so it was really fantastic and also working with such amazing actors. सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया।
0: बिल्कुल सही है। जोरम के बारे में बात कीजिए क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है।
1: हाँ, तो अगेन देवशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है।
0: वाह,
1: ही इज अ अनअपोलोजेटिक अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट।
0: बिल्कुल,
1: जो
0: अपनी तरह की फिल्में करनी है
1: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है, और मैं इसलिए देवशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ। तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था तो मैं एक्चुअली आबूधाबी में थी, आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड येल्लो बस, और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है। तो देवशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है बट आई वॉन्ट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वॉन्ट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस। मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूँ।
0: वाह,
1: दैट्स ऑल।
0: क्या बात है, और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी

0: अच्छा भटूरी, देवाशीष की तमाम फिल्मों की तरह।
1: बिल्कुल कमाल। और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया। एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है,
0: बिल्कुल,
1: यू नो इज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन। एक्टर तो सबको पता ही है वो है।
0: बिल्कुल। तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है। मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है, और मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं।
1: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है।
0: हाँ बिल्कुल, पीछे
1: मैंने गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई, फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ, और वो काफी तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है।
0: अच्छा।
1: थी वो, और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था। वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था। और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था।
0: अच्छा,
1: आनंद जी के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूं। तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही, एंड व्हाई कांट इट बी अ शी? Because he was actually offering me a role in the film, but not the central character.
0: Right.
1: So he said, okay. और मैं Dallas जा रही थी next day किसी और film के लिए. When I came back, he said कि okay, these are your dates and you come. And yeah, now it's not he, it's she. I was like, okay.
0: वावा.
1: Wonderful.
0: क्या बात है.
1: हाँ. देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमाबाई,
0: वो भी उनके साथ ही, बिल्कुल, साथ जिसका जिक्र हमने अभी पीछे किया,
1: बिल्कुल,
0: देश की पहली डॉक्टर, महिला डॉक्टर,
1: प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर
0: जी, हाँ,
1: वो की मैंने। और उसमें तो बहुत ही, मतलब इट वाज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी, और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट। पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला, तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणे चा मुलगी हूँ।
0: क्या बात है।
1: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया, एंड आई वॉज लाइक कंफ्यूज, कि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा था।
0: जो वहां दिख रहा है
1: वहां दिख रहा है, एंड इट वॉज ओल्ड मराठी ऑल्सो, इट्स नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ। अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो, यू नो, बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल, तो आपको सीखना है, और आप बिल्कुल सीखो, अच्छे से सीखो।
0: क्या बात है। तो 3 फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ,
1: अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है।
0: क्या बात है, एक ही डायरेक्टर के साथ 4 फिल्म।
1: हाँ, उनके साथ तो मुझे काम करने में बहुत मजा आता है। वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं, मतलब दे आर सो, तो पास्ट टेंस में परेश और स्टोरी टेलर भी की 5th, यस,
0: लीजिए एक फिल्म तो छूटी गई थी।
1: आई हैव डन स्टोरी टेलर आल्सो विद आनंद जी।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इंपॉर्टेंट फिल्म है, और बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया।
1: जी जी जी जी, एंग्री इंडियन गॉडेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है, और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें, क्योंकि वहां पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था, ऑल दी एक्सेप्ट फॉर माय कैरेक्टर, एवरीबडी आल्सो डेवलप्ड देयर ओन कैरेक्टर्स। मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय, विकास मिश्रा की, इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैड टू जॉइन दैट प्रोसेस लेटर। तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, दे हैव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ, आई कुडंट बी, जबकि मैं, मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, और वो एंड एनी वे, सो इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिवाइज्ड, एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था एक साल और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया, जिस ढंग की, मतलब कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई, यू नो एवरीथिंग वॉज, सो द फिल्म केम आउट ऑफ दैट। सो इट्स अ पर्सनल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस, एंग्री इंडियन गॉडेसेस।
0: वाह, बिल्कुल।

0: और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला, उसका काफी नाम हुआ उस फिल्म का। यहां भी एक गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कौन सा गाना होगा?
1: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे, मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है, और उसका जो मतलब मेरा फेवरेट गाना बावरा मन।
0: हमने अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है,
1: हाँ।
0: अब हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते हैं।
1: स्वानंद माफ कर दे। पर ये एनएसजी में जब हम थे ना, वो तब से गाता था।
0: तब से गाते, बिल्कुल बिल्कुल।

अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?

0: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माय फादर एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये। और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरिड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं। एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माई प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वॉज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी, इफ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल। तो उसके बाद काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब वाइल वी वे शूटिंग इट, सो इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। और फिर फिल्म खत्म हुई, शूटिंग खत्म हुई, तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म। इट वॉज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। फिर जब वो हुआ और हमने एडिट खत्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट रैंडमली गॉन टू माई गायनोकोलॉजिस्ट टू डू सम चेकअप्स, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। और वहां उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है।
1: लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं आया, आप काम करती रही लगातार
0: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में,
1: और उसने कोई संकेत नहीं दिए।
0: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज, सो आई वॉज लाइक ये कैसे हो सकता है,
1: बिल्कुल।
0: यू नो एंड इट वॉज अनरियल। और इट वॉज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माई फादर टू
1: द सेम थिंग।
0: या इट वॉज ही हैड क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया CML, सो आई डिडंट नो हाउ वुड आई टेल माई मदर।
1: ओ गॉड।
0: तो मैं रिपोर्ट्स जो है हर दिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलता था, मतलब आपके लिए वो नेगेटिव है उस समय, कि हर एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ये भी। तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी और फिर ऊपर आई हैड 9 ईयर ओल्ड, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी डॉटर एंड एंड अ मदर हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट लाइक यू नो ईयर बैक एंड आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर। बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेल हर एट सम पॉइंट। मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन। तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वॉज टॉकिंग टू दीज टू पीपल। मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कान डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूं, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है, मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूं नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर। इमोशनली प्रैक्टिकली फाइनेंशियली देर इज नो बडी एल्स, सो हाउ वुड आई डू दिस एंड द एक्सपेंसिस ऑफ माई ट्रीटमेंट इज एबनॉक्शसली हाई।
1: ओहो।
0: इनिशियली इंश्योरेंस ऑल्सो रिफ्यूज माई क्लेम,
1: क्यों?
0: उनके बहुत ही गंदे फंडे होते हैं, उसके अंदर मैं जा ही नहीं रही हूं एंड आई हैड टू फाइट एंड फाइट एंड फाइट विद द इंश्योरेंस।
1: आप जीती?
0: यस बट द थिंग इज देयर वर टू मेनी बैटल्स, यू नो इसमें मैं हील कैसे हूं, बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग एंड आई वॉज कमिंग एंड द स्ट्रेस ऑफ द फिल्म।
1: वो तो रखा ही हुआ था।
0: तो इट वॉज जस्ट आई हैड रीच द रॉक बॉटम द डे द इंश्योरेंस क्लेम गॉट रिजेक्टेड। मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड। दैट डे आई रियली हिट द रॉक बॉटम कि यार इसके आगे अब अच्छा ही होगा, इससे बुरा और क्या होगा।
1: बिल्कुल।
0: बट माई सिस्टर टोल्ड मी कि नहीं, तुमको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स, नहीं तो इफ नॉट नाउ देन वेन, वो सिर्फ पार्टी करने के लिए है क्या। दैट्स वेन आई रीच आउट, मेरा एक गर्ल गैंग है, मैंने सबसे पहले उनको बताया,
1: वो लोग कौन है?
0: शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है
1: इसीलिए तो मैंने नाम पूछे हैं जी।
0: और

0: उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकणा है, विद्या है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मातोंडकर है, दिस वाज आर गर्ल गैंग, ऋचा चड्ढा है। तो ये इन्होंने मुझे, एक्चुअली ऋचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया, जिनके पास मैं गई फाइनली। शबाना जी आके मेरी मम्मी से मिलके, जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे, उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माय मदर्स लाइफ इजियर, कि उनको लगा कि नहीं अकेली नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं। संजय सूरी है, ऑनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं, और मतलब उसका तो मैं क्या कहूँ कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है।
1: गजब।
0: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ। एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है। मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन। मुझे हर
1: जबकि
0: 21,
1: 1.5 साल बीत चुका है।
0: हाँ 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए। बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सब के बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, AI, बट इट इज एक्चुअली जस्ट द टच ऑफ अ रियल ह्यूमन बीइंग विच हील्स एवरीथिंग। और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके, देन यू विल बी ओके।
1: ये कितना मुश्किल
0: सो
1: था।
0: ये मुश्किल नहीं था, बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था, और मेरी बहन आई थी। मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए, जब मेरा कीमो चल रहा था। एटलीस्ट वन पर्सन इज टेकन केयर ऑफ। मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम, पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुमको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई थिंक दैट्स द थिंग, दैट ये सपोर्ट। और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माई फिल्म, आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक
1: ये
0: अलॉन्ग।
1: प्ले का आइडिया जो शुरू होता है,
0: हाँ,
1: ये वाली कहानी बताइए,
0: ये
1: क्योंकि
0: शारीर
1: इस पूरे दौर से आप
0: बिल्कुल,
1: गुजर रही
0: जिस
1: थी।
0: दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने वाली थी, और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूं उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मिलती हूं क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट
0: डाइवर्ट
1: होगा।
0: रहेगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कैसा रिपोर्ट में आया है, पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, एंड आई ब्रोक डाउन। उसने मुझे अपनी पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ
1: वेरी
0: कैंसर, सो
1: डिफिकल्ट
0: ये
1: टाइम।
0: वेरी डिफिकल्ट। शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप, और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शाहरुख को अभी लिखते हैं हम
1: वाह
0: इसी इसी के
1: वाह
0: बारे में लिखते हैं।
1: क्या बात है।
0: एंड इमेजिन दैट वॉज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। तो दैट इवनिंग वॉज इनक्रेडिबल, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है वो भी आया हमसे मिलने, और दैट वॉज द लास्ट इवनिंग। एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
1: देख लेंगे।
0: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि अब ठीक हो जा, अपने ही सेल्स हैं विच हैव गॉन रूग, इट्स अप टू मी इफ आई कैन हील। ये मतलब इट जस्ट वेंट बैक एंड फोर्थ लाइक दैट, एंड दैट्स द डे मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले। फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया, और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने।
1: क्या बात है।
0: या
1: और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया।
0: यस, हमने शोज भी किए अब तो।
1: पहला शो कब कहां हुआ था।
0: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ,
1: जी।
0: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से इस मुश्किल से गुजर चुके हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक सर्वाइवर से और ऑनकोलॉजिस्ट से और आम जनता, हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑनकोलॉजिस्ट भी आए थे देखने और लखनऊ में बहुत फेमस ऑनकोलॉजिस्ट आए थे और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखानी चाहिए क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर, अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग, आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते। और ये चीज हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि, और इमोशनली कह रहे हैं क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने एक कहानी कही है, पर स्क्रीनिंग करवाना अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन, आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना, टेस्ट करवाना, ये बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी, आपको पता नहीं है मैंने ये नहीं की, ये गलती की मैंने क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूं, मुझे कुछ नहीं है, मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूँ। सो बट यू जस्ट नेवर नो, ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम। तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो या ये कर लो वो कर लो, हाँ उन सब चीजों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है तो प्रोग्नोसिस सबका अच्छा होता है, लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग। ये म्यूटेशंस क्यों होता है?

0: वी रियली डोंट नो, साइंस डजंट नो इट. और आपको चीजों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी.
1: बिल्कुल. इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं तो करेज कायम रखना, अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है. एज अ सर्वाइवर, इतने सारे लोग जो इन चीजों से, इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
0: पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम. बट मैं ये मानती हूं कि आज मैं यहां पे हूं, आपके साथ बातचीत कर रही हूं, आज मैं अपने फिल्म को लेकर दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूं, अपना प्ले कर रही हूं, अपनी जिंदगी जी रही हूं, अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप करवाने ले जा रही हूं. आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप यही कर सकते हो
1: जो भी है, बस
0: हियर एंड नाउ. कल का तो हमने ना तो आपको पता है ना मुझे. ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था बट अब तो मतलब ये इंटरनल है. वी रियली डोंट नो. मतलब मैं एक दिन पूरा आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस. हाउ बिजार इज दैट. मेरे दोस्तों को जब पता चला वो सब ये कहने लगे कि टैन मतलब यू नो, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम नॉट दैट, यू नो, सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया. आई ईट हेल्दी, आई हैव ऑलवेज बीन फिट. मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का. मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट. सो हाउ देन यू जस्ट नेवर नो. तो आप वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवा तहबे. आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त, हियर एंड नाउ. मैं जब कीमोथेरेपी पे जाती थी मैं दोस्तों को बुला लेती थी वहां, हमारे अड्डे चलते थे वहां. कोई पोएट्री पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक सुना रहा है, वो हम चुटकुले मतलब ये ताकि वो वक्त निकल जाए. मेरे ट्रीटमेंट का जो पेन है, बाल झड़ रहे थे मैंने शेव करवा लिए
1: और वो भी पब्लिक को दिखाया properly.
0: Yes.
1: कि yes, I am going through this.
0: Yes, I lost a lot of weight. I mean, that's a part of my life. I am an artist and I experienced it. I'm experiencing different things and I will express myself through those experiences. और हम यही करते हैं और यही कर सकते हैं.
1: बिल्कुल. तनिषा, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स जैसी कोई चीज होती है लाइफ में, वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है?
0: नहीं. मत कल का सिर्फ पता है क्योंकि मैं परसों दिल्ली जा रही हूँ, फुल प्लेट की एक स्क्रीनिंग है वहाँ हैबिटेट सेंटर में.
1: तो क्या अगले प्ले की कोई प्लानिंग है?
0: कुछ चीजें लिख रही हूँ लेकिन वो कब आएगी, कब होगा ये पता नहीं अभी. बट आई एम राइटिंग सर्टन थिंग्स. फिल्म भी लिख रही हूँ, प्ले भी लिख रही हूँ.
1: तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई हैं?
0: नहीं नहीं, एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है. अभी बेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ. हमने लिखा है, हम एक्टिंग कर रहे हैं. मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो. सो शी हैज डायरेक्टेड इट.
1: ओके, वाओ, बढ़िया बात है. तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही है, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उस बीच में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ, क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है. फिर मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, बहुत मजा आ रहा है. तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल, थोड़ा वहाँ रिलैक्स भी हो जाते हैं. बेटी भी सीख रही है, स्विमिंग सीख रही है. देन आई स्पेंड टाइम विथ हर. खाना बनाने में मुझे मजा आता है और आजकल थोड़ा सा मुझे अपने डाइट पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ.
1: क्या बनाती
0: हूँ? हाँ, मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा मेरा ना आजकल जो हो रहा है. मम्मी कहती कि अच्छे इसको बुला लो, उसको बुला. मैंने कहा कि घर पे लोगों बुलाएंगे खिलाएंगे क्या, क्योंकि क्यूजीन तो ये बन रहा है. मेरी वजह से अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के, उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन्स, उसको सब एफर्टलेसली आता है. इतना सुन चुकी है वो किस खाने में क्या विटामिन है, क्या खाने से क्या डेफिशिएंसी होगी.
1: राइट राइट. So she is an expert now.
0: Yeah.
1: बिल्कुल.
0: वो एक्चुअली मुझे टीज करने लगती है. अभी मम्मी पता है क्या कहेगी, ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसमें पता है ये विटामिन है, वो मिनरल्स है और ये मिलेगा.
1: पहले ही बोल देती है. क्या बात है तनिषा, बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे.

0: बिल्कुल। और जाते जाते एक गाना
1: जरूर,
0: जीवन से भरी तेरी आंखें
1: मजबूर करें जीने के लिए, सफर फिल्म का ये गाना। इस गाने को इंदीवर ने लिखा है
0: हाँ।
1: और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी हैं।

0: तनिषा बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ जरूर और
0: जरूर आइए, स्वागत है।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: एक आवाज जिसमें है जोश जुनून।

0: अपने साथ बहा कर ले जाती है।
1: कभी तो नजर मिला।
0: एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अनगिनत यादें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसार
3: FM 102.5 MHz साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र आदित्य निगम। नमस्कार श्रोताओं, शाम के 5 बज गए हैं और अब वक्त है लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी का, जहाँ गूंजती है युवा मन की बात और युवा प्रतिभाओं की सौगात। तो शामिल हो जाइए इस सफर में।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी उज्जैन का हमारा अपना युवा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं कौमुदी
1: और मैं हूं आपका दोस्त राजवीर। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम युववाणी में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन अक्सर हम उसके बारे में बात करना भूल जाते हैं।
0: हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, समय पर खाना, एक्सरसाइज करना, पानी पीना, इन सब का ध्यान रखना सीख रहे हैं। लेकिन एक सवाल, क्या हम अपने मन की सेहत का भी उतना ही ख्याल रखते हैं?
1: बिल्कुल, क्योंकि शरीर की तरह हमारा मन भी थकता है, परेशान होता है, कभी खुश होता है, कभी उदास होता है, और इन भावनाओं को समझना और उनका ध्यान रखना भी हमारी सेहत का ही हिस्सा है।
0: यानी दोस्तों, आज की हमारी बातचीत का विषय है मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। मगर विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले चलिए आपको सुनाते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, ब्रेक से पहले आपने सुना फिल्म दिल धड़कने दो का ये सुंदर गीत, जिसे गाया था शंकर महादेवन, यशिका शर्मा ने। संगीतकार थे शंकर एहसान लोय, गीतकार थे जावेद अख्तर। तो कौमुदी, हमारे श्रोताओं को भी बताओ ना, आखिर ये मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है?
5: दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें कोई मानसिक बीमारी है या नहीं, बल्कि इसका संबंध इस बात से है कि हम कैसा महसूस करते हैं, कैसे सोचते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की परेशानियों से कैसे डील करते हैं।
4: बिल्कुल, एग्ज़ाम से पहले थोड़ी घबराहट होना, किसी बात से दुखी होना या किसी मुश्किल परिस्थिति में तनाव महसूस करना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है।
5: हाँ राजवीर, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब कोई परेशानी लंबे समय तक बनी रहे, हमारी नींद, पढ़ाई, काम, रिश्तों या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करने लगे, तब हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है।
4: और शायद सबसे ज़रूरी बात, अपने मन की परेशानी को छोटा समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
5: बिल्कुल।

0: सही, जैसे शरीर में दर्द होने पर हम समझते हैं कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वैसे ही मन परेशान हो तो किसी दोस्त या परिवार के व्यक्ति से बात करना या फिर ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लेना भी बिल्कुल सामान्य है।
1: लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकती हैं, बताओ जरा।
0: दोस्तों, ये बताएंगे हम आपको आगे की चर्चा में, क्योंकि आज की ज़िंदगी में पढ़ाई और करियर का प्रेशर हो, रिलेशनशिप्स हो, सोशल मीडिया हो या अकेलापन, इन सब का असर हमारे मन पर पड़ सकता है।
1: तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे बात करेंगे आज की जिंदगी और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर, और जानेंगे कि आखिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे मन को किस तरह प्रभावित करती हैं। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत गीत को।

0: कविता सेठ की मधुर आवाज में सुंदर गीत फिल्म वेकअप सीट से। संगीतकार थे अमित त्रिवेदी, गीतकार थे जावेद अख्तर। तो कौमुदी हम बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य की, लेकिन अगर हम आज के युवाओं की जिंदगी को देखें तो आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो युवाओं के मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं?
1: देखो राजवीर, आज की जिंदगी में पढ़ाई और करियर का प्रेशर है, फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी है, रिलेशनशिप्स हैं और सोशल मीडिया का भी लगातार बढ़ता इन्फ्लुएंस है। कई बार हम दूसरों की ज़िंदगी से अपनी तुलना करने लगते हैं और इसका असर सीधे हमारे कॉन्फिडेंस और मेंटल वेलबींग पर भी पड़ सकता है।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कई बार परेशानी दिखाई नहीं देती। कोई व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य नजर आता है लेकिन अंदर से वह स्ट्रेस, एंजाइटी या किसी दूसरी इमोशनल परेशानी से गुजर रहा होता है।
1: बिल्कुल, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन में भी कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। अध्ययन में विद्यार्थियों में आत्महत्या से जुड़े मामलों और उनके संबंधित कारणों को समझने की कोशिश की गई थी।
0: यानी ये सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, इसके पीछे पढ़ाई, पारिवारिक परिस्थितियाँ, सामाजिक दबाव और भावनात्मक परेशानियाँ जैसे कई पहलू हो सकते हैं।
1: बिल्कुल राजवीर, और इसीलिए मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस के साथ साथ समय पर सहायता मिलना भी बहुत जरूरी है।
0: लेकिन सवाल यही तो है, आखिर किसी व्यक्ति को महसूस हो कि उसे मदद की जरूरत है तो वो कहाँ जाए, किसके पास जाए?
1: मुझे लगता है कि लोग काउंसलिंग या प्रोफेशनल हेल्प लेने से इसीलिए भी बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता कि मदद के लिए कहाँ संपर्क किया जाए।
0: बिल्कुल, और यहीं पर आता है राष्ट्रीय टेलीमानस कार्यक्रम।
1: जी हाँ, देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय टेलीमानस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी
0: और इसकी पहुंच अब काफी व्यापक हो चुकी है। 6 अगस्त 2026 तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 53 टेलीमानस सेल स्थापित किए जा चुके हैं।
1: वहीं क्या तुम्हें पता है राजवीर, टेलीमानस हेल्पलाइन ने अब तक 43,25,000 से ज्यादा कॉल्स का जवाब दिया है।
0: बिल्कुल, ये आंकड़े बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों पर बात करने और सहायता लेने की जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है।
1: और दोस्तों, टेलीमानस की खासियत यही है कि सहायता सिर्फ गंभीर मानसिक बीमारी तक सीमित नहीं है, सामान्य मानसिक स्वास्थ्य और वेलबींग से जुड़ी परेशानियों से लेकर मेंटल डिसऑर्डर्स तक के मामलों में सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
0: बिल्कुल, यानी मन में कोई परेशानी हो, लगातार तनाव महसूस हो रहा हो या आपको लगे कि किसी से बात करने की जरूरत है तो मदद लेने का रास्ता मौजूद है।
1: और अब ये रास्ता और भी आसान हुआ है क्योंकि टेलीमानस ने के अंतर्गत वीडियो कंसल्टेशन की सुविधा भी शुरू की गई है, जो पहले से उपलब्ध ऑडियो कॉल सर्विस का विस्तार है।
0: और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने टेलीमानस मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया है।
1: आगे हम इस ऐप के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसमें क्या सुविधाएं हैं और ये मेंटल हेल्थ सपोर्ट को हमारे और करीब कैसे ला सकता है।
0: बिल्कुल, तो बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत गीत को।

0: अभी आपने सुना फिल्म जब वी मेट से मोहित चौहान की आवाज़ में ये गीत। इसे संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने और बोल थे इरशाद कामिल के। राजवीर, अभी हमने टेलीमानस की हेल्पलाइन और वीडियो कंसल्टेशन के बारे में बात की, लेकिन आज के डिजिटल दौर में जब हमारी ज़्यादातर काम स्मार्टफोन से हो जाते हैं, तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है।
1: बिल्कुल कौमुदी, इसी दिशा में भारत सरकार ने टेलीमानस मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। यह मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
0: मगर अब सवाल ये है कि इस ऐप की जरूरत क्यों पड़ी?
1: कौमुदी, क्योंकि मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ किसी बीमारी का इलाज नहीं है। कई बार हम अपने इमोशंस को समझने, स्ट्रेस को मैनेज करने या अपनी मेंटल वेलबींग पर ध्यान देने की जरूरत होती है।
0: और दोस्तों, टेलीमानस ऐप इसी व्यापक जरूरत को ध्यान में रखता है। इसमें सामान्य मानसिक स्वास्थ्य और वेलबींग से जुड़ी समस्याओं से लेकर मेंटल डिसऑर्डर्स तक के मामलों में सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर परेशान है, तो वह इसे नजरअंदाज करने की बजाय

0: उपलब्ध रिसोर्सेस और सपोर्ट की जानकारी ले सकता है।
1: और यही हमें एक बहुत ज़रूरी बात भी याद दिलाती है दोस्तों, मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेने के लिए किसी समस्या के बहुत बढ़ जाने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कौमुदी, जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए प्रिवेंटिव केयर की बात करते हैं, वैसे ही अपने मेंटल वेलबींग पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है।
1: बिल्कुल राजवीर, और अगर किसी को लगे कि उसे प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो टेलीमानस की सेवाएं उसके लिए एक बहुत एक्सेसिबल ऑप्शन हो सकती हैं।
0: वैसे कौमुदी, एक सवाल है जो हमारे युवा श्रोताओं के मन में भी हो सकता है, क्या मेंटल हेल्थ की परेशानी सिर्फ छात्र या युवाओं में ही होती है क्या?
1: बिल्कुल नहीं राजवीर, मेंटल हेल्थ हर उम्र और हर वर्ग के व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी की जिंदगी में ऐसे दौर आ सकते हैं जब उसे इमोशनल या साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत महसूस हो,
0: और शायद इसीलिए मेंटल हेल्थ पर बातचीत को किसी एक उम्र या वर्ग तक सीमित करने के बजाय इसे हमारी ओवरऑल हेल्थ का हिस्सा समझना चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक और जरूरी बात, मदद मांगना कमजोरी नहीं है
0: बल्कि अपनी परेशानी को पहचानना और सही समय पर मदद लेना अपने प्रति जिम्मेदारी है।
1: तो अगर आपको या आपके किसी परिचित को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी महसूस हो तो दोस्तों से नज़रअंदाज करने की बजाय बात कीजिए, जानकारी लीजिए और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल सपोर्ट तक पहुँचिए।
0: और टेलीमानस जैसी पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: लेकिन राजवीर, मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे समाज में कई ऐसी धारणाएं भी हैं जिनकी वजह से लोग मदद लेने से पीछे हट जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब वक्त है कुछ ऐसी ही मेंटल हेल्थ मिथ और उनकी रियलिटी पर बात करने का।
1: एक सुंदर गीत के बाद होगी इन्हीं मिथ्स पे चर्चा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: अभी आपने सुना फिल्म द स्काई इज पिंक से अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा और निखिल डिसूजा की आवाज़ में ये गीत। इसके बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीत था प्रीतम का।
1: अच्छा कौमुदी, मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे समाज में कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ बातें सही होती हैं और कुछ बातें मिथक यानी गलत धारणाएं भी होती हैं।
0: बिल्कुल राजवीर, तो क्यों ना आज ऐसी ही कॉमन बातें सामने रखें और देखें कि उनमें कितनी सच्चाई है।
1: सबसे पहला मिथ, मेंटल हेल्थ की परेशानी सिर्फ कमजोर लोगों को ही होती है।
0: जबकि दोस्तों रियलिटी ये है कि मानसिक स्वास्थ्य पर कई चीज़ों का असर पड़ता है। तनाव, जीवन में होने वाले बड़े बदलाव, सामाजिक परिस्थितियाँ और कई दूसरे फैक्टर्स। इसीलिए मेंटल हेल्थ की परेशानी को किसी व्यक्ति की कमजोरी मानना बिल्कुल गलत है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के साथ एक दूसरा मिथ भी है, अगर कोई व्यक्ति उदास है या परेशान है तो बस उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहिए।
0: राजवीर, पॉजिटिव सोच अच्छी चीज़ है, लेकिन हर परेशानी का सलूशन सिर्फ पॉजिटिव रहो कहना नहीं होता। कई बार व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उसकी बात सुने, समझे और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प तक पहुँचाने में उसका साथ दे।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। इसी के साथ एक तीसरा मिथ है जिसे कहते हैं काउंसलिंग की ज़रूरत सिर्फ मानसिक रूप से बीमार लोगों को ही होती है।
0: ये भी सही नहीं है दोस्तों। काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट अलग अलग परिस्थितियों में मददगार हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल डिफ़िकल्टीज या किसी और दूसरी परेशानी से जूझ रहा है तो प्रोफेशनल गाइडेंस लेना एक बहुत मददगार ऑप्शन है।
1: और यहीं पर टेलीमानस जैसी सेवाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट पहुंचने का एक माध्यम मिलता है।
0: और इसी के साथ हमारा चौथा मिथ है कि अगर अपनी परेशानी किसी को बताओ तो उसका समाधान तो नहीं निकलेगा, पर कई बार वो बड़ी हो जाएगी।
1: जबकि कई बार अपनी बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करना ही पहला कदम हो सकता है। अपनी फीलिंग्स को दबाते रहना हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता।
0: और अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसे प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसे मदद लेने में देर नहीं करनी चाहिए।
1: एक और बात कॉमन है, जैसे कि मेंटल हेल्थ की बात करना मतलब अपनी परेशानी को बहुत बड़ा बनाना।
0: जबकि सच इसके बिल्कुल उलट है। किसी परेशानी को पहचानना और उसके बारे में बात करना अवेयरनेस की निशानी है। जैसे हम फीवर या चोट को इग्नोर नहीं करते, वैसे ही लगातार बनी मेंटल डिस्ट्रेस को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: और आज हमारे पास मदद लेने के कई रास्ते हैं, टेलीमानस की हेल्पलाइन, मोबाइल एप्लीकेशन और अब वीडियो कंसल्टेशन जैसी सुविधाएं मेंटल हेल्थ सपोर्ट को लोगों तक पहुँचाने की दिशा में काम कर रही हैं।
0: तो अगली बार जब कोई कहे कि मेंटल हेल्थ की बात करने की क्या ज़रूरत है,
1: तो याद रखिए मन की सेहत भी हमारी सेहत का ही हिस्सा है।
0: और जब ज़रूरत महसूस हो तो मदद लेने में बिल्कुल संकोच मत करिए।
1: अब तक हमने मेंटल हेल्थ को समझा, युवाओं की ज़िंदगी में इसके महत्व की बात की और टेलीमानस जैसी सुविधाओं के बारे में जाना।
0: लेकिन अब सवाल अभी भी बाकी है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल कैसे रख सकते हैं।
1: तो आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे छोटे लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिन्हें हम अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं।
0: मगर दोस्तों बातें तो बहुत हो गई,

0: तो दोस्तों, अभी आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में फिल्म रॉकस्टार से ये खूबसूरत गीत, जिसे संगीत दिया था एआर रहमान ने और गीतकार थे इरशाद कामिल।
1: राजवीर, हमने मेंटल हेल्थ से जुड़ी कई बातें समझी, लेकिन अब सवाल ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मेंटल वेलबींग का ख्याल कैसे रख सकते हैं।
0: कौमुदी, सबसे पहली चीज है अपनी फीलिंग्स को पहचानना। अगर आप परेशान हैं, तनाव में हैं या किसी बात को लेकर लगातार सोच रहे हैं, तो उसे इग्नोर करने के बजाय खुद से पूछिए कि आखिर आपको क्या बात परेशान कर रही है।
1: और दोस्तों, हर बार इसका जवाब तुरंत मिल जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को पहचानने की कोशिश करना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ दूसरी ज़रूरी चीज़ है किसी से बात करना। कोई भरोसेमंद दोस्त, परिवार का सदस्य,

0: या ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हों।
1: बिल्कुल राजवीर, क्योंकि कई बार हमें सोल्यूशन से पहले सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारी बात ध्यान से सुने।
0: बिल्कुल, इसी के साथ हमें अपने रूटीन पर भी ध्यान देना होगा। पर्याप्त नींद, फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस डाइट और अपने लिए थोड़ा समय निकालना हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए जरूरी है।
1: दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में एक और चीज पर ध्यान देना जरूरी हो गया है, हम अपना स्क्रीन पर कितना समय बिताते हैं।
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों की जिंदगी देखना और खुद से तुलना करना कई बार अननेसेसरी प्रेशर बढ़ा सकता है। इसीलिए कभी कभी फोन से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और समय निकालकर अपने लिए अच्छा सोचें।
1: लेकिन राजवीर, ये सारे स्टेप्स अपनी जगह जरूरी हैं, फिर भी अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी परेशानी से जूझ रहा है और उसकी डेली लाइफ प्रभावित हो रही है, तो उसे सेल्फ केयर पर निर्भर रहने की बजाय प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल कौमुदी, ऐसी स्थिति में प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी हो सकता है और यहीं पर टेलीमानस जैसी सेवाएं एक महत्वपूर्ण सपोर्ट सिस्टम के रूप में सामने आती हैं।
1: यानी सेल्फ केयर और प्रोफेशनल सपोर्ट एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स नहीं है, जरूरत के हिसाब से दोनों की अपनी भूमिका हो सकती है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे जरूरी बात है, मदद मांगने के लिए किसी परेशानी के बहुत ज्यादा बढ़ जाने का इंतजार मत कीजिए।
1: अपने मन की बात को महत्व दीजिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए और जरूरत पड़ने पर सही जगह से मदद भी लीजिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि मेंटल हेल्थ कोई एक दिन की परेशानी नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और ओवरऑल हेल्थ का हिस्सा है।
1: और दोस्तों, अब तक की हमारी बातचीत से एक बात तो साफ है, मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना जरूरी है, उसके बारे में जागरूक होना जरूरी है और जरूरत पड़ने पर मदद लेना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल कौमुदी, लेकिन हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, आगे हम बात करेंगे आज के हमारे सबसे खास विषय पर।
1: और अब इसी संदेश के साथ चलिए सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म रॉक ऑन से डोमिनिक सेरोजो की आवाज़ में ये गीत। इसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने।
1: तो दोस्तों, आज की हमारी इस बातचीत से बस इतना याद रखिए, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारी सेहत का एक ज़रूरी हिस्सा है। अपने मन की बात को समझिए, ज़रूरत पड़ने पर बात कीजिए और मदद लेने में कभी भी संकोच मत कीजिए।
0: बिल्कुल राजवीर, और ख़ासकर युवाओं के लिए ये और भी ज़रूरी है, क्योंकि आज का युवा सिर्फ अपने भविष्य की नींव ही नहीं रख रहा बल्कि देश के भविष्य को भी आकार दे रहा है।
1: और जब बात युवाओं की हो रही है तो आपको याद दिला दें कि कल यानी 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाएगा।
0: ये एक ऐसा दिवस है दोस्तों, जो दुनिया भर के युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और उनकी भूमिका को पहचानने का अवसर देता है।
1: तो मानसिक स्वास्थ्य की इस बातचीत से अब आगे बढ़ते हैं युवाओं से जुड़ी एक और खास बातचीत की ओर,
0: जहां बात होगी विश्व युवा दिवस, युवाओं की चुनौतियां, उनकी संभावनाओं और उस ऊर्जा की जो बदलाव ला सकता है।
1: बिल्कुल, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अभी वक्त है आज की रोजगार सूचना का। अगर आपका सपना देश की अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़कर काम करने का है तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है।
0: जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार ने साइंटिस्ट इंजीनियर SC के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में BE/BTech या समकक्ष डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त है।
1: यानी इच्छुक उम्मीदवार समय रहते अपना आवेदन अवश्य कर दें। आवेदन और भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए उम्मीदवार इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करंट अपॉर्चुनिटी सेक्शन में देख सकते हैं।
0: तो अगर आपके पास योग्यता है और अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में करियर बनाने का इच्छा है तो इस अवसर को हाथ से न जाने दें। आज ही आधिकारिक सूचना देखें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। और अब इसी के साथ चलिए सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म थ्री इडियट से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत। इसको संगीत दिया था शांतनु मोइत्रा ने और बोल लिखे थे स्वानंद किरकिरे ने।
1: तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। दुनिया भर में इस दिन युवाओं की भूमिका, उनके अधिकारों, उनकी भागीदारी और समाज में उनके योगदान पर चर्चा की जाती है।
0: लेकिन राजवीर, मेरा एक सवाल है कि आखिर ये युवा होना है क्या, सिर्फ उम्र कम होना या जवान होना?
1: नहीं नहीं, युवा एक सोच है, कुछ नया करने का जुनून, कुछ नया सीखने की इच्छा और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की ऊर्जा।
0: बिल्कुल, एक युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला व्यक्ति ही नहीं होता, वो नौकरी देने वाला भी बन सकता है। वो समस्या का हिस्सा नहीं, समस्या का समाधान भी बन सकता है।
1: बिल्कुल कौमुदी, आज का युवा अपने मोबाइल का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने, जानकारी हासिल करने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए भी कर रहा है। और आज यही तकनीक उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है।
0: और दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम आपको एक ऐसे युवा क्रांतिकारी की कहानी सुनाना चाहते हैं जिसने भरी जवानी में भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: दोस्तों, 11 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण तारीख है। 11 अगस्त 1908 को देश के युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1890 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवेनी नामक गाँव में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीराम बोस के मन में देश को आज़ाद कराने के लिए ऐसी लगन थी कि नवीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। छात्र जीवन से ही ऐसी लगन मन में लिए इस नौजवान ने हिंदुस्तान पर अत्याचारी सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने का संकल्प लेकर स्वराज्य स्थापित करने की यात्रा पर निकल पड़े। कई आंदोलनों का हिस्सा बने, लंबे समय तक संघर्ष किया और मात्र 19 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया।
0: दोस्तों, उनकी उम्र उस समय बहुत कम थी, लेकिन देश के लिए उनके भीतर का साहस बहुत बड़ा था और इसीलिए खुदीराम बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में युवा साहस और बलिदान का प्रतीक है।
1: इतिहास सिर्फ तारीख याद नहीं करता, इतिहास हमें समझाने के लिए होता है कि आज़ादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुका कर मिली है। आज भी देश में ऐसे करोड़ों युवा हैं जो अपना घर छोड़कर देश की रक्षा में सरहद पर खड़े हैं और यही युवा देश की असली शान है। तो हमारा अगला गीत समर्पित है देश के जवानों को।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म केसरी का ये बहुत ही खूबसूरत गीत, जिसे गाया था बीपराग ने। संगीतकार थे आरको प्रावो मुखर्जी और गीतकार थे मनोज मुंतशिर। दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं हूँ राजवीर सिंह चौहान
1: और मैं कौमुदी। इसी के साथ दोस्तों, अब लेते हैं आपसे विदा इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा।
0: सुनते रहिए FM 102.5 MHz पर आकाशवाणी उज्जैन।
1: नमस्कार।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम युववाणी। युवा शक्ति, युवा सोच और युवा अभिव्यक्ति के संगम से परिपूर्ण इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

FM 102.5 MHz साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम की धुरी बेला हो गई है और अब समय है भक्ति में डूब जाने का। आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम भजन संध्या। नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी आदित्य निगम। श्रोताओं, श्रावण माह का पावन पर्व चल रहा है और चारों ओर शिव बम भोले का जयकारा गूंज रहा है। शिव की भक्ति से ओतप्रोत आइए सुनते हैं मधुर भजन।

श्रोताओं, भक्ति के इस सुंदर संध्या में अब बारी है उस नाम की, जिसे प्रेम से पुकारते ही मन में मधुरता उतर आती है। वो नाम है श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भजन।

कान्हा के प्रेम और उनकी मधुर मुरली के भावों में डूबने के बाद अब चलिए उस नाम की ओर जिसमें मर्यादा है, आदर्श है और सत्य का प्रकाश है। आइए सुनते हैं श्री राम का भजन।

श्रोताओं, श्री राम की भक्ति हो और हनुमान जी का स्मरण ना हो संभव नहीं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, समर्पण होता है। आइए मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ भजन की भक्ति में मन लगाते हैं और सुनते हैं हनुमान भजन।

श्रोताओं, आप जहां भी हों वहां प्रभु का स्मरण कीजिए। भजन संध्या के कार्यक्रम को हम देते हैं यही विराम। मैं अदिति निगम आपसे लेती हूं अनुमति, फिर आप होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान
1: वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: घुंसारे से जब सावन की फुहारन से भीगी भई धरती नई उम्मीदों से महकत है, तो सबसे पहले एक किसान जागत है और उनके कदमों के संग जागत है उम्मीदें, उनके पसीना से लहलहात है फसलें और उनकी मेहनत से भरत है पूरे देश की थाली। सो अन्नदाता की आवाज, उनकी बात, उनकी तरक्की और उनके विश्वास को साथी बनके आकाशवाणी भोपाल लेके आओ है किसानन के लाने अपनो नव कार्यक्रम किसान वाणी। देखो भैया, खेती से फिर रोजी रोटी को जरिया नहीं होते है, बल्कि अपने जीवन और देश की खुशहाली को आधार भी है। सो मनोज जय मारे, खेती से जुड़ी नई और सरकारी योजनाओं की सही जानकारियां, वैज्ञानिक सलाह और सफल किसानन के अनुभव अब नियमित रूप से आप तक पहुंचे किसान वाणी के माध्यम से हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार संजय बेरा 7:30 बजे से। तो राम राम भैया बहनों हरो, किसान वाणी कार्यक्रम में सभी जनों को स्वागत है। हमारा नाम है राधा चौरे। हम दो ही हाथ जोड़ के सभी किसान भैया बहनों को स्नेह भरी राम राम करत है, सो स्वीकार करवे। भैया हरो, आज किसान वाणी के ई पहले अंक में सबसे पहले बात कर है वर्षा जल संचयन की। जान है कि बरसात की हर बूंद को सहेज के अपनी खेती को कैसे और अधिक समृद्ध बनाओ जा सकत है। इके संगे सुन है कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश अम्बालकर की उपयोगी सलाह, संगे बलराम कृषि योजना के बारे में सोई अपन चर्चा कर है। तो उतई जान है मौसम के मुताबिक खेती किसानी से जुड़ी जरूरी सलाह भी और मंडियों के भाव भी। तो भैया, किसानन की बात होए और मनोरंजन ना होए, मनोज जो कैसे हो सकत है, सो लोग की सोई सुनबे मिल है। तो शुरू करत है आज की पहली चर्चा से, विषय है वर्षा जल को संचयन। कहत है बरसात की हर बूंद आबिबारी काल की पूंजी होत है। सो अगर वर्षा के पानी को सही ढंग से सहेज लाओ जाए तो जोई पानी सूखे दिनन में फसलों को सहारो बन सकत है। वर्षा जल संचयन केवल पानी बचावे को उपाय नहीं है,

0: खेती को मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की भी एक महत्वपूर्ण पहल है। तो आओ जानते हैं कि कैसे बारिश के मौसम में खेतन से जल निकासी और जल स्तर प्रबंधन कर सकते हैं और कैसे बरसात की हर बूंद को बचा के हम अपनी खेती और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रकाश अम्बालकर जी और इनसे बातचीत करी है बहन अंशु तिलेठे ने। तो सुनते हैं जब भेंट वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि बहुत हद तक मौसम पर निर्भर करती है। खासतौर पर यदि बारिश अधिक हो जाए तो किसानों को अपने खेतों में जल भरने की समस्या का सामना करना पड़ता है। फसलें पीली पड़ने लगती हैं या खराब भी हो सकती हैं। इसी समस्या का समाधान हम आज की अपनी भेंट वार्ता के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। हमारा आज का विषय है बारिश में खेतों से जल निकासी और जल स्तर प्रबंधन। हमारे आज के इस विषय के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रकाश अम्बालकर जी। आप सेवानिवृत्त मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर। जैसा कि हमारा विषय है और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बारिश से खेतों में पानी ज्यादा हो जाता है, फिर वो खेतों के लिए मुसीबत कैसे बन जाता है?
2: देखिए, अगस्त माह में कहीं कहीं जगह आपने देखा होगा कि अधिक बारिश हो जाती है या भारी बारिश भी होती है तो पानी इकट्ठा होने लगता है खेतों में, जिससे खेतों में लगी हुई फसल जैसे मक्का है, सोयाबीन है, दलहनी फसलें हैं और तिलहनी फसलें के साथ साथ सब्जियां जो हैं उनकी जड़ें यदि 24 से 48 घंटे तक पानी में डूबी रहती हैं तो वो सड़ने लगती हैं, क्योंकि भरे हुए पानी में जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस कारण जो पौधों की पैदावार पे असर आता है, और ये केवल इन्हीं फसलें जो बताई उसमें ही नहीं, अगर धान की भी बात करें तो धान में भी यदि ज़्यादा देर तक पानी रुकता है तो धान में कल्ले निकलना कम हो जाते हैं और धान के जो जिसको टिलरिंग भी कहते हैं अपन, वो उसके कम होने के कारण 30-50% तक धान के उत्पादन पे असर होता है। तो किसानों का अपनी फसल का उत्पादन कम मिलता है और इसीलिए किसानों को इस समय खासकर अगस्त महीने में जल निकासी की तरफ और जल को निकासी किए हुए जल को एकत्रित करके जल का दोहन करने के लिए तालाब का भी निर्माण करना चाहिए। तो इस तरीके से उनको ड्रेनेज, जिसको जल निकासी कहेंगे उसकी तरफ, और जल संचय जिसको अपन वाटर हार्वेस्टिंग कहेंगे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए इस खासकर इस माह में।
1: बहुत बहुत अच्छी जानकारी सर। आगे बढ़ेंगे हम और आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को ये तो बताया कि ज्यादा पानी की खेतों से निकासी तो जरूरी है, पर इसके लिए कोई कृषि यंत्र का उपयोग किया जा सकता है और हमारे किसान भाई इस कृषि यंत्र को कम खर्च पर कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं?
2: देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें सबसे पहली बात है कि हम जल निकासी के लिए यदि हमारे पास 45 हॉर्स पावर का भी टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है या 50 हॉर्स पावर से 55 हॉर्स पावर का, जिसमें 50 हॉर्स पावर का फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है जिसका यदि वजन 2000 किलो से ज्यादा है तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, पर 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है उसमें थोड़ा सा वो धीरे चलता है, जिसमें हम लगाते हैं मोल प्लाव। ये मोल प्लाव लगाने के ट्रैक्टर के बारे में मैंने बताया। अब ये मोल प्लाव जो होता है इसमें एक पाया होता है और जो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की गहराई में जा सकता है और इसमें एक गोलाकार जो जिसको अपन कहते हैं गोल एक्सपांडर, मतलब ये एक लोहे का गोला रहता है जो नीचे लगा हुआ होता है और ये सुरंग बनाने का काम करता है। तो जब ट्रैक्टर इसको खींचता है तो ट्रैक्टर इसको चीरते हुए जाता है, भूमि है उसको चीरते हुए जाता है खेत की भूमि में, और ये सुरंग बनाता है। तो जो ये गोला रहता है वो क्या करता है, 5-7 सेंटीमीटर की नीचे सुरंग बनाता है 40 सेंटीमीटर गहराई पे, और ये मजबूत बना देता है सुरंग को, और सुरंग को मजबूत बनाने के कारण ये सुरंग 3-4 साल तक बढ़िया चलती है और 6-8 मीटर के अंतराल पे अपन ये पूरे खेत में इस तरीके से सुरंग बना देते हैं तो जल की निकासी बड़ी अच्छी तरीके से इसके माध्यम से हो जाती है। तो इसमें क्या है कि केवीके में भी जाके वो बात करें या आत्मा परियोजना के जो अधिकारी होते हैं उनसे भी जा करके अपनी संपर्क करके डेमोन्स्ट्रेशन लिस्ट रेट देख करके भी वो अपने खेत के लिए मंगा सकते हैं।
1: जी सर, बहुत उम्दा जानकारी। सर, हम आगे बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों को यह जानना कि वर्षा के इस निकासी किए हुए जल को आगे फसलों की सिंचाई और भूजल रिचार्ज के लिए वे कैसे उपयोग में ला सकते हैं।
2: देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह जानने की जरूरत है कि बारिश तो अगस्त में

0: अच्छी हो जाती है, लेकिन सितंबर में पानी कम होता है और फिर अक्टूबर में भी और कम हो जाता है पानी। तो जो पानी अगर हम बहा देंगे ना, तो यही पानी अब हमारे उपयोग में आएगा।
1: जी जी।
0: तो इसके लिए क्या है कि किसानों को एक तालाब बनाने की आवश्यकता होती है जिसमें ये जल संग्रहित करें। यदि कुआं है तो वहां तक भी पानी ले जाएं, लेकिन जहां तक अगर नहीं है तो हमारे पास तालाब यदि हमको का निर्माण करना पड़े, तो यदि हमारे किसान के पास 1 से लेकर 2 एकड़ तक की अभी जमीन है, वो चाहे तो 30 फुट बाई 30 फुट और 10 फीट गहरा एक तालाब बना सकते हैं। अब वो तालाब बना करके पूरा का पूरा पानी उस तालाब में ला सकते हैं। अब ये क्या होता है, जब ये तालाब में पानी लाते हैं तो कई बार इसके लिए भी उनको मशीन चाहिए होती है। तो जो अपन बैकहो मशीन कहते हैं जिसका नाम, वो मॉडल इसका ज्यादातर किसान जेसीबी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये क्या 1600 रुपए किराए पे प्रति घंटे के किराए से मिल जाता है, और ये लगभग आप बताएं जिसमें डीजल का खर्च भी इसमें शामिल ही रहता है, और यदि वो ट्रांसपोर्ट होके कहीं दूर से आती है तो वो लोग 2000 रुपए तक भी उसका ले लेते हैं। तो इस हिसाब से यदि ये आ जाती है मशीन, तो किसान जो है ना 8 से 10 घंटे तक, मतलब यदि मिट्टी ढीली है और मिट्टी यदि सख्त है तो 12 से 15 घंटे तक तालाब बनने में ये लगता है। तो जो खेत में जो जल जब इकट्ठा हो जाता है ये ड्रेनेज का, तो वो क्या होता है कई बार अपने साथ गाद भी लाता है, मतलब जिसको अपन कहते हैं सिल्ट। तो वो गाद जो है, पहले अपन एक छोटा सा तालाब के पहले गड्ढा बना लें, तो जो अच्छा पानी है वही तालाब में जाएगा और जो गाद है,
1: कीचड़ है
0: वो जाके आपका गड्ढे में समा जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, जब वो प्रवेश द्वार पे एक सिल्ट ट्रैप जो छोटा गड्ढा बना देना चाहिए, तो उसमें मिट्टी वहीं रुक जाएगी और साफ पानी अपने को हमेशा मिलता रहेगा। और अब ये पानी के कारण क्या होता है कि किसानों को साल भर पानी की समस्या नहीं आती है। तो ये पानी रोकना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और इससे जल प्रबंधन भी बहुत अच्छा होता है।
1: जी सर, बहुत अच्छी जानकारी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल स्तर प्रबंधन के लिए छोटे तालाब के निर्माण से अमूमन खेत का जल स्तर कितना बढ़ता होगा?
0: देखिए, ये बहुत आवश्यक जानकारी है। किसान यदि ये जानेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले देखिए, तालाब यदि भरने के कुछ हफ्तों के भीतर जो खेत में मौजूद खुले कुएं हों या उथले हुए बोरवेल होते हैं, जो ट्यूबवेल, उनका पानी तुरंत बढ़ जाता है तालाब के कारण। और यदि आपकी 2 एकड़ भी जमीन है किसान के पास में, तो उनका जल स्तर करीब 0.5 मीटर से लेकर 1.25 मीटर तक बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है किसान को कि उसका बढ़ा हुआ जो तालाब का स्तर है, वो उसके कारण उसका जो बोरवेल है वो साल भर उसको पानी देता है। ये बहुत बड़ा लाभ है।
1: जी सर। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि छोटे तालाब के निर्माण के बारे में आपने हमें बताया, क्या किसान भाइयों को शासन की तरफ से इसके लिए कोई सहायता या अनुदान मिलता है?
0: बिल्कुल। देखिए, भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसको अपन कहते हैं PMKSY, और राज्य सरकारों की जैसे मध्य प्रदेश में बलराम तालाब योजना है के तहत खेत तालाब बनाने और ड्रिप सिस्टम लगाने के लिए 50 से 80% तक की सब्सिडी यानी अनुदान मिलता है। अब यदि किसान भाई अपने नज़दीकी कृषि विभाग में जाएं, KVK में जाएं, वहाँ के कार्यालय में जा करके इसका पूरा लाभ उठाने के लिए पूरी जानकारी इकट्ठी करके उस पर अपना कार्य आरंभ करें और सब्सिडी को प्राप्त करें।
1: किसान भाइयों, अभी हमने जाना बारिश में खेतों से जल निकासी और जल प्रबंधन विषय पर, ये महत्वपूर्ण जानकारी। हमें पूरी आशा और विश्वास है कि हमारे किसान भाई इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: तो अब अपन ने जाने बारिश के मौसम में खेतन से जल निकासी और जल स्तर प्रबंधन के बारे में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रकाश अम्बालकर, और इनसे बातचीत करी थी बहन अंशु तिलेठे ने। उम्मीद है कि आज की चर्चा से आप हे समझ में मदद मिली हुई है कि अगर हर किसान अपने खेत में छोटे छोटे जल संरक्षण के उपाय अपना है, तो पानी की बचत के संगे संगे सिंचाई को खर्च भी कम हुई है और फसल को समय पे पानी भी मिल जाए। भैया हरो, अच्छी खेती में मेहनत के संगे संगे सही जानकारी हो वो भी बहुत ही जरूरी है। अच्छा, सरकार टेम टेम पे किसानन के लाने कई योजनाएं चलाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से किसान भैया उनको पूरा लाभ नहीं ले पाते। ऐसी एक महत्वपूर्ण पहल है बलराम कृषि योजना। ई योजना को उद्देश्य है किसानन की खेती के लाने आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करावो, आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावो देवो और खेती को अधिक लाभकारी बनावो। और तो और, योजना के अंतर्गत पात्र किसानन है सरकार निर्धारित प्रावधानन के अनुसार सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। सो अगर आप और ई योजना को लाभ लेवो चाहते हो, तो अपने नजदीकी कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग के कार्यालय या फिर किसान कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते।

अंतर्गत हो। उतै से आप है आपकी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की पूरी जानकारी मिल जाए। और भैयारो, अब हम आपके लाने लेके आए हैं एक लघु वार्ता। कैसे भैयारो? अबे देखो, वर्षा ऋतु के संगे संगे खरीफ फसलन की बुआई को काम

वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन। आज हम खरीफ फसलों पर समसामयिक चर्चा करेंगे। जैसा कि इस समय हम देख रहे हैं कि प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई लगभग हो चुकी है, जिसमें सोयाबीन, मक्का, उड़द, अरहर, धान आदि फसलें लगाई गई हैं। इसमें अभी जो हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं फसल 10 से 12 दिन की, कहीं 15 से 20 दिन की फसल हो गई है, और इस समय हमको जो है पौध संरक्षण का कार्य जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसा कि इस समय हम देख रहे हैं कि खरीफ फसलों में जो है खरपतवार की समस्या रहती है, खरपतवार आते हैं, कहीं कहीं जो है कीटों का प्रकोप आता है। सोयाबीन में कहीं कहीं पत्ती काटने वाले कीट जो है ब्लू बीटल का प्रकोप आता है, कहीं इल्ली का प्रकोप आता है, मक्के में भी इल्ली का प्रकोप आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो खरीफ फसलों में कहीं ना कहीं पौध संरक्षण के कार्य, तो किसान भाई सुबह और शाम के समय अपने खेत की निगरानी करें, और यदि उनको कोई कीट व्याधि रोग बीमारी दिखता है तो तुरंत अपने कृषि वैज्ञानिक केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक या हमारे कृषि विकास अधिकारी या कृषि अधिकारी से हम संपर्क करें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय खरीफ की फसलों में खरपतवार का नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। इस बार मानसून भी कहीं कहीं जो है देर से आया है और कई जगह अच्छा तेज पानी भी नहीं गिरा है, तो जब भी हम कोई खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। जैसा कि अभी पिछले 3-4 दिनों में प्रदेश के हर क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। सोयाबीन की फसल की यदि हम बात करें, खरपतवार नियंत्रण के लिए कई जो अच्छी दवाइयां आती हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। जो पहले से ही दो दवाइयां मिलकर आती हैं, कॉम्बिनेशन वाली आती है, जैसे सोडियम एसीफ्लोरोफेन प्लस क्लोडिनोफाफ करके आती है, इसकी मात्रा रहेगी 400 ml एकड़ के हिसाब से, या प्रोपाक्यूजाफाफ प्लस इमिडाज़ेपाम रहेगी, ये भी जो है आपके 800 ml एकड़ के हिसाब से। तो कोई भी एक दवा का हम उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन की हम बात करें, अरहर उड़द की फसल भी लगाई जाती है, उसमें भी खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है। इमिडाज़ेपाम करके दवा है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं 300 ml एकड़ के हिसाब से, या इमिडाज़ेपाम प्लस प्रोपाक्यूजाफाफ करके आता है 800 ml या 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम उपयोग कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में किसान भाइयों ने इस बार मक्का की फसल भी लगाई है, मक्के में भी सक्रिय और चौड़ी पत्ती के खरपतवार आते हैं, उसके लिए जैसे टेम्बोट्रियान प्लस एट्राजिन है इसका हम उपयोग कर सकते हैं, या होलोसल्फुरान प्लस एट्राजिन है इसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो कोई एक हम दवा का उपयोग करेंगे। कई क्षेत्रों में धान की रुपाई भी की गई है और धान की जो है सीधी बुआई भी की गई है, तो जिन क्षेत्रों में धान की सीधी बुआई की गई है वहाँ पे धान के बोने के तुरंत बाद पेटीराक्लोर प्लस पैरोजो सल्फुरान करके दवाई आती है 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हम उपयोग कर सकते हैं, और जहाँ पर रोपित धान जो है धान का रोपा करके लगाया जा रहा है उसमें यदि कचरे की समस्या आ रही है तो उसके लिए भी कॉम्बिनेशन वाले दो जो हमारे खरपतवार नाशक आते हैं जैसे क्लोरीमुरान प्लस मेट सल्फुरान या साइलोफाफ ब्यूटाइल प्लस पिनाक्सोसुलम, तो कोई भी हमारी खरीफ की फसल हो, चाहे सोयाबीन हो, मक्का हो, मूँगफली हो, तो इसमें रासायनिक हम जो है खरपतवार का नियंत्रण जो है इसको हम कर सकते हैं। केवल सावधानी ये रखनी है कि हमको 1 एकड़ में लगभग 200 लीटर पानी का उपयोग करना है। खेत में जब पर्याप्त नमी हो तब हमको जो है खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करना है, और खरपतवार नाशक की जो अनुशंसित मात्रा है उतनी ही मात्रा का घोल बना के छिड़काव करना है, और अलग से दो दो तीन तीन दवाइयों को नहीं मिलाना है। यदि हमारे किसान भाई ये 3-4 बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित है खरीफ फसलों में हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कई कई फसलों में कीटों का प्रकोप, जैसे सोयाबीन की फसल में इस समय देखें जिसको आप झिरझिरा कहते हैं और हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में ब्लू बीटल कहते हैं, तो इसका भी प्रकोप देखा जा रहा है। कहीं कहीं हरीली का प्रकोप देखा जा रहा है। तो पहले हम ये देख लें कि 1 मीटर कतार में हमारे कितने कीट हैं, उनका आर्थिक क्षति स्तर क्या है, उस हिसाब से हम जो है कीटनाशक का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए यदि हमारे ब्लू बीटल है तो जैसे क्लोरपाइरीफास आता है 50 cc या प्रोफेनो प्लस साइपर आता है, इस दवा का हम उपयोग कर सकते हैं। कहीं कहीं तना मक्खी का प्रकोप भी देखा जाता है, तो इसके लिए हम गर्डल बीटल है थायक्लोरपिट करके एक दवाई आती है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस समय चाहे सोयाबीन की फसल हो, उड़द की फसल में एक पीला रोग या सोयाबीन की फसल में एक पीला रोग एक मुख्य समस्या रहती है, तो इसका नियंत्रण भी करना बहुत आवश्यक है। तो पहले आप अपने खेत का जो है मुआयना करें, खेत में जैसी आपको 2-3 पत्ती 4 पत्ती 10 पत्ती या पौधे पीले दिखते हैं तो उन पौधों को उखाड़ के तुरंत नष्ट करें, और एक जो है उपयुक्त कीटनाशक का उपयोग करें, सिंथेटिक पैराथ्राइड्स का उपयोग नहीं करना है, ये किसान भाई ध्यान रखें। इसकी जगह जैसे थायोमेथॉक्साम आता है या एसीटामिप्रिड आता है, इथोफेन प्राक्स आता है कोई, या हमारा जो है इमिडाक्लोरपिड आता है, कोई एक दवा का जो है आप घोल बना के आप छिड़काव करेंगे तो ये पीला रोग बड़े आसानी से नियंत्रित हो जाएगा।
साथ ही कहीं कहीं जो अपन

0: देख रहे हैं कि कहीं कहीं सोयाबीन की फसल जो है कहीं कहीं सूख रही है, अत्यधिक नमी या कहीं कहीं पानी का भराव हो रहा है, तो वहाँ राइजोक्टोनिया राट करके एक समस्या आती है, तो उसके लिए थायोफेनेट मिथाइल। तो इस समय किसान भाई बिल्कुल ध्यान रखें, यदि आप अपनी फसल में खरपतवार का, कीटों का, रोगों का प्रबंधन करते हैं, तो निश्चित है आपकी खरीफ की फसल की पैदावार अच्छी होगी और आपको जो है अधिक आय प्राप्त होगी।
1: तो जे हते कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल दुबे, जिनने खरीफ फसलन के समसामयिक कारण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी अपन के संगे। आशा करत हैं जे जानकारी हमारे किसान भैया हरों के लाने उपयोगी सिद्ध हुई है। और भैया, अब चौमासे को बखत है और किसान वाणी में किसानन से जुड़ी लगभग सभी जरूरी बातें हो गई हैं, बल्कि खूब हो गई हैं। सो कायन आप तनक मनोरंजन सोई हो जावे। वैसे हम जानत हैं कि हमारे भैया अरे मन ही मन कह रहे हुई हैं, अरे राधा बहन नेकी और पूछ पूछ जिन करो, सीधो सुनवाई दो, है नहीं जई है का भैया मन में? हाँ राधा बहन आपकी सब जानत है। सो भैया मौसम को देखत भय सुनत हैं एक बढ़िया सो सावन गीत, जिये गाओ है गोविंद सिंह यादव और साथियन ने।

0: वाह भैया, आनंद आ गया सुन के लोकगीत। और जब बात बिल्कुल ही सही है, अपने लोकगीतन में भी अपनी मिट्टी की खुशबू रच बस जाते हैं। और अब अपने भैया हरों के लाने खेती किसानी से जुड़ी जरूरी सलाह सोई दे देवे। सबसे पहले बात करें मक्का की, तो भैया हरों बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम थायरम एवं 1 ग्राम कार्बन डाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेवे। उके बाद 5 ग्राम एजिटोबैक्टर एवं 5 ग्राम PSB कल्चर प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर लेवे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर तो उतई पौधे से पौधा की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखने हैं अपन है। वृक्षारोपण के लाने उन्नत किस्म के पौधन की व्यवस्था करवें और जो पहले से तैयार गड्ढे करे हैं उनमें पौधों को रोपण करवें। सब्जियों की बात करें तो सबसे पहले बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम थायरम एवं 1 ग्राम कार्बन डाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अपन है उपचारित करने हैं। बुआई के लाने खेत की मेड़ जो नालियां रथ हैं उन्हें पद्धति से तैयार करवें और अदरक हल्दी के खेतों में उचित दूरी पर जल निकासी के लाने नालियां जरूर बनावें। तो भैया हरो जे हते आपके लाने खेती किसानी से संबंधित जरूरी सलाह। तो भैया हरो एक के संगे आज की किसान वाड़ी में बस इतनो ही। तो भैया आपको आज को जो कार्यक्रम कैसो लगो ई में अपन को और का सुधार करने हैं, और अगर आपके मन में भी खेती किसानी से जुड़ो कोनो सवाल होए या आप कोनो विषय पे जानकारी चाहत हो तो हमें जरूर लिख भेजियो। पतो रहे किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल और पिन कोड है 462002। अब राधा बहन खो दो आज्ञा, एक बार फिर दो ही हाथ जोड़ के सभी भैया बहनों को हमारी स्नेह भरी राम राम।
1: अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: का रिले सुनेंगे।
1: समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी और लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। यह विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है तथा इसे निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सोवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण भी बनाए रखा है और कहा है कि पाकिस्तान की पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ऊर्जा संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा विवाद को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is
1: नमस्कार, मैं हूं आदित्य निगम, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से। अब आपको आज रात साथ ही कल तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 7:10 पर। 7:21 पर आप सुन सकेंगे मालवी की तारे गूंज, मालवी समाचार, मालवी लोकगीत। रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। 8:15 पर आप सुन सकेंगे सुर्खियों में। फिल्मी संगीत आप सुन सकेंगे 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या का रिले होगा। रात 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज 8:09। 9:15 पर उर्दू समाचार का रिले किया जाएगा। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा का रिले होगा। रात 10 बजे आप सुन सकेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग। 10:06 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। 10:30 पर राग रचनी कार्यक्रम। रात 11 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार का रिले। रात 11:10 पर FM गोल्ड दिल्ली से रिले किया जाएगा। ये थी आज रात तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब हम सुनेंगे कल दिन भर साथ ही शाम तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 5:50 पर संकेत धुन आप सुन सकेंगे। 5:52 पर वंदे मातरम का आरंभिक उद्घोषणा। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर वंदनवार चिंतन। 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान। संगीत सरिता आप सुन सकेंगे 6:45 पर। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे महाकाल वंदन। 7:05 पर कार्यक्रम विवरण दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार 7:10 पर आप सुन सकेंगे। सुबह 7:20 पर सुप्रभात उज्जैन का रिले किया जाएगा। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़।

8:30 पर उज्जैनी आरजे का रिले होगा। 9:30 पर आप सुन सकेंगे बॉलीवुड बीट्स। सुबह 10:00 आप सुनेंगे उज्जैन दर्शन। 10:30 पर महिला सभा। रंग तरंग कार्यक्रम सुबह 11:00 आप सुन सकेंगे। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे हिंदी न्यूज बुलेटिन। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे सुरीला सफर। दोपहर 2:00 आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 2:10 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। 2:15 पर दोपहर समाचार का रिले होगा। 2:30 पर सदाबहार नग में फिल्मी गीत का अनुप्रसारण किया जाएगा। साथ ही सखी सहेली 3:00 रिले होगा। दोपहर 4:00 आप सुनेंगे आज के मेहमान। शाम 5:00 आप सुनेंगे युववाणी। शाम 6:00 आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। 6:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम। शाम 7:00 आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार। 7:05 पर कार्यक्रम विवरण का रिले किया जाएगा। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार। 7:21 पर माटी री बात मालवी समाचार निमाड़ी लोकगीत का रिले होगा। रात 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा। 8:15 पर सुर्खियों में। 8:30 पर फिल्म संगीत का प्रोग्राम रिले किया जाएगा। 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या। रात 9:00 आप सुनेंगे न्यूज 8:09। 9:15 पर उर्दू में समाचार। पर चर्चा का विषय है का रिले किया जाएगा। रात 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग। 10:30 पर राग रजनी। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर और 11:10 पर आप सुन सकेंगे FM गोल्ड की कार्यक्रम।

0: अभी आपने सुनी आज रात और कल तक रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप जल्द ही प्रादेशिक समाचार सुनेंगे विविध भारती भोपाल केंद्र से। नमस्कार।
1: सच में बिल जीरो आ सकता है? मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव की तरह मनाएं। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी। प्रदेश कैबिनेट का फैसला, भोपाल विदिशा मार्ग होगा 4 लेन। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 44,515 करोड़ रुपए मंजूर। और भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, 527 लोगों का रेस्क्यू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव के रूप में मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें और विकसित भारत का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा का संदेश दिया।
4: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
3: इससे पहले संसद में मंगल मिलन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और एनडीए के सांसदों ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम का जय घोष किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 9 से 17 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या उसे रोकने को अपराध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 कानून बन गया है। लोकसभा ने 30 जुलाई को जबकि राज्यसभा ने इससे एक दिन पहले विधेयक को मंजूरी दी थी। नए कानून के तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। कानून के तहत राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गान से हुई। बैठक में भोपाल विदिशा मार्ग को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन की मंजूरी दी गई। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत करीब 1,757 करोड़ रुपए होगी और सड़क के साथ शोल्डर भी बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने इछावर के और खेड़ी में सोयाबीन अनुसंधान के लिए जमीन निशुल्क आवंटित करने का फैसला भी किया। बैठक में जनविश्वास अभियान की भी समीक्षा की गई और स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया,
5: जनविश्वास अभियान को लेकर भी चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में हमारा जो जनविश्वास अभियान है, इसके शुक्रवार के दिन की जो रिपोर्टिंग है पूरे प्रदेश में, चाहे शासकीय स्तर अधिकारियों की हो या राजनेताओं की हो, बहुत ही बढ़िया इसके परिणाम निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आगामी समयों में जो स्थानीय स्तर की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं उनके निराकरण के लिए और सरकार से सीधे संवाद के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण हमारी ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक कोशिश है सरकार की।
3: प्रदेश मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 1 अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक कुल 44,515 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए करीब 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, टीबी उन्मूलन, सिकल सेल और निःशुल्क दवा जाँच जैसी स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जाएंगी। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अन्य पात्र हितग्राहियों के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। वहीं स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था

0: के लिए 1,159 करोड़ रुपए से ज्यादा और जिला स्तरीय अमले के लिए 654 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय से 450 रुपए में गैस रिफिल योजना के तहत 22 लाख पात्र लाडली बहनों के खातों में 99 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। ये राशि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गैर PMUY श्रेणी की पात्र महिलाओं को दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समग्र पेंशन योजना के तहत 35 लाख हितग्राहियों के खातों में 211 करोड़ 53 लाख रुपए की पेंशन राशि भी अंतरित की। इसके अलावा डॉक्टर यादव ने राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 32वीं बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में उन्होंने वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन और चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत आज भोपाल मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया और किसानों को संबोधित किया। इस दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महोत्सव में आधुनिक कृषि उपकरणों और उन्नत खेती के तरीकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल अहमदाबाद में प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में आयोजित मेगा निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री उद्योग जगत को मध्य प्रदेश की निवेश नीतियों और सुविधाओं की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री गुजरात के उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी करेंगे। इस दौरान कई बड़े औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें होंगी। बैठकों में ऊर्जा, वस्त्र, विनिर्माण, अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। बात मौसम की। प्रदेश में जारी भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होमगार्ड मुख्यालय स्थित सिचुएशन रूम पहुंचकर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से सीधे बातचीत की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि अब तक प्रदेश में 527 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। खंडवा में बारिश के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे 7 कांवड़ियों को भी सुरक्षित निकाला गया है। प्रदेश में मॉनसून टर्फ और लो प्रेशर एरिया के असर से तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के बाकी कई जिलों में भी अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज के दिन विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी जमीन में पैदा होने वाले बेहद कम आवृत्ति के कंपन को कई किलोमीटर दूर तक महसूस कर सकते हैं। उन्हें जंगल का इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का प्रदेश स्तरीय शुभारम्भ 18 अगस्त को होगा। आगरमालवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 13 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। मंदसौर में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के आगामी शिविरों की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। झाबुआ जिले के थांदला में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 935 लीटर से ज्यादा घी जब्त किया है। बुरहानपुर जिले में इस मानसून अब तक औसत बारिश का करीब 71% पानी बरस चुका है। खंडवा जिले के सिंगाजी क्षेत्र की कावेरी डिमर और उनकी छोटी बहन दीपिका डिमर ने भोपाल में आयोजित अश्मिता नेशनल कैनोइंग प्रतियोगिता में कुल 6 पदक जीते हैं। और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए प्रोविजनल रूप से चयनित यात्रियों को अग्रिम हज राशि जमा करने के लिए अब अंतिम तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव की तरह मनाएं। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी। प्रदेश कैबिनेट का फैसला, भोपाल विदिशा मार्ग होगा 4 लेन। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 44,515 करोड़ रुपए मंजूर। और भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, 527 लोगों का रेस्क्यू। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र
3: आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में आपका स्वागत है। FM 102.5 MHz साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं, अब वक्त हो गया है मालवा की माटी, परंपराओं, लोकगीतों और जनजीवन की बात का। तो आइए जुड़ते हैं अपनी जड़ों से और शुरू करते हैं प्रोग्राम मालवी की तारी गूंज।

राम राम साहब, कई हाल चाल है। चलो हाल चाल तो बढ़िया ही होएगा। मौसम भी बढ़िया हुई रियो है, सुहावनो भी हुई रियो है। जैसा मोर नाचे कोयल बोले ने साथ ही साथ चारों तरफ हरियाली रहे। पड़तो पानी ने एक आड़ी ठंडो मौसम ने साथ ही साथ सावन ने सावन में उज्जैन तो उज्जैन में तो बाबा महाकाल की सवारी भी निकले। आज ग्राम सभा में माटेरी बात कार्यक्रम में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं दिया उमट और चलो ये सब बात तो चलती रहेगा। पहला हम सुना रोज की तरह मालवी समाचार, फिर गीत न फिर चटपटी बात हो न जानकारी हो साथ साथ आकाशवाणी उज्जैन का केंद्र से।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले की मंजूरी दी गई। प्रदेश में कृषक कल्याण साल 2026 का तहत आज भोपाल मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन करो गयो। प्रदेश में निवेश बढ़ावा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 अगस्त के अहमदाबाद से प्रमुख उद्योगपति और निवेशकों से मुलाकात करेगा। अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट मीटिंग बैठक का बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि भोपाल से विदिशा का बीच फोर लेन सड़क बनावा का प्रस्ताव के मंजूरी मिली है। यह परियोजना पर 1700 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च होएगा। वहीं सीओर का इछावर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर का लिए 20 हेक्टेयर जमीन निशुल्क आवंटित करवा को फैसलो लियो गयो है। कैबिनेट ने रानी दुर्गावती पुरस्कार और रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ा के 2 लाख रुपया करवा की भी मंजूरी दे दी है। एक अलावा खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन को फैसलो लियो गयो है। मुख्यमंत्री राज्यपाल मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज लोकभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से सौजन्य भेंट करी। डॉक्टर यादव ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनको अभिवादन करियो। अनि दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के प्रदेश का विकास और जन कल्याण से जुड़ा काम होने की जानकारी दी। उनने प्रदेश का महत्वपूर्ण विषय होने पर भी राज्यपाल से चर्चा करी। बलराम कृषि महोत्सव भोपाल। प्रदेश में कृषक कल्याण साल 2026 का तहत आज भोपाल मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन करो गयो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जरिया कार्यक्रम में हिस्सा लियो और किसान होकर संबोधित करियो। अनि दौरान किसान होकर आधुनिक कृषि तकनीक और खेती से जुड़ी सरकारी योजना उनकी जानकारी दी गई। महोत्सव में आधुनिक कृषि उपकरण और उन्नत खेती का

टीका की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मुख्यमंत्री गुजरात दौरा। प्रदेश में निवेश बढ़ावा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 अगस्त के अहमदाबाद में प्रमुख उद्योगपति और निवेशक से मुलाकात करेगा। अहमदाबाद में आयोजित मेगा निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री उद्योग जगत के मध्य प्रदेश की निवेश नीति और सुविधा होने की जानकारी देगा। मुख्यमंत्री गुजरात के उद्योगपति के प्रदेश में निवेश का लिए आमंत्रित भी करेगा। इस दौरान कई बड़े उद्योगपति समूह उनके प्रतिनिधि का साथ 1-to-1 बैठक होगी। हेमंत खंडेलवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सांसद की कार्यवाही बाधित करवा और छात्र उनका मुद्दों पर राजनीति करवा को आरोप लगायो है। भोपाल में पत्रकार वार्ता में उनने बतायो कि राहुल गांधी के देश का मुद्दों पर चर्चा करवा की करनी है तो संसद चलवा देनी चाहिए। श्री खंडेलवाल ने बताया कि केंद्र सरकार हर मुद्दा पर चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में सवाल का जवाब देवा को तैयार है। उन्होंने छात्र होने का मुद्दा पे राहुल गांधी पे दोहरो मापदंड अपनावा को आरोप भी लगायो है। 3 शासकीय महाविद्यालय में संस्कृत। प्रदेश का 3 शासकीय महाविद्यालय में नया शैक्षणिक सत्र में स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय शुरू करो जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संस्कृत की पढ़ाई शुरू करवा की मंजूरी दे दी है। यह सुविधा विदिशा जिला का बासोदा, शाजापुर जिला का शुजालपुर और आगरमालवा जिला का सोयत कला का शासकीय महाविद्यालय में मिलेगी। मौसम को हाल। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून ट्रफ और लो प्रेशर एरिया का असर से तेज बारिश को दौर जारी है। मौसम विभाग ने नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना समेत 10 जिला में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दियो है। प्रदेश का बाकी कई जिला में भी अगला 24 घंटा का दौरान हल्की और तेज बारिश होवा को अनुमान है। आगरमालवा जिला का ग्रामीण क्षेत्र में 13 अगस्त के हर घर तिरंगा अभियान का तहत तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहां जिला मुख्यालय पर 14 अगस्त के विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। बुरहानपुर जिला में अनी मानसून अब तक औसत बारिश का करीब 71% पानी बरस चुकियो है और जिला का 44 डैम और तालाब पानी से लबालब है। मंदसौर में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का आगामी शिविर की तैयारी समय पे पूरी कर 100% लक्ष्य हासिल करवा का निर्देश दिया है। झाबुआ जिला का थांदला में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करता हुआ 935 लीटर से ज्यादा घी जब्त करो है, जिसकी कीमत करीब 6,60,000 रुपया बताई गई है। खंडवा जिला का सिंगाजी क्षेत्र की कावेरी डीमर और उनकी छोटी बहन दीपिका डीमर ने भोपाल में आयोजित अश्मिका नेशनल कैनोइंग प्रतियोगिता में कुल 6 पदक जीतिया है। मालवी समाचार समाप्त।

तो एक बार फिर से राम राम साहब, हूँ दिया उमट और आज अपनी माटीरी बात में जो ग्राम सभा में चले है और मैं बात करा सावन ने, सावन में उज्जैन और उज्जैन में बाबा महाकाल की और बाबा महाकाल की सवारी की। देवों के देव महादेव के समर्पित सावन हम सभी लोग और के लिए श्रद्धा आस्था और भक्ति को विशेष पर्व है। शिव के जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र अर्पण और ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करवा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि को आगमन हो, ऐसी लोक मान्यता है। सावन को महीनों भगवान शिव के अत्यंत प्रिय मान्यो गयो है। यह मान्यता भी है कि यानी पूरा महीना में श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करवा से सुख समृद्धि प्राप्त हो। जब बात उज्जैन की हो तो सावन को महत्व और भी बढ़ जाए है, क्योंकि यह पावन नगरी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की नगरी है। 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर को विशेष स्थान है। सावन को पहले सोमवार पे देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का दर्शन किया था और जल अभिषेक भी किया था। और आज अबे सुनो यो गीत, क्योंकि आज मालवी गीतारी गूंज नी है, आज है माटीरी बात और माटीरी बात में हम सुना है निमाड़ी गीत। तो आज पहला यो सुनो गीत, फिर करांगा थोड़ी सी आगे की बातचीत।

हर हर महादेव की गूंज से जीवन धन्य हुई जाए, बाबा भोले की कृपा रहे सब पर हर बार। अब हमने सुनियो यो शिव भक्ति से सरोवर एक मधुर गीत। सावन को महीनों धरती पे हरियाली, उमंग और भक्ति लेके आए हैं आज सावन।

को पहलो सोमवार नहीं है, कल दूसरो सोमवार, थोड़ा सावन का जो दिन चल रहा है यानी पावन अवसर पे हम बात करांगा भगवान शिव की आराधना, संस्कृत भाषा की महिमा और हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत की। मालवा की धरती पे सावन को महीनों आता ही मंदिर होर में घंटी होर की गूंज सुनाई देवा लगे है। गांव गांव में कांवड़ यात्रा, शिव भजन और लोकगीत होर को वातावरण बनी जाए है। यानी सावन में हम खाली पूजा ही नहीं बल्कि प्रकृति की रक्षा को भी संकल्प ला, एक पौधो लगाओ, जल बचाओ और पर्यावरण के हरो भरो बनाओ। सावन आयो, धरती हरियाली ओढ़ी, भोलेनाथ री कृपा सब पे बरसे, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनी धरती ने हरी भरी बनाओ। वृक्षारोपण, सावन में वृक्षारोपण को घणो महत्व रहे, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण, पेड़ हवा के शुद्ध करवा में, कार्बन डाइऑक्साइड के कम करवा और वातावरण के संतुलित रखवा में मदद करे। वर्षा को पानी को सदुपयोग, सावन में पर्याप्त बारिश होवा से नया लगाया गया पौधा होर के प्राकृतिक रूप से पानी मिले है और उनकी जड़ें अच्छी तरह विकसित हुई है। जल संरक्षण, पेड़ मिट्टी में पानी को रिसाव और भूजल को पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैव विविधता को संरक्षण, वृक्ष पक्षी तितली और अनेक जीव जंतु को आश्रय और भोजन प्रदान करे है। भारतीय संस्कृति से जुड़ाव, भारतीय परंपरा में पेड़ के खाली प्रकृति को हिस्सों ही नहीं बल्कि जीवन और संस्कृति को महत्वपूर्ण अंग मान्यो गयो है। सावन में शिव आराधना का साथ साथ प्रकृति का प्रति श्रद्धा भी दिखाई दे है। सावन में का पौधा हम लगा ही सका है, कौन कौन सा पौधा अच्छा रहे है तो स्थानीय मिट्टी और जलवायु के अनुसार नीम, पीपल, बरगद, करण, जामुन, आंवला, अमलतास, शीशम और देशी फलदार पौधा लगाया जा सका है। बाकी कौन सा पौधा अच्छा रहे कौन सा नहीं रहे ये तो सवाल ही नहीं उठे, क्योंकि हर पौधो प्रकृति का लिए, आम जन का लिए हर तरह से अच्छो रहे। पौधा लगावा का बाद उकी नियमित देखभाल सुरक्षा भी जरूरी ही है। भोले बाबा कैलाश बैठा गंगा जटा में धार, सावन आयो हरियाली, बोलो बम बम बारंबार। तो एक और निमाड़ी गीत, फिर और थोड़ी सी चर्चा और फिर चटपटी खट्टी मीठी बाता।

0: तो यो गीत सुनियो आपने, एक बात हम बात करा कि सावन चल रही हो और सावन का समय में गांव होर पे ने आजकल तो घना सारा लोग शहर होर पे भी ट्रिप पे जाइए ने ट्रिप पे गई हो तो सावन का झूला की बात हूँ कर रही है। सावन में गांव होर में पेड़ पे झूला बंधे है जिके सावन का झूला के है। गाँव का बाहर रोटी बने हैं, दाल बाटी चूरमो जो मालवा में घड़ों ही फेमस है। तो ऐसा सब अलग अलग तरह की परंपरा है, अलग अलग तरह की लोक मान्यता है, अलग अलग तरह से लोग सावन को आनंद ले हैं। अब हम सुनांगा गोविंद राठौर जी के, जिन्हें बतायो कि वृक्षारोपण घणो जरूरी रेवे है और पेड़ पौधों के काटनो नीचिए जो वनपाल उज्जैन है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का आज आपकी अपनी ग्राम सभा में स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित है गोविंद राठौर जी, वनपाल उज्जैन। आपका आकाशवाणी उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
2: मेरा नाम गोविंद राठौर, वनपाल पद पर हूँ। मेरी ड्यूटी बिट नुलखी पर है। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये है कि अभी बहुत अधिक वृक्ष कट रहे हैं, उन वृक्षों की जगह हमको नए वृक्ष लगाना है, उसके बाद उनको बड़ा करना है सुरक्षित, ताकि पर्यावरण को जो हानि हो रही है उसका अपन प्रतिपूर्ति कर सके। इसके अलावा जैसे भी जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा करना रहती है हमको, ये रहता मुख्य चुनौती हमारी यह रहती है।
1: वन और पर्यावरण का हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध है?
2: वन और पर्यावरण का हमारे दैनिक से बहुत अटूट संबंध है, क्योंकि पर्यावरण से वायु मिलती है, पानी मिलता है, ये सब मिलता है, और वन और पर्यावरण में सबको सहेज के रखता है। जैसे कि अपन बात करें कि हम जल संरक्षण के कार्य करते हैं।

0: जामफल लगाते हैं, फलदार पौधे लगाते हैं ताकि उनको भी भोजन मिल सके। इसके अलावा जो भी अन्य वन्य प्राणी रहते हैं वो फूड चेन की प्रतिपूर्ति करते हैं।
1: पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण में आम नागरिकों की भूमिका बहुत देखी जाती है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि आम नागरिक पर्यावरण बचाने के लिए कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं जिससे पर्यावरण संरक्षण किया जा सके।
0: आम नागरिक पर्यावरण बचाने के लिए बहुत सारे कार्य करते भी है और करना भी चाहिए। सबसे पहला प्रथम कार्य ये रहता है कि सभी व्यक्तियों को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, चाहे अपने घर में लगाएं चाहे बगीचे में लगाएं और उसकी सुरक्षा करें। जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा और फल देने लगेगा उसका अनुभव अलग ही होगा। इसके अलावा कोई अगर वृक्ष काटता है तो उसको रोकना चाहिए आम नागरिकों को। इसके अलावा कोई भी अनैतिक गतिविधि करते हैं, जैसे कोई पक्षियों का शिकार कर रहा है और भी कुछ कर रहा है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि कोई जमीन खोद रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको रोकने का आम नागरिकों को कार्य करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो वो वन विभाग को सूचना भी देना चाहिए कि उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा सके।
1: जी, अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि प्लास्टिक का उपयोग पर और प्लास्टिक के प्रतिबंध पर सरकार अपने अलग अलग योजनाएं अलग अलग कार्यक्रम कर रही है, तो प्लास्टिक प्रदूषण का जंगलों और वन्य जीवों पर क्या असर पड़ता है, आप इस पर अपना क्या मत देना चाहेंगे?
0: प्लास्टिक के जो भी उत्पाद रहते हैं वो क्या है, बहुत आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं और वैसे वैसे जमीनों पर पड़े रहते हैं, नदियों में पड़े, तालाबों में पड़े रहते हैं। और उन जैसे जिस पर प्लास्टिक की पन्नियों की बात करें, जैसे प्लास्टिक पन्नियों को गाय अगर खा लेती है तो वो क्या बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह वन्य प्राणी भी अगर इन चीज़ों को भी खा लेते हैं तो उनका नुकसान। इसके अलावा अगर जमीनों में रहते तो बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होते तो वो पर्यावरण और भूमि को भी प्रदूषित कर रहे हैं। इसके अलावा नदी नालों में जैसे अपन मूर्तियाँ थमा देते हैं या पीओपी की कुछ कर देते हैं, उससे बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, तो हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए।
1: प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए और वन्य जीव संरक्षण वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग क्या क्या कार्य करती है, क्या कार्यक्रम करवाती है?
0: वन विभाग द्वारा इको पर्यटन बोर्ड रहता है, उसमें हम स्कूल के बच्चों को एक दिन के लिए पूरा जंगल घुमाते हैं, उसमें वन संरक्षण के बारे में बताते हैं, इसके अलावा पौधरोपण कैसे करते हैं और वन विभाग इनको कार्य कैसे करते पूरे बताते हैं। इसके अलावा उस कार्यों में यह भी बताते हैं कि हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें या जहाँ तक हो सके नहीं उपयोग करें। जैसे हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो प्लास्टिक को प्रकार कपड़े की थैली लेके जाएं, और उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ करते हैं और पोलोथीन को उपयोग नहीं करने की हम उसमें सलाह देते हैं।
1: आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उज्जैन, तो उज्जैन में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से सफल प्रयास किए जा रहे हैं?
0: वन संरक्षण के सफल प्रयास के रूप में हम जन भागीदारी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम पे उनसे पौधरोपण कराते हैं और उनको जैसे जो पौधा वो लगाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनको प्रेरित करते हैं। इसके अलावा भी जो हमारे वन क्षेत्र है उसमें कुछ हम स्मृति वन बनाते हैं, जिसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति या कोई आम जनता वहाँ आके अपने पिता के नाम या पुत्र के नाम पे या उनका जन्मदिन रहता था वहाँ पे उस के नाम पे पौधा लगा दे। इसके अलावा हम पंचकोशी रोपण कर रहे हैं, जो पंचकोशी अपने यहाँ निकलती है हमारे उज्जैन में पंचकोशी माता एक छोटा रूप के, उस पर हम रोड किनारे पौधे लगा रहे हैं ताकि वन संरक्षण किया जा सके और ये जो यात्रियाँ निकले उनको छांव मिल सके।
1: जी, आने वाली पीढ़ी के लिए स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने हेतु हमें आज से क्या संकल्प लेना चाहिए, एक ऐसा संकल्प लेना चाहिए या कहें जिससे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे संरक्षित रहे?
0: आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये संकल्प ले कि वो पेड़ नहीं काटे या कम से कम काटे, जरूरत हो तो काटे नहीं तो नहीं काटे। दूसरी बात, अगर वो पेड़ काटते हैं तो उसके प्रतिपूर्ति में कम से कम दो पेड़ चार पेड़ ज़्यादा लगाएं। इसके अलावा कोई भी अगर वन को हानि पहुँचा रहे उसकी सूचना वन विभाग को दे और कोई भी मतलब कोई ऐसे कार्य करें उनको रोकने का प्रयास करें।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह आपने सुनी कि किस तरह वन संरक्षण वृक्षारोपण वन्य जीव संरक्षण घना सारा विषय पे हम काम कर ही सका है। एक सामान्य जन भी वृक्षारोपण करके प्रकृति के बहुत सारों भेंट कर सके हैं सावन का महीना में, यो भी एक पुण्य कोच काम है। अब कल है 12 अगस्त माने कि कल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और विश्व हाथी दिवस भी है। विश्व हाथी दिवस का उद्देश्य अन्य दिन को मुख्य उद्देश्य हाथी होर का संरक्षण, उनका प्राकृतिक आवास की रक्षा और हाथी का सामने मौजूद

खतरा का प्रति लोग उनमें जागरूकता बढ़ानो है। हाथी को शिकार, अवैध वन्य जीव व्यापार, मानव हाथी संघर्ष और आवास के कम होवा जैसी समस्या और सामना करना पड़े है। विश्व हाथी दिवस कसा मनाया जाए है, तो हाथी संरक्षण और वन्य जीव पे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करो जाए है। स्कूल कॉलेज और में निबंध, चित्रकला, भाषण और क्विज प्रतियोगिता और कराई जाए है। वन विभाग और पर्यावरण संस्था होर का द्वारा रैली और जन जागरूकता अभियान चलाया जाइए। हाथी होर के प्राकृतिक आवास और जंगल के बचाने को संदेश दियो जाइए। तो चलो, घनी सारी आपने जानकारी हुन भी सुनी, टेम भी होवा वालो है, तो एक और गीत, फिर थोड़ी बहुत और जानकारी।

तो आज विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का बारे में मैंने आपके जो कल है बतायो, और साथ ही साथ कल 12 अगस्त मैंने कल राष्ट्रीय पुस्तकालाध्यक्ष दिवस है, नेशनल लाइब्रेरियन डे। और नेशनल लाइब्रेरियन डे खाली एक दिवस नहीं है जो हर साल 12 अगस्त के मनाया जाए। यो दिन भारत का महान पुस्तकालय

वैज्ञानिक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती का अवसर पर भी मनाया जाए है। आज पुस्तकालय अध्यक्ष खाली किताब उपलब्ध करावा तक सीमित नहीं है, वे विद्यार्थियों के पाठक की सही जानकारी खोजवा, डिजिटल संसाधन को उपयोग करवा और विश्वसनीय जानकारी पहचानने में भी मदद करे है। और कल यो दिन केस्तर कई मना सका है तो स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय में अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी, वाचन प्रतियोगिता, निबंध लेखन, पुस्तक चर्चा, व्याख्यान और सम्मान समारोह आयोजित किया जा सके। पुस्तकालय ज्ञान का मंदिर से डिजिटल ज्ञान केंद्र तक एमए डॉक्टर रंगनाथन पुस्तकालय को महत्व और आज का डिजिटल दौर में पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका के शामिल करियो जाए है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को उद्देश्य कई रहे तो युवा उनकी शिक्षा और कौशल विकास के बढ़ावो देनो, युवा उनके रोजगार उद्यमिता का अवसर से जोड़नो, समाज और राष्ट्र निर्माण में युवा उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ानो, युवा उनकी समस्या हो और उनकी आवाज के मंच देनो, नेतृत्व नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए युवा उनके प्रोत्साहित करनो, सामाजिक कार्य होने के लिए युवा उनके प्रोत्साहित करनो, युवा उनके लोकतांत्रिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेवा के लिए प्रेरित करनो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अगस्त के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का रूप में मनावा की मंजूरी दी थी। भारत को युवा आबादी वालो देश मान्यो जाए है, इसलिए भारत के लिए युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का विकास में भी महत्वपूर्ण भागीदार है। युवा शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल, कृषि, सामाजिक सेवा और उद्यमिता जैसा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो आप घना अलग अलग तरीका से कल मैंने कि 12 अगस्त के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई सको है, विश्व हाथी दिवस, लाइब्रेरियन डे और ऐसा घना सारा दिवस कल है तो आप मना सको है। ने टेम भी हुई गयो है पर टेम आपके याद रखनो है, मारे मारो टेम याद है, आपके टेम याद रखनो है। 7:21 से 8 बजे तक आकाशवाणी उज्जैन का केंद्र से ग्राम सभा में माटीरी बात ने मालवी कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज जैसा कार्यक्रम हुई है। तो 7:21 से 8 बजे तक मालवी समाचार, कहीं ना कहीं जानकारी, कहीं ना कहीं विशेषज्ञ की अलग अलग तरह से आपकी जानकारी पहुंचावा के लिए हम सदैव तत्पर रहा है। तो फिर अनिस टाइम पे कल 7:21 से 8 बजे तक और बाकी बात 12 अगस्त के बारे में जो मैंने बताया हुए कल जो हमारा साथी और आएगा वे आपके घनी अच्छी से बताएगा, घनी जानकारी देगा। तो साहब राम राम, नमस्कार।

श्रोताओं, मालवा की माटी की सुगंध और लोक संस्कृति की ये झलक आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति, मगर आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार। श्रोताओं, अब आप जल्द ही सुनेंगे संसद समीक्षा का अनुप्रसारण विविध भारती दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित

विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉ बीआर अम्बेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजत के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्दी राजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजत के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्ना द्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया।

विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खरगे को बोलने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खरगे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया, लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्ना द्रमुक के IS इनबादुरे, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉक्टर के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, एस सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और YSR कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 तक और फिर दोपहर 2 तक के लिए स्थगित दी गई। सुबह 11 उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉक्टर संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने ओडिशा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात ओडिया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉक्टर संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे, तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं, इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खरगे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराहन 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराहन 2 सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के 15वें विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल

कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनिट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनिट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: संसद ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025

0: और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन कर हमारे डिजिटल भुगतान प्रणाली के मजबूतीकरण, व्यापार की सुगमता बढ़ाने और निवेश एवं विनिर्माण को गति देने वाले अहम प्रावधान शामिल हैं। इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक मिस्टर ए.के. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: मिस्टर भट्टाचार्य, ये जो एक लैंडमार्क बिल आया है, कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे देखते हैं और आपके अनुसार इसमें सबसे प्रमुख की टेकअवेज जैसे हम कहते हैं क्या है?
1: इसमें जो विदेशी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो वो विनिवेश करते हैं इस देश में, पर्टिकुलरली जो सरकारी जो सिक्योरिटीज जो है उसमें जो निवेश करने से उनको टैक्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो बर्डन था, उसको उठा लिया गया है। आपको ये मालूम होगा कि करीबन जून 2026 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने एक साथ मिलकर हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को और भी सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज जो है वो बढ़ने की आशंका लोग जता रहे थे, उस समय सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर तय किया था कि किस तरह से हमारे देश की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकें और इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिवनेस जो है उसको बढ़ावा दें। मैं समझता हूँ कि पहला जो प्रधान जो इसका जो टेकअवे है जिसे आपने कहा वो है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो पहले क्या करते थे, अगर वो सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे उनका जो इंटरेस्ट जो आय होता था उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता था, और अगर मान लीजिए वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और कहीं बेचे या कैपिटल गेन्स को बुक करें तो उसमें भी उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था, और इनकम टैक्स इंटरेस्ट का जो रेट था वो 20% था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 30% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 12.5%। इस विधेयक से सरकार ने ये ऐलान तय कर लिया है कि पहली अप्रैल 2026 से अब ये फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसी न इंटरेस्ट के इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20% टैक्स माफ हो जाएगी, और कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म में 12.5% और शॉर्ट टर्म में 30% ये भी टैक्स माफ हो जाएगी। उससे सरकार का मानना यह है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो सरकारी सिक्योरिटीज में थोड़ा और बहुत पैसा लगाए, और जिससे कि लगाने से हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्थिति है वो और भी मजबूत हो जाए।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में बताया कि ये विधेयक मौजूदा डेटा सेंटर्स के विस्तार में और विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इससे बड़े स्तर पर विस्तार होगा और भारत में हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स स्थापित होंगे।
2: ऑफ प्रोविजंस प्रोवाइडिंग एग्जेम्पशन टू अ फॉरेन कंपनी प्रोक्योरिंग डेटा सर्विसेज फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डेटा सेंटर and this exemption is provided up to the year ending 31st March 2047. Long-term certainty so that investments come. These are big-ticket investments. They have to come with a certainty which can be provided to them. The outcome that I'm expecting is to provide ease of doing business for companies, providing cloud services by way of procuring data center services in India. The amendment is also expected to enable much larger ecosystem again of Indian data centers providing data center services to a foreign company. The reform will enable AI data cities in India and is expected to bring in significant investments for AI data cities in India. There is an apprehension that this is only for foreign companies. These kind of exemptions are not going to be available for Indian companies. It's not true at all, sir. I want to explain how. This will enable, sir, current data centers to expand their footprints and services for foreign cloud service providers.
0: दूसरा एक जो पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे, बल्कि हम आपसे ही चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा विस्तार में समझाएं कि जो UPI हमारा जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जो उसके रेवेन्यू मॉडल में कुछ बदलाव करने के लिए जो एनेबल

0: प्रोविजन आया है उसके बारे में बताएं, और जो एक स्पष्टीकरण भी आया है सरकार का जिसमें उन्होंने कहा है कि यूजर्स के लिए अभी भी यूपीआई का इस्तेमाल मुफ्त ही बना रहेगा, स्मॉल मर्चेंट्स के लिए भी, तो इसके बारे में क्या प्रोविजन है और ये स्पष्टीकरण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
1: इस कानून में एक प्रोविजन का एक परिवर्तन किया गया है, वो है कि जो हमारे देश में जब 2007 में ये जो एक कानून बनी थी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007
0: जी,
1: उसके जरिए से हमारे देश में पिछले 10 साल और 12 साल से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए बहुत सारे पेमेंट का इंटरेक्शन होता है और डिजिटल पेमेंट होता है ऑलमोस्ट रियल टाइम में। जैसे हम बात कर रहे हैं वो पैसा मेरे से आपके पास चला जाएगा या मेरे से कोई मर्चेंट में चला जाएगा, और ये मोबाइल फ्रेंडली सिस्टम था यूपीआई। तो इसका जब 2020 जनवरी में सरकार ने ये तय किया कि इस डिजिटल पेमेंट की और भी उसको जनप्रिय बनाने के लिए उन्होंने जो एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है कि जो मर्चेंट जब पैसा लेता है तब उसको कुछ सर्विस चार्जेस देनी पड़ती है, वो करीबन 0.5% होता है, कभी 0.3% होता है, बहुत ही कम होता है, पर तब भी एक जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वो सरकार ने उसका विलय कर दिया। उन्होंने कहा कि जिससे कि लोग और भी डिजिटल पेमेंट को वो अपनाएं, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी का और भी प्रभुत व्यवहार भी हो, इसलिए किया था। पर पिछले 5 साल में स्थिति सामान्य हुई है और इसकी जनप्रियता इतनी बढ़ गई है कि यूपीआई की पेमेंट करीबन महीने में 29 लाख करोड़ की होती है।
0: जी,
1: तो सरकार ने यह सोचा कि इसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इसका टेक्नोलॉजी का भी जो इम्पैक्ट होता है उसका भी कॉस्ट बढ़ रहा है, तो सरकार एक सब्सिडी देती है, करीबन 1500 करोड़ की सब्सिडी भी देती है। तो सरकार ने यह सोचा कि इसको हम क्यों ना कानूनी तौर से एक ऐसा एक प्रावधान लाएं जिससे कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो ये यूपीआई को चलाती है उसके पास ये पावर रहे कि जब उसको जरूरत होगी वो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट को इन्फोर्स कर सकता है। पर सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया इसके साथ साथ कि ये जो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल की जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा, और जो भी डिस्काउंट रेट आएगा लगेगा वो मर्चेंट और इंडिविजुअल्स के बाद उसमें भी थ्रेशोल्ड्स होंगी। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ के ऊपर ज्यादा बिजनेस है तो उसमें लगेगा। इससे ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, साइबर फ्रॉड की चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगी
0: जी।
1: और मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिविजुअल और जो छोटे व्यापारी जैसे खोमचे वाला है या सब्जी वाला है उसको पेमेंट करने में, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पेमेंट होती है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तो ये MDR का जो इंट्रोडक्शन, ये अगर आप देखें कि लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से ये काफी हमारी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी सुदृढ़ करेगा, ये भी देखेगा कि इंडिविजुअल को कोई असुविधा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कानूनी परिवर्तन है। इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी है, वो कमेटी उसको देखेगी कब किस तरह से मर्चेंट डिस्काउंट रेट की लागू होगी, पर ये रेट कभी भी इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर लागू नहीं होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में बोलते हुए स्पष्ट किया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और छोटे मर्चेंट्स पर भी कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
2: विल कंस्यूमर्स पे एनी UPI चार्ज? नो, UPI हैज रिमेन्ड फ्री फॉर कंस्यूमर्स सिंस इट्स लॉन्च एंड एवरी इंडियन विल कंटिन्यू टू मेक इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट विदाउट पेइंग अ ट्रांजैक्शन चार्ज। चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, टेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर MDR चार्ज नहीं लगेगी। छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू UPI's इंक्लूसिव ग्रोथ, उनके ऊपर हम कोई MDR लगाने वाले नहीं है। एनी फ्यूचर MDR विल अप्लाई ओनली टू अ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस अबाउ अ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड हाई थ्रेशोल्ड।
0: मिस्टर भट्टाचार्य, एक और एस्पेक्ट जो मेक इन इंडिया को एनकरेज करने के लिए कुछ सेक्टर्स को खास प्रावधान उनके लिए लाए गए हैं, अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें जिसमें हमने पिछले दशक में बहुत प्रगति देखी

0: भी है, मोबाइल फोन्स एक जैसे पोस्टर बॉय है इस प्रगति के, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह के प्रावधान हैं इस विधेयक में?
1: जैसे विदेशी जो कंपनियां हैं, जब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कोई कैपिटल गुड्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम में आएगा, जैसे कि मान लीजिए जो मोबाइल फोन की कंपनियां जो यहाँ पे मोबाइल फोन बनाती हैं और आज हम बहुत सारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी करते हैं
0: जी।
1: वो मोबाइल फोन बनाने में जो टूल इक्विपमेंट टूलिंग्स की यंत्र जो आते हैं उसकी जरूरत होती है, उसके सप्लाई में जो सप्लाई होती है उनका जो टैक्स जो होता है वो टैक्स, उनको टैक्स हॉलीडे दिया गया है जिससे कि करीबन 15 साल का मतलब अप्रैल 1, 2026 से मार्च 2041 तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे मैं समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे इलेक्ट्रॉनिक और भी इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बाहर से कैपिटल गुड्स और टूल्स ला सकते हैं और जो कंपनीज उनको सप्लाई करेंगी उनके ऊपर कोई टैक्स का कोई इन्फोर्समेंट नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा एक बढ़ावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भी है।
0: एक और जो सेक्टर जिसका मेंशन है ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड को भारत ने आकर्षित करने का, ये क्या पहलू है और इस पर क्या प्रमुख प्रावधान इस विधेयक में लाया गया है?
1: देखिए ये बताया गया है नए कानून में कि जो रफ डायमंड्स जब कोई कंपनी बेचती है अगर सेल्स जो होता है वो अगर नोटिफाइड स्पेशल जोन में हो
0: जी,
1: वो अगर जब विदेशी कंपनी जब बेचती है उसके ऊपर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले उनके ऊपर टैक्स नॉर्मल रेट में लगता था, अब वो टैक्स नहीं आएगा। उससे ये होगा, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है वो रफ डायमंड इम्पोर्ट करती है, आयात करती है, उसको फिर प्रोसेस करके वैल्यू एड करके उनकी फिर निर्यात करते हैं
0: जी।
1: तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन कंपनी अब थोड़ा झिझकते हैं क्योंकि वो जब रफ डायमंड सप्लाई करते हैं तब उनके ऊपर टैक्स लग जाती है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके साथ साथ और एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है वो डेटा सेंटर के ऊपर है। वो डेटा सेंटर में क्या है कि जो फॉरेन कंपनियां जो अपनी इंडियन डेटा सेंटर से जो सर्विस सप्लाई करेंगी उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं पूरी ओर से अगर देखूं कि इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट जो है वो टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो उसमें काफी रिलैक्सेशन आई है, उसमें क्लैरिटी आई है और एक स्टेबिलिटी भी आई है।
0: मिस्टर भट्टाचार्य, बहुआयामी और व्यापक रूप से हमारे देश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और हमारे देश की विनिर्माण को मेक इन इंडिया मुहिम को गति देने वाले विभिन्न प्रावधान जो है इस नए कानून के, उन पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन का ये गीत।
5: ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, FM 102.5 MHz, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं, 8:30 हो गए हैं और अब वक्त है फिल्म संगीत कार्यक्रम का। आपको पहला गाना फिल्म ग्लैमरस से सुनाते हैं जिसमें आवाज कुमार शानू और साधना सरकम की है। गाने के लेखक नवाब आरजू हैं और गाने में संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, अगला गाना आप सुनेंगे फिल्म गुरु से। गाने में आवाज हरिहरन और अलका याग्निक, साथ ही एआर रहमान की है। संगीत एआर रहमान का है, गाने के बोल गुलजार ने लिखे हैं।

फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आपसे पुनः होगी मुलाकात, तब तक के लिए मैं आदित्य निगम आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार। अब आप जल्द ही समाचार संध्या का रिले सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।

मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल

राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती

0: स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
4: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
5: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता

0: आवश्यक है।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई

0: एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए एआई को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एआई ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
1: Jammu and Kashmir witnessed patriotic fervor today as a mega Tiranga rally was held near the line of control at Deetwal in Karnah area of Kupwara district. A 1,200-meter-long national flag was carried during the rally. Intermittent rainfall has disrupted normal life in several parts of Himachal Pradesh with landslides blocking roads and highways. We have a report.
2: On the Shimla-Dharamshala National Highway, a boulder fell on a moving car near Bharari Ghat today, killing one person and injuring two others. In another incident, two persons were injured after stones fell on a vehicle from a hillside at Barad in the Ani subdivision of Kullu district. They have been admitted to a hospital for treatment. Heavy rainfall has also led to a rise in the water level of the Bias River and other rivers and rivulets in the district. Two national highways and 204 other roads are blocked for traffic across the state. Meanwhile, the Meteorological Department has issued a warning of heavy rainfall at isolated places in Kangra, Chamba, Sirmaur, Mandi and Shimla district during the next 24 hours. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
1: The India Meteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall over East Rajasthan, Gangetic West Bengal, Madhya Maharashtra and Odisha tomorrow. In business news, benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today after a chopping trading session. Sensex shed 388 points to close at 78,154. Nifty lost 112 points to settle at 24,472. On to sports now. In Canadian Open tennis, 19 seed Luciano Dauderi of Italy will face 28 seed Brandon Nakashima of the US in the men's singles quarterfinal in Montreal tonight. In the other quarterfinal, Spain's 20th seed Rafael Jota will take on 18 seed Arthur Fields of France later tonight. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes bill to improve efficiency and transparency in tribunal system. Proposes establishment of National Tribunals Commission. Lok Sabha clears legislation to rename state of Kerala as Keralam amid opposition's uproar. Also gives nod to NCDC bill to broaden scope of cooperative development. New Delhi stresses peace and tranquility in border areas essential for stronger ties with China. Reiterates Arunachal Pradesh is integral part of India. NASA invites ISRO to join its ambitious moon-based program under Artemis Accords. Prime Minister Narendra Modi urges people to celebrate Independence Day with pride and take pledge to build a Viksit Bharat. And POJK protests to go global from Thursday with calls for worldwide rallies to expose state-sponsored terrorism by Pakistan. That's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट ने ट्रिब्यूनल निजाम की कारकर्दगी और शफाफियत में बेहतरी लाने की खातिर बिल मंजूर कर लिया है। इसने कौमी ट्रिब्यूनल कमीशन की तजवीज पेश की है। लोकसभा ने अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान रियासत केरला का नाम बदलकर केरलम करने से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया है। इसने इमदादी बाहमी इदारों के फरोग को वसत देने के लिए एनसीडीसी बिल को भी मंजूरी दे दी है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन के साथ मजबूत रिश्तों के लिए सरहदी इलाकों में अमन सुकून लाजमी है। उसने ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। नासा ने आर्टेमिस मुआवजे के तहत अपने अहम मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इसरो को मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो फख्र के साथ यौम आज़ादी मनाएं और विकसित भारत की तामीर का अहद करें। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जुमेरात से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को बावर कराने के लिए आलमी सतह पर रैलियों पर जोर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा की जानिब से ट्राइब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 को आज मंजूर किए जाने के बाद इस बिल को पार्लियामेंट

0: की मंजूरी मिल गई है। दूसरी मरतबा मुलतवी होने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किया। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स में चेयरपर्सन्स और अराकीन की अहलियत, आज़ादी और तकरूरात नीज खिदमात को यकीनी बनाते हुए शफाफियत में इजाफा करना है। साथ ही इस बिल का मकसद ट्राइब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज को बेहतर बनाना है। ये कानून नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन के क्याम की भी तजवीज पेश करता है। बिल की मंजूरी के बाद ऐवान में कई अराकीन ने अवामी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ मामलात उठाए। कामकाज मुकम्मल होने के बाद सदर नशी ने ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। लोकसभा ने केरला तब्दीली नाम बिल 2026 को आज मंजूरी दे दी। ये बिल आइन के पहले शेड्यूल में रियासत केरला के नाम को केरलम नाम से तब्दील करेगा। इस बारे में कानून साज असम्बली ने जून 2024 में करारदाद मंजूर की थी। बिल पर इजहार ख्याल करते हुए दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि केरला कानून साज असम्बली की 2024 में मंजूर हुई करारदाद में मरकज से केरला रियासत के नाम को केरलम करने की दरख्वास्त की गई थी। उन्होंने कहा कि यह दरख्वास्त इसलिए की गई थी क्योंकि मलयालम जबान में रियासत का नाम केरलम है जबकि आईन में इसे केरला लिखा गया। ऐवान ज़ेरी ने कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन बिल 2026 को भी मंजूरी दे दी। इमदाद बाहमी के वजीर ममलिकत मुरलीधर मोहोल ने बिल पेश किया जिसका मकसद कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन कानून 1962 में मजीद तरमीम करना है। ये बिल कॉरपोरेशन को सनती अशिया के मैदान में अपनी सरगर्मियां शुरू करने की इजाजत देता है। नीट मामले पर तलबा के एहतजाज पर मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई के दौरान ये दोनों बिल बिना किसी बहस व मुबासे के मंजूर कर लिए गए। कामकाज मुकम्मल होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई की वजह से आज एक बार फिर रखना पड़ा। हुकूमत की जानिब से तलबा के मामले पर मुबाहिसे की तैयारी की यकीन दहानी के बावजूद कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों ने नारेबाजी जारी रखी। अपोजिशन के शोरगुल और हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवाल नहीं चल सका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ऐवान की कार्रवाई में रखना अंदाजी पर दुख का इजहार किया। जनाब बिरला ने जोर देकर कहा कि ऐवान की कार्रवाई बहस मुबाहिसे और ताउन के जरिए चलती है। लोकसभा ने अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान केरला तब्दीली नाम बिल 2026 और कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी। वहीं राज्यसभा ने भी ट्रिब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 मंजूर कर लिया। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट ने इस बिल को गुज़श्ता महीने मंजूर किया था। ये बिल दफा 3 के तहत वंदे मातरम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और इसे कौमी तराने की तरह यकसां कानूनी दर्जा देता है। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन गया है। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों पर तलबा के एहतजाज पर बहस से बचने का ये कहते हुए इल्जाम लगाया है कि हुकूमत इस मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार है। पार्लियामेंट इहाते में नामानिगारों से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने तलबा के एहतजाज से मुतालिक तफसीली बहस के लिए कल एक पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह भी अपोजिशन की जानिब से उठाए गए मामलात पर जवाब देने के लिए तैयार हैं लेकिन वो ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृहमंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृहमंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसमें सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: इस दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पवन खेड़ा ने मुबैना तौर पर कहा कि वजीर दाखिला इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं। भारत ने आज ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अटूट और कभी ना अलग होने वाला हिस्सा है और इस सच्चाई को कोई तब्दील नहीं कर सकता। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के सरहदी इलाकों से मुतालिक मामलात में भारत ने हमेशा बातचीत में इस बात पर जोर दिया है कि वो इन मामलात को सबसे संजीदा मानता है।
3: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर

0: दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: जनरल जायसवाल ने मुतल्लक किया कि भारत ने बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान को बाहमी दौरे के साथ साथ नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स आउटरीच इजलास के लिए दावतनामा भेजा है। उन्होंने मजीद कहा कि कल भारतीय हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के वजीर आजम से मुलाकात की और तरफेन ने बाहमी दिलचस्पी के मामलों पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खलाई तहकीक की अमरीकी एजेंसी नासा ने आर्टेमिस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी के तौर पर खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। इस मुआहदे के तहत भारत और अमरीका ओपन साइंसी डेटा साझा करने पर तआवुन से मुतालिक बातचीत को आगे बढ़ाने पर रजामंद हो गए हैं। भारत ने 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु में इसरो के सदर दफ्तर में भारत अमरीका सिविल खलाई मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की नवी मीटिंग की मेजबानी की। इसरो चेयरमैन डॉ वी नारायणन और भारत में अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात के दौरान भारत और अमरीका के दरमियान ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रस्ट पहल के तहत सिविल और तजारती खलाई इश्तराक में पेशरफ्त हुई। फरीकैन ने गुज़श्ता साल नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार NISAR के मुश्तरका तौर पर कामयाब लॉन्च के बाद बढ़ते तआवुन पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों फरीकों ने साइंस और मुस्तकबिल में खला में इंसान की परवाज से मुतालिक टेक्नोलॉजी के तआवुन पर भी बातचीत की। फरीकैन ने बाहरी खला की सरगर्मियों की तवील मुद्दती पायदारी से मुतालिक बाहरी खला के पुरअमन इस्तेमाल की अक़वामे मुत्तहिदा की कमेटी COP UOS के रहनुमा खतूत पर आगे बढ़ने की अपनी अहदबस्तगी को दोहराया। इसके अलावा फरीकैन ने कमेटी की असर पजीरी की यकीन दहानी के लिए जारी कसीर जहती कोशिशों का भी जायजा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हम वतनों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत की तामीर का अहद करते हुए फख्र और शान के साथ यौम आजादी मनाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर करते हुए जना मोदी ने हर शहरी की साथ आने और मुल्क के मुजाहिदीन आजादी को खराज अकीदत पेश करने के लिए हौसला अफजाई की। इसके अलावा वजीर आजम ने सभी से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने पर भी जोर दिया।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
1: जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करना इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक टिटवाल के मकाम पर आज अजीमुशान तिरंगा रैली मुनक्कद की गई। रैली की खसूसियत 1200 मीटर लंबा कौमी परचम रही। रैली में स्कूली तलबा, असातज़ा, साबिक फौजियों, सिविल और पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी अरकान और मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। शुरका ने तिरंगे के साथ हुब्बुल वतनी के नारे लगाते हुए मार्च किया। आज बीजेपी की जानिब से किए गए झारखंड बंद का रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जिंदगी के मामूलात पर असर पड़ा। पार्टी के वर्कर कल असेंबली मार्च के दौरान तलबा पर हुए मुबैना लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तलबा के एहतजाज को 18 दिन हो गए हैं और एहतजाज कर रहे तलबा JPSC और JSSC इम्तिहानात को मनसूख करने, CBI तहकीकात और भर्ती के अमल में इस्लाहात की अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा ताकि सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को आगाह किया जा सके। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में कश्मीरियों पर रैलियां करने और POJK के लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी इकतदार की जानिब से मुबैना तौर पर ताकत के इस्तेमाल की जानिब तवज्जो मबजूल कराने पर जोर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी ने 14 अगस्त को यौम सयाह के तौर पर मनाने का फैसला किया है, जिस दिन पाकिस्तान का यौम आजादी भी है। एहतजाज का सिलसिला 2 महीनों से जारी है और इसका कोई हल दिखाई नहीं देता। मुजाहिरीन ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुबैना तौर पर 60 से ज्यादा

0: को हलाक कर दिया है और 500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मशरकी राजस्थान, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, गोवा और शिमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कल दोपहर से शाम तक कौमी राजधानी में कुछ मकामात पर बहुत हल्की बारिश के साथ साथ आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। शदीद बारिश की वजह से चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब रियासत की 2 कौमी शाहराहों और 204 दीगर सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मौसमियात के महकमे ने आइंदा 24 घंटे के दौरान 5 अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके पेशे नजर इंतजामिया ने लोगों से दरियाओं से दूर रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की है। अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड्स, शहरियत और पनाहगुजीनी समेत इमिग्रेशन से मुतालिक मुतअद्दिद फवायद हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने के अमल को लाजमी बनाएगा। इस इकदाम का मकसद कारकर्दगी को बेहतर बनाना और ऑपरेशनल अखराजात को कम करना है। अमेरिका की शहरियत और इमिग्रेशन खिदमत से मुतालिक महकमे ने कहा है कि एक हुक्म के मुताबिक ऐसे फॉर्म्स जो कम से कम 180 दिन से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए दस्तयाब हैं उन्हें ऑनलाइन जमा कराना जरूरी होगा। टेनिस में कनाडा ओपन 2026 में आज साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी इगा श्वांटेक खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। 6 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा ने रूस की डायना श्नाइडर को 6-2, 6-1 से शिकस्त दी। जुमेरात के रोज अब सेमीफाइनल में श्वांटेक का मुकाबला यूक्रेन की 9वें दर्जे की खिलाड़ी एलिना स्वीटोलिना से होगा। स्वीटोलिना एक दीगर क्वार्टर फाइनल में रूस की एकातेरिना अलेक्सेंद्रोवा को 3-6, 6-0, 6-3 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं। मर्दों के सिंगल्स में आज क्वार्टर फाइनल में इटली के 19वें दर्जे के लुचानो दुर्देरी का मुकाबला अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। पार्लियामेंट ने ट्राइब्यूनल निजाम की कारकर्दगी और शफाफियत में बेहतरी लाने की खातिर बिल मंजूर कर लिया है। इसमें कौमी ट्राइब्यूनल कमीशन की तजवीज पेश की है। लोकसभा ने अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान रियासत केरला का नाम बदलकर केरलम करने से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया है। इसने इमदाद बाहमी इदारों के फरोग को वसत देने के लिए NCDC बिल को भी मंजूरी दी है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन के साथ मजबूत रिश्तों के लिए सरहदी इलाकों में अमन सुकून लाजमी है। उसने ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। नासा ने आर्टेमिस वादे के तहत अपने अहम मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इसरो को मदद किया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वह फख्र के साथ यौम आजादी मनाएं और विकसित भारत की तामीर का अहद करें। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जुमेरात से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को बावर कराने के लिए आलमी सतह पर रैलियों पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

आदाब दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त वाजिद खान। इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, महफिल समा में आज का मौजू है शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी हयात व खिदमात। सामीन, शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी सन 1480 में शहर बुरहानपुर में पैदा हुए। आबाई वतन शिराज हिंद जौनपुर था। शेख अली मुत्तकी की परवरिश नहायत ही नेक साले दीनदार माहौल में अपने वालिद के जेर आफियत हुई, जो कि उस इलाके के मारूफ आलिम दीन थे। लेकिन अभी शेख अली मुत्तकी 8 बरस के ही थे कि उनके वालिद का साया सर से उठ गया। लेकिन शेख ने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया की तमाम मुश्किलात का सामना पूरी कुव्वत और जवां मर्दी के साथ किया। लेकिन आप रातों दिन ज़ात-ए-बारी ताला से लौ लगाए रखते,

जिसके नतीजे में आपको महसूस होने लगा कि ये दुनिया यकीनन एक रोज खत्म हो जाएगी। जिंदगी का सूरज एक दिन जरूर गुरूब हो जाएगा। दुनिया दारुल अमल और आखरत दारुल जजा है। इस एहसास ने आपके जमीर और अंदरून को झिझोड़ कर रख दिया। फिर उन्होंने हिसामुद्दीन मुत्तकी के यहाँ मुल्तान में दरसो तदरीस और तरबियत बातनी में दिन गुजारे। फिर गुजरात वापस तशरीफ लाए और अहमदाबाद में इकामत पजीर हो गए। फिर रिश्ते इस दिवास से मुंसलिक हो गए। फिर अपनी अहलिया और दीगर अहले खानदान के साथ जिंदगी गुजारी। उस बीवी से एक बेटा भी हुआ जो लड़कपन में ही दार फानी को कूच कर गया। फिर शेख अली मुत्तकी ने मदीने में सुकूनत इख्तियार की और मक्का चले गए।

दोस्तों, अभी आप कव्वाल जानी बाबू की आवाज में कव्वाली ईमा की रोशनी है मोहम्मद के शहर में समात फरमा रहे थे और कलाम था पयाम सईदी का। मक्का मौजमा पहुंचकर शेख अबुल हसन शाफी की खिदमत में हाजिर होकर मजीद इल्म शरीयत और तरीकत पाया और फिर शेख मोहम्मद बिन मोहम्मद सखावी की खिदमत में रहकर सिलसिलाए आलिया कादरिया का खिरका हासिल किया और हदीस की सनद शेख शहाबुद्दीन अहमद बिन हजज मक्की से हासिल की और मक्का मुअज्जमा में सुकूनत इख्तियार कर ली। इसी दौरान आपने कंजुल उमाल नामी किताब मुदव्वन और मुरत्तब फरमाई। ये किताब आपका अजीम इल्मी और दीनी शाहकार है। साथ ही आपने अहादीस मुकर्ररा को छांट कर मुंतखिब कंजुल उमाल भी तहरीर फरमाई। इन किताबों को देखकर आपके शेख अबुल हसन शाफी ने फरमाया था कि इमाम सियूती ने जमउल जवामे लिखकर तमाम लोगों पर एहसान किया था, लेकिन शेख अली मुत्तकी ने कंजुल उमाल की तदवीन फरमा करके खुद उन पर

के मतवालों में जब हमजा भी शामिल हो गए तो देखकर ये हाल बरहम अहले बातिल हो गए। अबू जहल बोला ये दीन हक जो बढ़ता जाएगा ना तो उज़्ज़ा का पुजारी कौन फिर कहलाएगा। कोई बोला तभी हक का जोर इब्ने अब्दुल्लाह का जब सर कलम हो जाएगा। सुनते ही ये बात गुस्से में उमर आगे बढ़े और की बरहना हाथ में तलवार तेवर थे चढ़े। बोले उज़्ज़ा की कसम खाना नहीं खाऊंगा मैं सर मोहम्मद।

पूछा क्या इरादा है उमर, ये उमर बोले चला हूँ काटने अहमद का सर। फिर नईम उनसे ये बोले लो खबर कुछ घर की भी है मुसलमान, खुद तुम्हारे भी बहन और बहनोई घर बहन के पहुँचे। गुस्से में उमर ये सुनते ही दर पे जब पहुँचे, सदा कुरान पढ़ने की सुनी, जब सुना

कि तुमने मजहब अपना बदला है, ये मुझको है खबर। ये कहा गुस्से में और दोनों को मारा इस कदर। छल्ली जख्मों से बदन था, खून से था जिस्म तर।

उनका दिल थर्रा गया। ये जोश ईमान देखकर गर्क इबरत हो गई। हमशीरा से बोले उमर,

0: गुस्ल पहने ऐ उमर, आयते कुरान के पढ़ने की तमन्ना है अगर। गुस्ल करके आयते कुरान उमर ने फिर पढ़ी, हो गए बेखुद वो ऐसी मस्तीए बहदत चढ़ी। वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया, जुल्मते बातिल मिटी दिल नूरे हक से भर गया। फिर उसी आलम में पहुंचे शाह बता तक उमर, और गिरे पाए नबी पर बादब बा चश्मतर। पढ़ लिया तौहीद का कलमा मुसलमान हो गए, शाह बता पर उमर फारूक कुर्बान हो गए, शाह बता पर उमर फारूक कुर्बान हो गए।
1: दोस्तों, अभी आप जानी बाबू कव्वाल की आवाज में कव्वाली हजरत उमर का वाकया समाअत फरमा रहे थे, और कलाम था शबाब मीनाई का। दोस्तों, शेख अली मुत्तकी नहायत बाअखलाक, साहिब मुरव्वत और बेहतरीन सीरत और शख्सियत के हामिल थे। आपकी शख्सियत नहायत पुरकशिश थी। आप अपने तमाम कामों को किताब व सुन्नत के मुताबिक अंजाम दिया करते थे। हर चीज को शरीयत की कसौटी और तराजू में तोलते। उनके शागिर्द खास अब्दुल वहाब मुत्तकी एक अजीब व गरीब किस्सा नकल करते हैं कि उनको एक दफा किसी वजीर ने दावत दी तो उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। जब वजीर ने इसरार किया तो उनकी दावत को तीन शर्तों के साथ कबूल किया। पहली शर्त ये रखी कि वो जिस जगह चाहेंगे बैठेंगे। दूसरी शर्त ये रखी कि जो खाना अच्छा लगेगा खाएंगे। और तीसरी शर्त ये रखी कि जब चाहें वापस आ जाएंगे। फिर शेख साहब ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ कल आते हैं। वजीर ये सुनकर बेहद खुश हुआ और नहायत ही लजीज मुख्तलिफ असनाफ और अकसाम के खाने बनवाए। जब दावत का वक्त हुआ तो शेख तन्हा गए, किसी को भी साथ न लिया, और साथ ही अपनी थैली में रोटी के चंद टुकड़े रख लिए। जब वजीर के घर पहुँचे तो उसके दरवाजे पर एक कोने में बैठ गए। वजीर ने ख्वाहिश जाहिर की कि मकान में चले तो पहली शर्त को याद दिलाया, फिर फरमाया जल्दी से दस्तरखान बिछा दो, मेरे पास वक्त नहीं। बेहतरीन अकसाम के खाने दस्तरखान पर परोसे गए। उन्होंने अपनी थैली से रोटी के टुकड़े निकाले और उनको बगैर दस्तरखान से कुछ लिए खाने लगे। वजीर ने इल्तिमास किया कि दस्तरखान से कुछ खाएं तो फरमाया मेरे और तुम्हारे दरमियान ये मुआहिदा हो चुका है कि मैं जो चाहूंगा खाऊंगा। फिर वजीर से जाने का कहा। वजीर ने कहा थोड़ी देर बैठिए, तो तीसरी शर्त याद दिलाई कि जब चाहेंगे लौट जाएंगे। फिर वजीर को सलाम करके वहां से वापस आ गए।

दोस्तों, अभी आप कव्वाल अजीज अहमद वारसी से कव्वाली समात फरमा रहे थे, ए खालिक आलम, और कलाम था नज़ीर अली अदील का। इस वाक़े से दोस्तों हमें नसीहत मिलती है कि ज़माना कदीम में उलमा और सूफिया इकराम वज़ीरों बादशाहों की सोहबत से परहेज करते थे। शेख अली मुत्तकी ने भी अपनी पूरी जिंदगी ज़ुहद व तक़वा में गुजारी, न माल दौलत की लालच, न नामो नमूद की चाह, इन्हीं सब चीज़ों से दूर शेख साहब अपनी जिंदगी बसर करते थे। खाने को किया गया इनकार इस बात की तरफ इशारा करता है कि खाना हमारी जिंदगी की एक अहम जरूरत है, लेकिन खाने की ज्यादती जरूरी नहीं। दौरे हाजिर में शादी बारातों और दूसरी तकारीब में खाने पर फिजूल खर्ची करना गैर जरूरी है।

तो अभी आप कव्वाल मास्टर हबीब निजामी से कव्वाली ए हसीना तुझे मशहूर किया मैंने समात फरमा रहे थे और कलाम था अनवर फर्रुखाबादी का। सामीन, शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी के असाज़ा की एक तवील फहरिस्त है। आपके तलामजा की भी बड़ी तादाद है जिन्होंने आपसे शर्फ व तलम्मुज़ हासिल किया। आप नहायत कसीरुल मुजाहिदा थे, पूरी उम्र ज़ोहद व तवक्कुल में गुजारी। आपका विसाल 2 जमादिउल आखिर 975 हिजरी सुबह सादिक के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में हुआ और वहीं तदफीन की गई। दोस्तों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कहकशां सुनना ना भूलें और अपने तासुरात और ख्यालात से हमें इस पते पर ज़रूर आगाह करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम कहकशां मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संसद समीक्षा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
2: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 241 श्रीमान जीसी चंद्रशेखर जी।
3: प्रश्न संख्या 241। क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है? ख, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है? और ग, ग्रिड संपर्क, पारेषण, ट्रांसमिशन, अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है?
2: I am not under the pressure of anyone except Gargaji, not of anybody else, Honorable Minister. फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत पाटवे जी। देन फर्स्ट सप्लीमेंट्री जीसी चंद्रशेखर जी। सप्लीमेंट्री श्रीमान जीसी चंद्रशेखर जी।
4: सर काइंडली डू नॉट ऑफ द माइक टिल कंप्लीट माय क्वेश्चन सर।
2: I am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpayee ji.
5: आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ मंत्री से कि ऑफशोर एनर्जी के क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है?
3: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।
5: सभापति महोदय, भारत के लिए ऑफशोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है। उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर तमिलनाडु में लगभग 50-54% और गुजरात में 30-40% तक CUF उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेट।

0: इलेक्शन इसकी संभावना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है तो ऑफशोर विंड की तुलना में अनेक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है। तीसरा है सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है अध्यक्ष महोदय। चौथा है तो स्कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन से राइट ऑफ वे ऑफ इसे जुड़ी कई कंस्ट्रक्शन से सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है। सोशल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट वेदर फैब्रिकेशन मरीन लॉजिस्टिक और पोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है। इससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मोदी जी
2: सर, ड्यू टू दी चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइड्रो प्रोजेक्ट एज वेल एज इन विंड प्रोजेक्ट हाउ मच इट इज अफेक्टेड, इज देयर एनी लॉसेस, इफ इट इज देयर हैव इट बीन मेजर्ड, एंड आई वुड लाइक टू नो हाउ एवरी स्टेट इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट एंड साइक्लोन एंड हरिकेन एंड फ्लड एंड रिन्यूएबल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू दैट। थैंक यू सर।
1: हेलो मिनिस्टर,
0: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। ये जो प्रश्न है आपसे मिलता है और इसे
3: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा से। साहिर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था SD बर्मन ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने, मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है। फिल्म का नाम है आरजू।

शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए फिल्म संगम से। लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, फिल्म संगम के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं देवेंद्र मुरडेश्वर का बांसुरी वादन। राग है पुष्प चंद्रिका का।

0: प्रदेश है।
1: नसनसनी नसनसनी नसनसनी न उत्तेजना न उत्तेजना न शोर दिन रात न शोर दिन रात न शोर न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित